0: आपका पत्र मिला। सभी श्रोताओं को असीम का नमस्कार और मनोज आपको भी नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आप आए हैं तो साथ में श्रोताओं के बहुत सारे खत जो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचे हैं और कुछ डाक के जरिए जो पहुंचे हैं वो सब एक एक करके हम शामिल कर पाएंगे अपने आज के इस पत्र उत्तर कार्यक्रम में।
1: सर आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी नमस्कार और उनका बहुत बहुत स्वागत जिन्होंने समय निकालकर हम तक अपनी प्रतिक्रिया भेजी है।
0: मनोज आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी प्रसारित होना है।
1: बिल्कुल,
0: मन की बात का इंतजार हम और हमारे श्रोता बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी देर के बिना किसी भूमिका के सीधे खतों पर आते हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो सबसे पहली चिट्ठी हम तक पहुंची है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना और इनके परिवार वालों की। इन्होंने नमस्कार के साथ लिखा है कि 21 जून का आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई असीम सक्सेना जी, सुनील सक्सेना जी और मनोज कुमार जी ने बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े गए और असीम सक्सेना जी ने पत्रों के शानदार अंदाज में जवाब दिए। बेहद पसंद आया ये कार्यक्रम। कभी हो सके तो पत्र पढ़ने के लिए अपर्णा जी को भी मौका देकर देखिए। आसपास बेहद पसंद आया, मनोज कुमार जी का मन भावन शानदार रहा और गीत आपके नाम भी बेहतरीन लगा। बच्चों का कार्यक्रम कलिया इनको अच्छा लगा है। इसके अलावा इन्होंने सबका साथ सबका विकास बेहद पसंद आया, पूरी टीम को इन्होंने बधाई दी है। सुनील सक्सेना जी का सुबह सवेरे अच्छा लगा है। 22 जून का आपके अनुरोध पर 2.5 गानों का चंद्र फरमाइशों के साथ पेश किया गया, अच्छा नहीं लगा। एमन तंजील ने गीत आपके नाम शानदार पेश किया। अखिलेश सक्सेना जी ने हेलो रामपुर बेहतरीन किया। 23 जून को स्वास्थ्य संदेश में शैजी आगा का आपके अनुरोध पर और फन बेमिसाल है, ये इनको पसंद आया है। आकांक्षा जी का शब्दावलियों का प्रोग्राम इनको अच्छा लगा है। परिवार जगत, कानून और हम, अवधेश कुमार गौतम जी ने गौतम सिंह जी से बातचीत इनको पसंद आई है। प्रियंका सिंह जी का गीतांजलि अच्छा लगा है। 24 जून को अखिलेश जी का आपके अनुरोध पर फिल्मी गजलों का पेश किया गया, अच्छा लगा। रेणु तिवारी जी का गीत आपके नाम और कुमकुम पसंद आए। जवेरिया जी का गीत गाता चल अच्छा लगा है और असीम सक्सेना जी का दिल ढूंढता है लाजवाब रहा। इस बार हमारे दोस्तों ने बढ़ चढ़कर दिल ढूंढता है में पहले की तरह खत लिखे और अच्छी बात ये थी कि नवाबुद्दीन भाई का भी खत था और आगे ये उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरह दिल ढूंढता है में खत लिखते रहेंगे। 25 जून को और फन बेमिसाल है कि 12वीं कड़ी बेहद पसंद आई है। अपर्णा जी ने शब्दावलियों का प्रोग्राम शानदार पेश किया, अच्छा लगा। आंचल भी इनको पसंद आया है और 26 जून को अखिलेश सक्सेना जी का सुबह सवेरे बेहतरीन लगा। नेहा जी ने गीत आपके नाम ठीक किया। अपर्णा जी ने गीत गाता चल शानदार पेश किया। उर्दू प्रोग्राम पसंद आया है। फरीदुल्ला खां और शिवा नूर जी को इन्होंने बधाई दी है। आगे 27 जून को धारावाहिक सच्चा वादा बहुत जल्दी रिपीट कर दिया। रेणु तिवारी जी का गीत माला अच्छा लगा। छाऊं बरगद की में असीम सक्सेना जी की मित्तल जी से बातचीत इनको पसंद आई है और रिजवान जी का गीत गाता चल इनको अच्छा लगा है।
0: कुल मिलाकर गफ्फार खान साहब, आपने हमारे केंद्र के बहुत सारे कार्यक्रम सुने गुज़िश्ता हफ्ते और इन सभी कार्यक्रमों को आपने पसंद किया, सबके नाम आपने लिखे हैं, तो सबकी तरफ से आपका हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी प्रस्तुति को सराहा। अपर्णा जी तक आपकी बात हाथों हाथ पहुंच रही है। आगे उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि कभी पत्र मिला कार्यक्रम में भी वो श्रोताओं के बीच हैं। आपका न्योता हमने उन तक पहुंचा दिया है। कार्यक्रम इसी तरह से आप सुनते रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई नाटक या कोई झलकी जल्दी रिपीट कर दी जाती है, तो आगे से ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की बात ना हो और एक प्रॉपर गैप हो ताकि कार्यक्रम दोबारा सुनने में भी आनंद आए। कार्यक्रम सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और शवाना नाज। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सभी प्रोग्राम इनको पसंद आते हैं। 27 जून का आपके अनुरोध पर जो अखिलेश सक्सेना जी ने पेश किया बहुत ही पसंद आया। गीत आपके नाम जो रेणु तिवारी जी ने प्रस्तुत किया इनको पसंद आया और इसके अलावा गीत गाता चल जो रिजवान सैफी ने प्रस्तुत किया बेहद पसंद आया। 26 जून का आपके अनुरोध पर अखिलेश सक्सेना जी ने पेश किया पसंद आया। गीत गाता चल जो अपर्णा जी ने पेश किया ये भी इनको अच्छा लगा है। 25 जून का आपके अनुरोध पर जो अनिल राजपूत जी ने प्रस्तुत किया ये भी इनको अच्छा लगा है।
0: कार्यक्रम इनको अच्छे लगे हैं, इसके लिए बधाई। और श्रोताओं को एक सूचना और दे दें कि सुबह से हमारे प्रसारण उनको ऐप पर सुनने को नहीं मिल रहे थे और असुविधा हुई, इसका हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब ये कार्यक्रम आप ऐप के ज़रिए ज़रूर सुन रहे होंगे। आप हमारा कार्यक्रम बड़े मन से सुनते हैं और इतनी बारीकी के साथ सुनते हैं कि कहीं कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। कौन प्रस्तुत कर रहा है, क्या उसने गीत बजाए, कैसे गीत बजाए, सबका विश्लेषण आप करते हैं और ये बात जाहिर करती हैं आपकी चिट्ठियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद उन सब नामों की तरफ से जिनके नामों का उल्लेख आपके इस खत में है।
1: और अगली चिट्ठी हम पहले पढ़ देते हैं और इनका नाम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि खुशी तलाश ली मैंने, ये दिलकशी कर ली, आकाशवाणी रामपुर से मैंने दोस्ती कर ली, यह सिलसिला चला बचपन से थम नहीं पाया, बना के दोस्त तुम्हें जिंदगी हंसी कर ली।
0: अब मनोज आप नाम पढ़ें उससे पहले मैं ही बता देता हूँ, ये चिट्ठी देवरनिया की लग रही है, देवी तबस्सुम ने लिख कर भेजी है।
1: बिल्कुल सही पहचाना सर आपने, ये लिखती हैं कि जी हाँ जनाब, आकाशवाणी रामपुर से बचपन की दोस्ती है और हम अपने रिश्ते को यूं ही हमेशा निभाते रहेंगे और ये सिलसिला इनका यूं ही बना रहेगा। आगे आप लिखते हैं कि मगर हम प्रोग्राम सुनना कभी नहीं भूलते, ऐसी ही हमारी दोस्ती है और हम जानते हैं कि आकाशवाणी रामपुर भी हमसे उतना ही प्यार करता है। आपका पत्र मिला में जब हम पत्र लिखा नहीं करते थे तो अक्सर हमारा जिक्र हुआ करता था कि हम पत्र नहीं लिख रहे हैं। ये बात और है कि वह दौर गुजरा हुआ वक्त था, खैर छोड़ो इन सब बातों को, दीगर बात ये है कि हमने 21 जून को आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, पसंद आया, आपने हमारे पत्र को भी शामिल किया, सुनकर अच्छा लगा, इसी दिन का उर्दू प्रोग्राम इनको अच्छा लगा है, विश्व योग दिवस पर जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए ये सब इनको पसंद आए हैं, 22 जून को विविधा कार्यक्रम इनको पसंद आया है, स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम इनको अच्छा लगा है, 23 जून को उर्दू प्रोग्राम इनको पसंद आया और इसी दिन का युववाणी कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा है, 24 जून को फिर से युववाणी कार्यक्रम इनको अच्छा लगा है और इसी दिन का उर्दू प्रोग्राम इनको दिलकश लगा है, कृषि जगत कार्यक्रम भी इनको ज्ञानवर्धक लगा है और इस पत्र में लिखने में यदि कोई भूल हुई हो तो इन्होंने लिखा है कि माफ कीजिएगा।
0: आप हर बार यही बात लिखती हैं और हर बात हमारा यही जवाब होता है हर बार आपके लिए कि ऐसा मत लिखा कीजिए, गलती हमारे श्रोता नहीं करते हैं, गलती हम लोगों से होती है कार्यक्रम प्रेजेंटेशन के दौरान, और श्रोता तो सर्वोच्च होते हैं किसी भी आकाशवाणी केंद्र के लिए, उनकी कही हुई हर बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो आपने जो भी लिखा है ठीक लिखा है, आगे भी आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को ज़रूर सुनिएगा, आकाशवाणी से आपका लगाव बहुत पुराना है, बचपन का ये स्नेह है और ये साथ यूं ही बना रहेगा, हम ऐसी कामना करते हैं। और मनोज आज बहुत विस्तार से श्रोताओं के खतों के जवाब दे पाना संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कार्यक्रम हमें 10:40 पर समाप्त भी करना है, 10:55 से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की हम सबको प्रतीक्षा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हुए श्रोताओं से माफ़ी के साथ कि उनके खतों को संक्षेप भी कहीं कहीं किया जाएगा, इस अनुरोध के साथ उसको स्वीकार करें और अगली चिट्ठी आप पढ़िए।
1: ये अगली चिट्ठी हमारे पुराने श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से, इन्होंने बहुत ही कलरफुल तरीके से चिट्ठी को लिखा है, ये हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी, लिखते हैं कि हम आकाशवाणी रामपुर के पुराने श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम सुनते हैं, खूबसूरत लगते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि 24 जून की रात 10 बजे प्रोग्राम दिल ढूंढता है सुना, प्रोग्राम को पेश किया था भाई असीम।

0: पसंद आया है। प्रोग्राम में दिल छूने वाले नगमे सुनने को मिले। आगे 27 जून को गीत आपके नाम आरजे रेणु तिवारी जी के द्वारा सुना। प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा लगा। और रिजवान जी का इनको प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम पसंद आया। सभी आरजे साथियों ने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया, सभी का दिल से शुक्रिया।
1: आपका भी शुक्रिया उन सभी की तरफ से जिनका जिक्र आपकी इस चिट्ठी में है। हरे काले और लाल रंगों के साथ अपने ख़त को बहुत सारे दिलों के साथ आपने सजाया है। ये दिल जो आपने हमें भेजे हैं, ये निश्चित रूप से आपका लगाव दिखाते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को, हमारे प्रेजेंटर्स को कितना चाहते हैं, दिल के करीब रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम प्रसारित होते रहें और ऐसे कार्यक्रम हों जो आपको पसंद आए।
0: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत जी, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। इनका पत्र थोड़ा सा बड़ा है और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी एक शिकायत भी है इसी खत में कि जो है पत्र को संपादित करके पढ़ा जाता है, लेकिन
1: आप पहले खत पढ़ने की कोशिश कीजिए।
0: बिल्कुल, 21 जून को प्रिय उद्घोषक मनोज सुनील और असीम जी को आपका पत्र मिला, मेरे साथ सुनकर अच्छा लगा। जब भी मौका मिले ऐसे ही साथ आते रहा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आपके केंद्र से अपनी माटी अपना देश के अंतर्गत प्रसारित योग से आरोग्य में योग के महत्व को बखूबी बताया गया। रेणु तिवारी जी का संकलन और सुनील सक्सेना जी का आलेख और असीम सक्सेना जी की प्रस्तुति बेहतरीन थी। इसी विशेष अवसर पर असीम सक्सेना और शोभित शर्मा जी के संयोजन में योग सबका साथ सबका विश्वास कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने एक जरूरी संदेश प्रसारित किया कि योग किसी धर्म की सीमा से नहीं बंधा है, सेहतमंद रहने के लिए यह हम सबके जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में इस्लाम में योग अर्थात वर्जिश के महत्व पर इससे जुड़े लोगों से बातचीत के जरिए बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला गया। आकाशवाणी परिसर में योग प्रशिक्षिका डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपाध्याय ने जहां कुछ प्रमुख योगासनों का अभ्यास कराया, वहीं योग से जुड़े टिप्स भी दिए। फेसबुक के माध्यम से आपने हम श्रोताओं को भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका विशेष आभार। इसी दिन विश्व संगीत दिवस के अवसर पर मनोज कुमार जी ने इस विशेष दिन के इतिहास और हमारे जीवन में संगीत के महत्व पर कर्णप्रिय गीतों के साथ बेहतरीन संगीत में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हालांकि कार्यक्रम की समय अवधि सिर्फ 12 मिनट ही थी। कार्यक्रम यदि कम से कम आधे घंटे का होता तो संगीत पर कुछ और जरूरी बातें हो सकती थी। 23 जून को सुबह सवेरे में शहजी आगा ने संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और विश्व ओलंपिक दिवस पर अच्छी जानकारी दी। 24 जून को हर बार की तरह इस बार भी दिल ढूंढता है कि पेशकश लाजवाब थी। इस शानदार प्रस्तुति के लिए असीम सक्सेना जी को दिली मुबारकबाद। कार्यक्रम में श्रोताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखकर अच्छा लगा। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी देशभर के श्रोताओं तक पहुंची और उन्होंने कार्यक्रम में बढ़कर शिरकत की। यह सिलसिला यूं ही जारी रहे। 26 जून को फिर से इन्होंने लिखा है कि सुबह सवेरे में अखिलेश सक्सेना जी ने मुहर्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनकी तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अच्छी जानकारी दी। जयंती पर उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का भावपूर्ण स्मरण किया, अच्छा लगा। इसी दिन मन भावन में गीतमाला मन शीर्षक से नेहा जी ने अच्छे गीत सुनवाए। सिर्फ गानों के स्थान पर नेहा जी यदि कार्यक्रम में मन विषय पर कुछ अपने मन की बातें भी कहती तो प्रोग्राम में और अधिक बेहतरीन हो जाता। 27 जून को सुबह सवेरे में फिर से अखिलेश सक्सेना जी ने छोटे व्यवसायों के विकास और उनके वैश्विक योगदान के महत्व को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाए जाने वाले सन ग्लासेस डे और अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस के बारे में अच्छी जानकारी दी। लंबे समय तक मोबाइल पर समय बिताने पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया, अच्छा लगा। और अखिलेश सक्सेना जी की खासियत ये थी कि आधे घंटे के कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों को न सिर्फ समेट लेते हैं बल्कि उन पर सार गर्भित जानकारी भी हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आगे आपने लिखा है कि 27 जून को मनभावन में गीतमाला रेणु तिवारी जी ने घटते जल स्तर, पीने के पानी की निरंतर होती कमी और इससे भविष्य में होने वाली समस्याओं की ओर बखूबी ध्यान खींचा। सही बात है, यदि हम आज जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में हम सबके जीवन के लिए एक बड़ा संकट होगा। इसी दिन उन्होंने गीत आपके नाम में बेहद खूबसूरत गीत सुनवाए। अंत में एक मीठी सी शिकायत उन्होंने वही लिखी है कि मनोज कुमार जी से है जो पत्र संपादित कर पढ़ते हैं। पत्र विस्तार से लिखने का आशय किसी विषय पर अपने विचारों आप तक पहुंचाने के साथ ही श्रोताओं के साथ साझा करना भी होता है। पत्र का जवाब भले ही आप अपनी सुविधा अनुसार दिया कीजिए लेकिन पत्र अवश्य पूरा पढ़ा कीजिए। मनोज जी अपनी तारीफ का हिस्सा तो पूरा ही छोड़ देते हैं, हो सकता है अब बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है जो हम
1: पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन दिल और जुबान साथ नहीं दे रही है। मनोज के बारे में इन्होंने लिखा है कि अपनी भी तारीफ वो पढ़ा करें। हम यहीं से शुरुआत

0: करते हैं कि आप श्रोता वक्त निकालते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि उसी तरह से जिस मनभाव के साथ आपने ये चिट्ठी हमें लिखकर भेजी है हम शामिल करें। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और कभी कभी समय इजाज़त नहीं देता कि हम आपकी चिट्ठी शब्दशः हूबहू वैसी की वैसी पढ़ पाएँ, क्योंकि और श्रोता भी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो एक अनुरोध आपसे करना चाहेंगे कि कहो तो अर्ज़ करें, मान लो तो क्या कहना, कहो तो अर्ज़ करें, मान लो तो क्या कहना, तुम्हारे पास हम आए थे एक ज़रूरत से। कभी कभी हमारी ज़रूरत ये बन जाती है कि श्रोता अगर छोटा लिखेंगे खत को, सीमित करके, गागर में सागर समेट कर अगर वो हमें चिट्ठी लिखेंगे तो हम बिल्कुल भी उनके खत को संपादित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय होगा पर्याप्त तो, और ये जो संपादित करने की व्यवस्था है ये हमारी भी मजबूरी, ज़रा सा समझ कर देखिए कि खतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमें समय उतना ही है हमारे पास, और उसमें सभी खतों को हमें शामिल करना है क्योंकि सभी को अपना इंतज़ार रहता है खत का, और सभी की ये ख्वाहिश होती है कि उनका खत पूरा की पूरा पढ़ा जाए। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है, लेकिन जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं। कार्यक्रम के लिए आपने खत लिखा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप इतने गहराई के साथ हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, जवाब देते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके खतों को पूरा पढ़ा जाए। और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर जो मनोज ने कार्यक्रम प्रसारित किया वो केवल 12 मिनट का था, तो उस दिन अवधि कार्यक्रम की सीमित इसलिए हुई क्योंकि और कोई समय ही नहीं था हमारे पास। दिन भर योग के कार्यक्रम चले और फिर शाम को क्रिकेट मैच था, तो ये जो 12 मिनट का समय बचा योग के कार्यक्रम के बाद उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को भी कवर किया। और जहाँ तक राहुल देव बर्मन के संगीत का जिक्र भी होना चाहिए था कार्यक्रम में, तो हमने आधा घंटे का एक कार्यक्रम इस पर फिल्म संगीत का प्रसारित हुआ, तो जो राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए हुए गीतों से सजा था। तो कार्यक्रम सुनते रहिए, इसी तरह से चिट्ठी भेजते रहिए। और हाँ, ये मजबूरी थोड़ी सी दिल ढूंढता है में भी आई थी कि इस बार श्रोताओं के खत उम्मीद से कहीं कहीं कहीं ज़्यादा थे और सभी को शामिल करना था, तो अगर थोड़ा सा खत छोटा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी बात माने ना माने, हमारा तो ये काम है कि आप जो भी लिख कर भेजेंगे हम उसे शामिल करेंगे।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है नवाबुद्दीन, और इन्हीं के साथ में मोहम्मद जमालुद्दीन, निज़ामुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद लिखते हैं कि कल यानी 27 जून को रेणु जी ने गीत आपके नाम अच्छे अंदाज में पेश किया। अनिल राजपूत जी का आपके अनुरोध पर अच्छा लगा। अपर्णा जी ने 28 जून को सुबह सवेरे अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, मगर गीतों का चयन अच्छा नहीं था, बुरा नहीं माने। आगे आप लिखते हैं कि मोहम्मद अली मौज मरहूम फरमाते थे कि सुबह सवेरे प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोताओं के दिल में उत्साह, स्फूर्ति, लगन, ऊर्जा का संचार हो। इसी तरह गीतांजलि के लिए कहते थे कि गीत ऐसे हों जैसे कोई अपनी माँ अपने बेटे को लोरी सुना रही हो। एक बात कहना चाहूँगा कि नातों कव्वाली के प्रोग्राम में आप वही कव्वाली रिपीट करते हैं, पुरानी आर्काइव से निकाल कर कभी कव्वाली सुनवाओ तो मज़ा आ जाए। इसके अलावा बाकी सभी प्रोग्राम तारीफ़ काबिल हैं, अपनी मोहब्बतों के जाम से इसी तरह मदहोश करते रहिए, अगली मुलाकात तक खुदा हाफिज।
0: नवाबुद्दीन साहब, मौज साहब ने सुबह सवेरे कार्यक्रम के लिए जो बातें कही थीं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हम शुरुआत कार्यक्रम की इसी तरह से करते हैं और लगभग हमारे सभी प्रेजेंटर्स ऐसा ही करते हैं कि शुरुआत में कुछ मोटिवेशन की बात, कुछ ऊर्जा की बात, कुछ दिन की बात हम करते हैं। उसके बाद ये इंफोटेनमेंट कार्यक्रम है, इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को भी कवर करते हैं जो उस दिन से खास तौर से जुड़े हुए होते हैं। उस दिन कोई खास दिन होता है, किसी महापुरुष की जयंती होती है, कुछ खास बात होती है, समाचार पत्र की सुर्खियां भी अब कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, इतिहास के बारे में भी हम जानकारी करते हैं कि इस दिन क्या क्या कुछ ऐसा घटित हुआ जो याद रखने काबिल है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं आपको लगता हो कि ऊर्जा की कमी हो रही है या स्फूर्ति या लगन का संचार नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है और यही कोशिश अपर्णा ने भी की। और जहाँ तक गानों की बात है, गानों के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं उस बात को गति दे हमारा अगला वाला गाना जो आप सुनने चाह रहे हैं। जो बातें हम कह नहीं पा रहे हैं समय के अभाव के चलते, वो गाना आपसे कह दे। तो इस कोशिश में जो गाने हमें ठीक लगते हैं या हमें उपलब्ध हो पाते हैं हम वो गाने इस कार्यक्रम में बजाते हैं। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना हो सकता है, आपको गाने अच्छे ना लगे हों, लेकिन और श्रोताओं के भी विचार हम इस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे केंद्र से जो गाने बजते हैं ये तो हम दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं बड़े यकीन के साथ कि वो गाने बड़े चुनिंदा होते हैं और हमारे श्रोताओं को पसंद भी आते हैं, और कव्वाली के बारे में हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। खत भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी, इन्हीं के साथ हैं अल्ताफ हुसैन अंसारी भी। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा आदाब, हम रामपुर केंद्र से सभी कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं और बहुत खुशी भी मिलती है। आपके कार्यक्रमों को सुनकर 21 जून को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत खास रहा, उस कार्यक्रम में दो आवाज़ों की जगह तीन आवाज़ों में इस कार्यक्रम को पेश किया गया। 24 तारीख को दिल ढूंढता है कार्यक्रम बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, सभी तहरीरें बेहद खूबसूरत थीं, कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत शानदार थी। फोन इन कार्यक्रम के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि लाइव कार्यक्रम में क्वालिटी ठीक नहीं मिलती, कई बार कॉलर की आवाज़ ठीक नहीं मिलती, कभी कॉलर की गीत कोई सा बताता है और कोई सा सुनाया जाता है, बेहतर होगा कि अगर आप फोन इन प्रोग्राम को रिकॉर्डेड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर लाइव क्वालिटी में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है।
0: लाल मोहम्मद जी, आप पहले भी कई बार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि फ़ोन इन कार्यक्रम रिकॉर्डेड होना चाहिए, लेकिन अभी इस तरह की सुविधा हमारे पास नहीं है, हम लाइव ही कार्यक्रम आप तक पहुंचा पाएंगे क्योंकि व्यवस्था ही कुछ इस तरह से है। लाइव में क्वालिटी ठीक न मिलने की बात है क्योंकि लाइन कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाती है और कुछ अवरोध हमारी और आपकी बातचीत जो फ़ोन के ज़रिए होती है उसको स्पष्ट नहीं होने देते, लेकिन कोशिश यही रहती है कि क्वालिटी अच्छी मिले। और जहां तक गीत की बात है तो अब तो ये शिकायत नहीं होगी हमारे श्रोताओं को कि वो फरमाइश कोई और करते हैं, गीत कोई और बजाता है, ऐसा अब नहीं है, ये बात, ये शिकायत आपकी पुरानी है जिसे दूर कर लिया गया है और क्वालिटी की तरफ हम बराबर ध्यान देंगे और जब कभी भी संभव होगा इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड करने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड भी कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड करना हमारे लिए भी ज़रूरी इसलिए हो गया है कि कई बार श्रोता कुछ अनर्गल बातें, कुछ आपत्तिजनक बातें, कुछ ऐसी बातें जो माइक्रोफोन के ज़रिए एक उद्घोषक और एक श्रोता के बीच नहीं होनी चाहिए वो ऐसी बातें करने लगते हैं, तो लाइव में तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि उसे शामिल करना, या एक श्रोता दो दो कॉल भी कर लेते हैं या एक श्रोता आवाज़ बदल कर अलग अलग नामों से भी कॉल कर लेते हैं, तो ये सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। हम भी कोशिश में हैं कि कार्यक्रम किसी भी तरह से रिकॉर्डेड कर पाएं। खत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया।
0: यहीं पर एक बात बता दें कि हमारे एक श्रोता है इरफान खान साहब, उन्होंने कई बार इस तरह के मैसेज किए कि एक श्रोता एक खत में दो जगह के नाम लिख कर भेजते हैं, उनका इशारा इसी तरफ था, तो हम बता दें कि ये श्रोताओं का आपसी समन्वय है और अगर एक श्रोता खत लिखने में विवश हो जाता है तो वो अपने दूसरे साथी से कह देता है कि मुझे भी यही बातें करनी है, आप अपने साथ मुझे भी जोड़ दी, तो बस ये वही बात है।
1: बिल्कुल
0: जी, अब आगे अगला खत।
1: ये लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब, 21 जून का आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना जो अपने आप में बेहद खास और दिलनशी रहा, तीन खूबसूरत आवाजों में पेश किया गया, यह कार्यक्रम सुनकर दिल बाग बाग हो गया। खत आदरणीय सुनील सक्सेना जी और मनोज कुमार जी ने बेहद खूबसूरती से पढ़े, जबकि खतों के जवाब आकाशवाणी रामपुर की शान आदरणीय असीम सक्सेना जी ने अपने पूर्वाकार और दिलकश अंदाज में दिए। दूसरी सभा में दीपिका जी ने सुरीले नगमों के साथ गीत गाता चल कार्यक्रम को यादगार बना दिया। 22 जून की पहली सभा में अनिल राजपूत जी का अंदाज हमेशा की तरह असरदार रहा। गीत आपके नाम में एमन तंजील जी ने बेहतरीन गीतों के साथ कार्यक्रम का शानदार आगाज किया। 23 जून को पहली सभा में शहजी आगा जी की प्रस्तुति बेहद उम्दा रही और 24 जून की पहली सभा अत्यंत पसंद आई। गीत आपके नाम में रेणु तिवारी जी ने अपनी मधुर प्रस्तुति में समा बांध दिया। दूसरी सभा में आज शाम गीत गाता चल इशरत देवेरिया जी ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। वहीं दिल ढूंढता है कार्यक्रम में आकाशवाणी रामपुर की आन बान और शान असीम सक्सेना जी ने अपने लाजवाब अंदाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। 25 जून को सुबह सवेरे मॉर्निंग हिट्स और मुहर्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम सुना जो बेहद ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली रहा। गीत आपके नाम में अपर्णा जी ने बेहतरीन गीतों के साथ पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। धरोहर के अंतर्गत और फन बेमिसाल है कि 12वीं कड़ी भी सुनी जिसे सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। 27 जून की पहली सभा में अखिलेश सक्सेना जी ने शानदार प्रस्तुति दी। इसी दिन स्वास्थ्य संदेश में साइटिका की समस्या पर अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। धरोहर के अंतर्गत नाटक सच्चाई का वादा भी सुना जो बहुत पसंद आया। इसी दिन मन भवन गीत आपके नाम और हेलो रामपुर कार्यक्रम रेणु तिवारी जी ने बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आकाशवाणी रामपुर के सभी उद्घोषक की पुरखुलूस आवाज, बेहतरीन अदायगी और श्रोताओं से मोहब्बत भरा रिश्ता हर कार्यक्रम को यादगार बना देता है। आप सभी की सभी को दिली मुबारकबाद और ढेरों दुआएं।
0: आज आपने लिखा है कि तीन आवाज़ों में कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। आज भी हमारी कोशिश तो यही थी, मन भी यही था कि हम मनोज और अपर्णा मिलकर इस कार्यक्रम को करते, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो स्थितियां हैं वो साथ नहीं देती। आज सुबह से मौसम इतना गर्म है कि किस तरह से कार्यक्रम आप तक पहुँचाए गए हैं, कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं हम उनको माइक्रोफोन पर आपसे बयान नहीं कर सकते कि किन हालातों में बैठकर हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कुछ समस्याएं हैं जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और महसूस करने के बाद यही कह सकते हैं, खुद दिल से दिल की बात कही, आगे नहीं कहेंगे तो कुछ स्थितियाँ अगर साथ देती तो और बेहतरीन तरीके से हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते, क्योंकि जब मन और दिल और दिमाग एक साथ तालमेल में होते हैं तभी कार्यक्रम बेहतर बन पाता है। तो दिल में तो कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और है, तब इन परिस्थितियों में कार्यक्रम आप तक इन दिनों हम पहुंचा रहे हैं। हमारी विवशता को शायद आप इशारों में अगर समझ रहे होंगे तो समझिएगा, लेकिन हमारा पहला प्रयास ये है कि हमारे श्रोताओं को किसी भी तरह का आभास नहीं होना चाहिए कि किन मुश्किलों से गुजरकर हम कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल में भले ही दुख हो लेकिन हमें आपसे मुस्कुराते हुए ही बात करनी है। ये एक खासियत है प्रेजेंटर की कि हर हालात में उसे अपने श्रोताओं का साथ निभाना है, और यही कोशिश हमारी आज के कार्यक्रम में भी है, वरना हम तीन आवाज़ों में कार्यक्रम आप तक ज़रूर पहुँचाते। आगे भी कोशिश रहेगी कि जैसा कि फरमाइश भी आई थी कि अपर्णा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो भी हिस्सा बनेंगी और कार्यक्रम आप तक आगे भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अपर्णा, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जिस तरह के गाने उनको सुनवाए उनको अच्छे लगे। जी मनोज, कहाँ हो गए आप?
1: अब ये अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, मैं तो सोच रहा था कि आज क्यों ना हाँ अपर्णा जी को शामिल ही कर लिया जाए, लेकिन मुस्कुराहट उनकी ये जरूर
0: नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर देरी किस बात की, इस बात का जवाब हम अपर्णा जी से ही दिलवा देते हैं श्रोताओं को।
2: बहुत बहुत शुक्रिया असीम जी, कार्यक्रम में आपने हमें आखिर शामिल कर ही लिया। भले ही खत मनोज जी पढ़ रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं, और आप तो खतों का जवाब देने के माहिर ही हैं। श्रोताओं ने हमारे कार्यक्रमों को सराहा है, हमारी जो भी पेशकश है उन्हें अच्छी लगी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी यही रहती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों हम अपने श्रोताओं तक अपनी जो भी परेशानी है वो ना पहुंचने दें, बस उनका मनोरंजन करते रहें, उन तक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स पहुँचाते रहें।
1: बिल्कुल, और ये जो अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है ये हमारे श्रोता हैं जिला हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम जमदाड़े। लिखते हैं कि 21 तारीख को कार्यक्रम आपका पत्र मिला, मैं असीम सक्सेना, सुनील सक्सेना और मनोज कुमार जी को सुना, अच्छा लगा। हमारे इधर खरीफ की बुवाई चल रही है, खेती के काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, सबकी डिटेल लिख पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कार्यक्रमों को सुना है, जैसे हेलो रामपुर, मन भवन, कुमकुम, गीत गाता चल, गीत आपके नाम, गीतांजलि आपके अनुरोध पर, धरती गाती है, बरगद की छांव, श्रोता मंच, ये सभी कार्यक्रम इन्होंने मन लगाकर सुने और पसंद भी आए।
0: मनोज, हमारे इन श्रोताओं ने हमारे सारे कार्यक्रम सुने, इन्हें पसंद आए, और इन्होंने लिखा है कि खरीफ की बुआई चल रही है, तो हम इनसे ये कहेंगे कि हमारे यहाँ का कृषि जगत कार्यक्रम ज़रूर सुनिए, क्योंकि 6:20 पर हर रोज़ हम ये कार्यक्रम अपने किसान भाइयों के लिए प्रसारित करते हैं, और खेती में जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिक जानकारी भी उन तक उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही जो गतिविधियाँ चल रही हैं खेतों में इन दिनों, जो सामयिक कार्य चल रहे हैं उन पर भी चर्चा होती है, कृषक अनुभव भी हम आपको सुनवाते हैं, मनोरंजन तो होता ही है, मौसम की भी जानकारी दी जाती है, और एक क्षेत्र में जाकर किसी भी, जो भी हमारे जनपद हमारे परिक्षेत्र में आते हैं उनके किसी भी ब्लॉक में जाकर, किसी भी गांव में जाकर उस वास्तविकता को परखा भी जाता है। आकाशवाणी गांव में वो कार्यक्रम है, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम हम विभिन्न अंचलों से प्रसारित करते हैं, तो ज़रूर कृषि जगत कार्यक्रम सुनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भले ही खत ना लिख पाएँ, संक्षेप में लिख पाएँ, स्वागत है आपका।
1: ये अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट। लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आदरणीय असीम सक्सेना जी और मनोज कुमार जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। मुझे एक जानकारी चाहिए कि कार्यक्रम दिल ढूंढता है वर्तमान के अंक इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं। मैं यूट्यूब पर बहुत ढूंढती रह गई, मुझे मिला नहीं। सभी कार्यक्रमों को जैसे समय मिलता है सुनती हूँ। बधाई और शुभकामनाएं।
0: जयमंत्री जी,

0: कोशिश तो थी कि दिल ढूंढता है कि सभी अंक YouTube पर डाले जाएं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि श्रोताओं के जो खत एंड टाइम पर हमें मिलते हैं उनके ये चलते कि हमें ये कार्यक्रम वैसे तो रिकॉर्डेड करना था, लेकिन मजबूरी ये हो गई कि अब इस कार्यक्रम को लाइव हम करते हैं, क्योंकि श्रोताओं के जो ईमेल हैं, जो उनके जज्बात हैं, जो उनके खत हैं, वो हमें देर से मिल पाते हैं, रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं होता है।
1: लेकिन सर कुछ एपिसोड यूट्यूब पर दिल
0: जी
1: ढूंढता है के पड़े
0: बड़े
1: हुए
0: बड़े
1: हैं।
0: पुराने हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके इस अनुरोध की चर्चा अपने अधिकारियों से करें और कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जो भी लाइव प्रसारित हो रहे हैं दिल ढूंढता है के अंक, वो भी आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएं। इस बार का अंक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मत ढूंढिएगा, क्योंकि कार्यक्रम में आप लाइव ज़रूर शामिल हो सकती हैं। अगली बार जब भी ये कार्यक्रम हो, आपकी चिट्ठी का हमें इंतज़ार रहेगा। कार्यक्रम सुनने के लिए, खत भेजने के लिए जयमंत्री केवट जी आभारी हैं हम आपके, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है भाई रफत साहब और इनके परिवार वालों की। लिखते हैं कि हम आकाशवाणी रामपुर के बहुत ही पुराने और नियमित तो श्रोता हैं, सभी प्रोग्राम इनको पसंद आते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि फीडबैक प्रोग्राम्स और अनाउंसर्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि सभी कार्यक्रमों का हम फीडबैक देते हैं और सभी लिसनर्स के साथ इन्होंने सभी आरजे को अप्रिसिएट भी किया है।
0: रफत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन एक शिकायत हमारी भी आपसे ये है कि आप अक्सर लिखते हैं कि आपके खत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। कहीं कुछ जांचने की ज़रूरत है कि आपके खत आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आपके खत नहीं मिल पा रहे हैं। इन दिनों खतों के ढेर में हम तलाशते हैं, आपके नाम का खत जो आपके द्वारा भेजा गया हो नहीं मिलता है। तो कहीं कुछ तो है जो आपके खत हम तक नहीं पहुंच पा रहे, और हम जो पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम है उसमें आपके पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन खत भेजने का सिलसिला आप ज़रूर जारी रखिएगा, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। वैसे तो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लगातार कार्यक्रमों का हिस्सा बन ही रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए, कार्यक्रम पसंद करने के लिए, और फिर खत डालने के लिए।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी और इनके परिवार वालों की। लिखते हैं कि मेरी बस आपसे छोटी सी विनती ये है कि आप टेलीफोन नंबर की जगह मोबाइल नंबर का प्रयोग कीजिए या फिर फ़ोन कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर दीजिए। घंटी जाती रहती है मगर फ़ोन रिसीव नहीं होता। प्लीज़ लैंडलाइन नंबर की जगह मोबाइल नंबर कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: बहुत सारी बातें आपने हमारे फ़ोन इन कार्यक्रमों को लेकर लिखी हैं, पहले भी आप लिखते रहे हैं, लेकिन जो संभव हो पाता है हम उतना कर पाते हैं। फिलहाल मोबाइल नंबर का और जो टेलीफोन नंबर की जगह आप मोबाइल नंबर के प्रयोग की बात कर रहे हैं, ये निर्णय लेना आसान नहीं है, इसके लिए पूरा व्यापक विचार विमर्श करना पड़ेगा, एक रूपरेखा बनानी होगी, और नीतिगत निर्णय है, इस पर हम विचार करने के बाद आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है तो कोशिश यही की जाएगी कि कार्यक्रम आने वाले दिनों में किसी भी तरह से रिकॉर्डेड हो जाए, तो श्रोताओं को भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी, और फिर वो समस्या दूर हो जाएगी कि हम फ़ोन कर रहे थे, हमारा फ़ोन नहीं लगा। उतने टाइम पीरियड में जितने भी श्रोताओं के खत आएंगे उनको हम खत का बल्कि फ़ोन आएंगे तो उनको हम शामिल कर लेंगे, और फिर अपने हिसाब से उनको संपादित भी कर दिया जाएगा, ये सुविधा हमारे पास होगी। खत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सभी बातें जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग संबंधी हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श के बाद, चर्चा करने के बाद आपको बताया जाएगा।
1: और ये हमें लगता है कि इन श्रोताओं का इस कार्यक्रम में पहली बार खत
0: नहीं,
1: है।
0: पहले भी आ चुका है मनोज जी।
1: अच्छा,
0: जी
1: ये हमारे श्रोता हैं ग्राम हजरत नगर गढ़ी तहसील व जिला संभल से महेंद्र सिंह पासी, डॉक्टर वीर सिंह पासी और सुनील कुमार। लिखते हैं कि आप सभी को प्रणाम, आशा है कि आप आकाशवाणी रामपुर के सभी लोग स्वस्थ होंगे। आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय और प्रशंसनीय हैं। लोकप्रिय एवं जनप्रिय दिल ढूंढता है कार्यक्रम असीम सक्सेना जी ने शानदार प्रस्तुत किया। दिल ढूंढता है कार्यक्रम में इस बार काफ़ी श्रोताओं ने हिस्सा भी लिया, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अंत में सभी श्रोताओं से ये अपील करता हूँ कि गर्मी से अपना बचाव करें और पानी का भरपूर सेवन करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें।
0: ये जो बातें आपने लिखी हैं ये निश्चित रूप से हम सब के लिए आज के वक्त में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हम यही कहने पर मजबूर होंगे कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। गर्मी और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पर्यावरण के असंतुलन का ही प्रभाव है कि गर्मी पड़ती है तो बेतहाशा पड़ती है, बरसात आती है तो बेतहाशा होती है, और सर्दी होती है तो भीषण सर्दी का प्रकोप होता है। पहले ऐसा नहीं था, मौसम अपनी तरह से सुंदरता के साथ आते थे जाते थे, हद से नहीं गुजरते थे, लेकिन अब मौसम भी हद से गुजर रहे हैं और इसके लिए पानी भी जिम्मेदार है, पर्यावरण भी जिम्मेदार है। और हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार महेंद्र सिंह जी ये चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से हम अपनी इन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाएं, और विभिन्न कार्यक्रम हम इस तरह के प्रसारित भी करते हैं। कार्यक्रम दिल ढूंढता है आपको पसंद आया, आप भी उसका हिस्सा थे, आगे भी ये हिस्सेदारी ज़रूर निभाते रहिएगा। अच्छा लगता है कि जब बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम में अपने जज्बात, अपने दिल की बात लिखकर भेजते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, क्यों रात का वक्त होता है मनोज, और हम चाहते हैं कि श्रोता वो बातें हमसे शेयर करें जो किसी से कह ना पाए, जो उनके दिल में हो, जो उनके राज किसी से कहने में वो मजबूर हो जाते हैं कि नहीं कह सकते, तो उनको हम अगर हमारे साथ बांटें, कुछ दिल में छुपी हुई बातें, कुछ दिल में छुपे हुए दर्द, कुछ दिल में छुपे हुए ये अच्छी याद लिए हुए लम्हे, वो सब बातें शेयर करें तो अच्छा लगेगा। और बाकी तो कार्यक्रम में आप जो भी लिखकर भेजते हैं, अगर प्रसारण योग्य होता है तो हम उसको शामिल करते ही हैं। दिल ढूंढता है कार्यक्रम में हमें आपके और खतों का भी इंतज़ार रहेगा। मनोज, श्रोता इस कार्यक्रम में लगातार हिस्सेदारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सुकून की बात है, सम्मान की बात है। श्रोताओं की इसी तरह से हिस्सेदारी हमारे कार्यक्रमों की सफलता का प्रतीक है, और श्रोता जिस तरह से कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
1: बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि श्रोता बराबर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, और जिस तरीके से उनकी चाहत रहती है, ख़ास तौर से दिल ढूंढता है प्रोग्राम में लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है और पसंद भी करते हैं। तो सर, एक रिक्वेस्ट यही है आपसे भी कि इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर ज़रूर डाला जाए, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं की मांग ये रहती है।
0: मनोज, जैसा कि पहले भी कहा कि ये चर्चा एक विचार विमर्श चाहती है, और किस तरह से ये संभव हो पाएगा कि हम यूट्यूब पर दिल ढूंढता है कार्यक्रम के जो भी अंक प्रसारित हों, वैसे आपको पता ही है कि हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को दिल ढूंढता है कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है रात 10 बजे। श्रोताओं का कार्यक्रम है, श्रोताओं के लिए है, हम तो बस एक माध्यम बनकर उनकी बात उन तक पहुँचा देते हैं। और कुछ गीत इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं की तरफ से अनुरोध आता है, कुछ अपनी तरफ से हम जोड़कर ये रात का वक्त एक साथ मिल बैठकर गुजारते हैं। यही दिल ढूंढता है कि सफलता है, और यही दिल ढूंढता है का उद्देश्य भी है कि हम सबके लिए वक्त निकालते हैं पूरी ज़िंदगी में, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त वो वक्त है जो ख़ास आपके अपने लिए होता है। श्रोता लगातार आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं और हिस्सेदारी निभा रहे हैं कि कार्यक्रमों को बेहतर किस तरह से बनाया जाए, अच्छी बातें भी बताते हैं और जो कमियां होती हैं उनकी तरफ भी इशारा करते हैं। आज के कार्यक्रम को देखिए, कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमसे कहीं छूट रही हैं, हमने उनको ध्यान में रखा है, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम उन शिकायतों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपको हैं, उन सुझावों को भी अमल में लाएंगे जो आप चाहते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होना, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आकाशवाणी रामपुर आप सबके दिल के बहुत करीब है, बहुत चाहते हैं आप, और यकीन मानिए ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए, किसी भी केंद्र के लिए उसके श्रोताओं का प्यार बड़ा ही अद्भुत होता है। और आज कार्यक्रम थोड़ा 5 मिनट हमें सीमित करना पड़ रहा है, क्योंकि 10:55 पर एक विशेष कार्यक्रम से पहले विज्ञापन आएंगे, और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हम तक भी पहुंचेगी, आप तक भी पहुंचेगी। इस कार्यक्रम को सुनना हम सब के लिए बहुत आवश्यक भी हो जाता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, क्या अपेक्षाएँ हैं उनकी, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा, अभी 10:40 पर आपके लिए हम आसपास कार्यक्रम का विशेष अंक लेकर हाजिर होंगे। आज के कार्यक्रम में मनोज, आपने श्रोताओं की प्रतिनिधि बनते हुए उनके खत पढ़े, और हमने भी कोशिश की कि जवाब जितना भी संभव हो पाए उन श्रोताओं के खतों का दिया जाए तसल्ली बख्श। कहाँ तक सफल हुए ये तो श्रोता ही बताएंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलने के वादे के साथ मनोज श्रोताओं से आज्ञा लेते हुए कर लेते हैं
1: नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर कार्यक्रम था आपका पत्र मिला। आज आपके पत्रों का उत्तर दे रहे थे श्री असीम सक्सेना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय गतिविधियों पर साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। वाचन व संकलन है सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की।
1: नमस्कार। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है।
2: आसपास के आज के इस अंक में शामिल है 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामपुर जनपद में जगह जगह हुआ योगाभ्यास। पनवाड़िया स्थित सद्भावना मंडप में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा और कर्मचारियों अधिकारियों ने किया योग। रजा लाइब्रेरी में मीनाक्षी गुप्ता ने लोगों को कराया योग। इस अवसर पर लाइब्रेरी के निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्र ने दी योग के बारे में जानकारी। राह रजा स्थित संत शिरोमणि रविदास सभागार में 25 जून को राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर ने 52 मामलों में की सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से की वार्ता। 10 मुहर्रम को जनपद रामपुर में निकले 652 ताजियों के जुलूस। शहर में इमामबाड़ा खासबाग से निकला जुलूस सीआरपीएफ कैंपस होते हुए आगापुर स्थित करबला पहुंचा। अजादारों ने नुहाखवानी और मातम किया। जुलूस के करबला पहुंचने पर अजादारों ने छुरियों का मातम किया। इसके बाद नम आंखों के बीच ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। 26 जून को रामपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बीसी सक्सेना ने चिकित्सकों और स्टाफ को दिलाई शपथ। 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। पनवाड़िया स्थित सद्भावना मंडप में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलक, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा रजा लाइब्रेरी में मीनाक्षी गुप्ता ने योगाभ्यास कराया।
3: योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमारा सेटल होना इम्पोर्टेंट है। आराम से बैठ जाएं, जैसे भी जिस भी आसन में आपको आराम मिलता हो उस आसन में बैठें। आंखें बंद करें, 5 लंबी गहरी सांसें लें।
2: इस अवसर पर लाइब्रेरी के निदेशक डॉक्टर पुष्कर मिश्र ने कहा,
4: यदि प्राण संतुलित हो गए तो देह संतुलित हो जाती है, देह संतुलित हो गई तो मन संतुलित हो जाता है, मन संतुलित हो गया तो हमारा व्यवहार संतुलित हो जाता है, हमारा व्यवहार संतुलित हो जाए तो लोक यानी कि समाज भी संतुलित हो जाए। तो स्वस्थ होना वास्तव में संपूर्ण धरा के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसमें वृद्धावस्था की बात आई, 3-4 वर्षों में मैं भी वृद्ध की श्रेणी में आ जाऊंगा। तो अष्टांग योग को ही यदि हम आधार माने, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग कहा जाता है।
2: 25 जून को राही रजा स्थित संत शिरोमणि रविदास सभागार में दिव्यांगों की राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर ने सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा,
5: मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है और रामपुर जनपद में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मकसद यही है कि दिव्यांगजनों को मुख्यालय तक पहुँचने में आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए सरकार की है कि हम खुद दूरी तय करेंगे, प्रशासन उनके द्वार पहुंचेंगे और यहाँ पर जो उनकी समस्या होती है उसके संबंध में पहले से ही निर्देश किया जाता है जिला प्रशासन को। इसी हिसाब से स्थान होता है, चिन्हांकन होता है, जगह भी जब हम चुनते हैं तो ऐसी जगह चुनते हैं जो बाधा रहित हो ताकि हमारे दिव्यांग साथियों को वहाँ पर आने जाने में असुविधा न हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि सारे

0: विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो उपस्थित रहें, और जो सुनवाई की जाती है जिनके विभागों से संबंधित सुनवाई होती है वो एक माह के अंदर उसके न्यायालय को अवगत की अपेक्षा की जाती है। आज के न्यायालय में अभी तक 43 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिनमें से अधिकांश आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड, इनके संबंध में आवास शहरी ग्रामीण क्षेत्र के। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे जहाँ पे सर्टिफिकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात थी, उसके लिए सीएम बोर्ड को जो मेडिकल बोर्ड उसको निर्देशित किया गया। कुछ प्रकरण ऐसे भी थे जहाँ पर यही अपेक्षा की गई थी कि पशु पुलिस के प्रकरण हैं उसके संदर्भ में भी निर्देश प्रदान किए गए, पूर्व में कार्यवाही की गई, उसकी आख्या प्रस्तुत की जाए ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि इसमें आगे की क्या कार्यवाही अपेक्षित है। कुल मिला जुला करके ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें तुरंत त्वरित कार्यवाही के तहत इनकी समस्याओं को, दिव्यांग साथियों की समस्याओं को समाधान होता है, और इनमें आशा की एक उम्मीद होती है कि सरकार इनके लिए सोचती है और इनकी बेहतरी के लिए प्रयास करती रहती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे पेंशन वगैरह की स्कीम है या दुकान निर्माण योजना है, उसमें सरकार इनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कुछ योजनाएँ हैं उसके बारे में भी जानकारी प्रदान किए जाने का उद्देश्य विभागीय स्टॉल का भी किया गया, आयोजन किया गया, BSO कैंप और मेडिकल बोर्ड का कैंप लगाया गया। इसमें जिन साथियों ने हमारे पूर्व से पंजीकरण स्वावलंबन बोर्ड के लिए कराया था उनके कार्ड्स भी जबरदस्त सर्टिफिकेट भी लगाए, तो ये आज के कार्यक्रम की हमारी
1: शहीदा ने करबला की याद में 10 मुहर्रम को रामपुर जनपद में 652 ताजियों के जुलूस निकाले गए। शहर में कोठी खासबाग से सुबह 7:30 बजे जरी का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अंजुमनों ने नुहाख्वानी और मातम किया।

0: जुलूस के करबला पहुंचने पर अजादारों ने छुरियों का मातम किया। इमामबाड़ा खासबाग में हो रहे अशराए मजालिस को खिताब करते हुए 9 मुहर्रम की रात दिल्ली से आए मौलाना इमरान अली ने कहा,
1: ए लोगों, क्या तुमने मुबाइले में नहीं देखा कि फर्जंद की हैसियत से कौन मैदान में आया? जाके पढ़िए कुरान की आयत, बात लीजिए, इसी गेट पे लिखिए बात। मुबाइला किससे हुआ था? मेरा साथ
2: यहूदियों से।
1: जी, किस चीज का हुआ था? इस्लाम की और दीन की जंग थी ना, यहूदियों की जंग थी। क्या कहा नबी पाक ने? हम नबी की सीरत को चलना है रज़ादारी को लेके। क्या कहा नबी पाक ने? तुम अगर नहीं करना चाहते और मैदान में मुबाइला कर लेते, ये तो कुरान ने कहते तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को ना थोड़ा सा मेहनत कर, थोड़ा सा मेहनत कर, तुम अपने बच्चों को लाओ, अपने बच्चों को ना, तुम अपने औरतों को लाओ, अपनी औरतों को ना, फिर हम एक दूसरे पर लानत करते हैं। इसका मतलब लानत होती है जब आदमी तारीफ ना माने और दलीलें ना माने, फिर आखिर में क्या बचेगा? लानत ही तो बचेगी। लानत को तो बड़ा कह दिया गया, तुमने बुरा किया है। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं आप सुनिए, इमाम हुसैन ने क्या कहा? भाई मुबाइले में कौन कौन गया? तारीफ पढ़िए आप, सारी किताबें निकाली, आज मैं बिल्कुल आराम से आपसे बातें करूँ, बातें जरूर आता हूँ करता हूँ। कौन कौन मुबाइले में गया रसूल की तरफ से? हुजूर गए, मौलाए कायनात गए, जनाबे मीर सैयदा गई, इमाम हसन गए, इमाम हुसैन गए। ये दोनों छोटे हैं, एक बच्चा गोद में, एक बच्चे ने उंगली पकड़ रखी, इनके अलावा तो कोई नहीं गया। इस फजीलत को लेने के लिए कोई मजमे से क्यों नहीं निकलता कि हम भी इस फजीलत में शामिल कर लो, हमें भी फजीलत में शामिल कर लो। अब इमाम देखिए, ये अब इमाम हुसैन करबला में याद दिला रहे, क्या मैं फर्जंद रसूल नहीं? अगर नहीं तो रसूल मोबाइल में कैसे लेके गए मुझे? दलील है ना। और अगर मोबाइल में लेके गए तो मैं रसूल का बेटा हूं नहीं हूं? फिर उसके बाद कह रहे हैं, क्या मैं फर्जंद अली मुर्तजा नहीं? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का नवाब बेटा नहीं हूँ? ये सब सब कह रहे जी, आमन ना सद्दक ना, आमन ना सद्दक ना, बिल्कुल सच करो, बिल्कुल सच करो, मेरे साबित कर रहा है। फिर इमाम कह रहे हैं, आप बताओ मैंने कौन से हलाल को हराम कर दिया, मैंने कौन सी नमाज बदल दी, मैंने कौन से रोजे को मना करा, क्या मेरे शरीयत को कोई बदलाव कर दिया, मैंने दीन मोहम्मद ही बदल दिया? अब इमाम तो बनता है ना, इमाम हुसैन सवाल कर रहे हैं और जब सवाल कर चुके सारी कुछ कर चुके थे, फिर बताओ ना, जब मैंने शरीयत नहीं बदली, कुरान नहीं बदला, नबी को मैं मानता हूँ, आले नबी में हूँ, तुम क्यों कत्ल करना चाहते हो मुझे? हक बनता ही नहीं बनता। ये आजादारी से यहूदी क्यों डरते हैं, ईसाई क्यों डरते हैं, दुश्मन इस्लाम क्यों डरते हैं? सुनिए मेरा चीज, क्योंकि रसूल का कत्ल हुआ छुपा दिया गया, अली मुर्तजा का कत्ल हुआ छुपा दिया गया, जनाबे फातिमा का कत्ल हुआ छुपा दिया गया, हसन मुस्तफा का कत्ल हुआ छुपा दिया गया, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल कैसे छुपे? मसला यहाँ यजीद को बचाने का नहीं है, यजीद पे तो खुद लानत करते हैं, मसला ये कि अगर आज यजीद पकड़ गया तो सवाल होगा यजीद को शाया किसने दी थी, फिर फलाह का नाम फलाह को किसने दिया, फलाह का नाम फलाह को किसने दिया, फलाह का नाम फलाह को किसने दिया, फलाह।
0: 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जिला अस्पताल रामपुर में कार्यक्रम हुए। इस मौके पर जिला अस्पताल रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ बीसी सक्सेना ने चिकित्सकों और स्टाफ को शपथ ग्रहण कराई।

0: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास।
1: वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी।
2: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की जनता से मन की बात का प्रसारण।

0: की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जनभागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका

साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान

बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं
और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती है। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और

ये पहली सूचना हमें मिली है। सूचना देने वाले हैं होमपाल सिंह पुत्र भूकन सिंह, निवासी ईशापुर सुनवारी, थाना नखासा, जिला संभल। ये सूचित करते हैं कि श्रीमती अनोखी पत्नी ओमपाल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनके शरीर की बनावट कुछ इस तरह है। कद 5 फीट, रंग सांवला, शरीर की बनावट सामान्य, बाल काले। घर से लापता होने के समय इन्होंने साड़ी और ब्लाउज पहना थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। ओमपाल पुत्र भूकन सिंह, निवासी ईशापुर सुनवारी, थाना नखासा, जिला संभल। मोबाइल नंबर है 8057116411। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8057111।

ये अगली सूचना हमें देते हैं हसमुद्दीन पुत्र महबूब अली, निवासी गड़ा थाना धनारी जनपद संभल। ये सूचना देते हैं कि नूर बानो पुत्री हसमुद्दीन पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, कद 5 फीट है, चेहरा गोल, रंग गोरा, बाल काले और घर से लापता होने के समय इन्होंने सलवार व सूट पहने थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। हसमुद्दीन पुत्र महबूब अली, निवासी गड़ा थाना धनारी जनपद संभल। मोबाइल नंबर है 9761451191। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9761451191।

0: परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे।
1: इन मासूम परिंदों से सीखें मोहब्बत, अखूबत और भाईचारा।
0: एहतराम करें हर मजहब का,
1: प्यार करें हर इंसान से।
0: भूल जाएं कि वो किस मजहब, किस फिरके, किस कौम का है।
1: इंसानियत है हर मजहब का पहला सबक।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स के साथ साथ आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल हो रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता, कर्ण, रिया, जया, शक्ति और दर्शन भाई। ये अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है खंडवा मध्य प्रदेश से संजीता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी, किट्टू और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और इनके परिवार वाले। ये हमारे श्रोता हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनके परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हम तक संदेश भेज रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हमें मिला है जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, इन्हीं के साथ हैं मोहम्मद दरियाज, रजिया नूरी, आफिया नूरी, शहजाद हुसैन और इनके परिवार के सभी लोग। नमस्कार के साथ वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से ये संदेश हम तक पहुंचा है जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहाना शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। गांव खावरी अब्बल से हमारे श्रोता हैं चौधरी राजवीर सिंह और इन्हीं के साथ हैं अवयाना कंचव। ये ईमेल संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती और ओम भैया। आप सब ने सुनना चाहा है अनुराधा पोडवाल के स्वर में ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत को लिखा है समीर ने। फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभैये। ये संदेश हम तक पहुंचा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। इन्हीं के साथ हैं कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और इन्हीं के साथ हैं अंकुर राघव गुप्ता। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल, बेबी प्रियांशी और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आवान और इनका अब्बासी परिवार। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं बारली मुंबई से नवाफ खान, इशरत जहां, अजहर खान और अजीम खान। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं गुरावा पोस्ट किलोद मध्य प्रदेश से नंदलाल राजपूत, राजू, मनुकाबाई, नंदनीबाई, रुद्र राजपूत और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद, मिथुन सांगा और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इनके परिवार वाले। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। ये हमारे श्रोता हैं गंडुंडवारा से मास्टर खिल्लू, परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। इन्हीं के साथ हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव। ये ईमेल हमें मिला है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता जी का। आप सबने सुनना चाहा है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से ये गीत, स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक का है। संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने और गीत को लिखा है रानी मलिक ने।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना तो लिख भेजिए अपने नाम अपने पते के साथ हमें इस ईमेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। ये संदेश हम तक पहुँचा है मनमोहन सिंह जी का, यूपी रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गाँव से। अगला संदेश हम तक पहुँचा है ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं मोहल्ला हलवयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और शवाना नाज। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, जयमंत्री केवट और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं बघेरा दुर्ग से, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ताजपुर मोरवा से, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता और इनके परिवार के साथ हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षता देशमुख। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली और युवान आर के राजा। ये हमारे श्रोता हैं बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से, फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आपने लिखा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, चांदनी, अनंता रहमान और आशु भाई मंसूरी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप सब ने सुनना चाहा है ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश। अगला संदेश हम तक पहुंचा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना और इनके परिवार के सभी लोग। चंदन नगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी, प्रभा और इन्हीं के साथ हैं शंकर देव और राधिका। ये ईमेल हम तक पहुंचा है शेरवानी गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लूना अंसारी और आलिया अंसारी। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और इनके साथ हैं राज एसडी अंसारी। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मधिया खान, सुभान खान और फिरोज खान। ये ईमेल हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके परिवार के सभी लोग। प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, ऋषि और कृष्णा गोट के आप संदेश भेज रहे हैं रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और इनके परिवार के सभी लोग। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर बेबी, मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जीएस रामगढ़िया। ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया।

मुंदी चेक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं डब्वाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी लोग। ये अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं शास्त्री नगर बीड शहर से, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईंराज, विशाल सपकाल और इनके परिवार वाले। आप सब ने सुनना चाहा है दिल है कि मानता नहीं फिल्म से, ये गीत स्वर अनुराधा पौडवाल का है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना है फैज अनवर की।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। ये ईमेल हम तक पहुंचा है कस्बा शीशगढ़ से इलियास इदरीशी, नाजरा इदरीशी, नईम इदरीशी, नदीम असद बाबू और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुंचा है गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार और चेतन सुतार जी। अगला संदेश हमें मिला है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हमें मिला है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये ईमेल हम तक पहुंचा है बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इनके परिवार के सभी लोग। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें संदेश भेज रहे हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। आपने संदेश भेजा है बालोद छत्तीसगढ़ से। ये हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन और रसीद वारसी, अनम यसफ और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं एटा से। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सबने सुनना चाहा है कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने और गीत को लिखा है समीर ने। फिल्म का नाम है वादा।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Mm-hmm. मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 और 11 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में, लेकिन पहले ये संदेश।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और अब कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आज शाम 6:30 से हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से सुनवाएंगे इंग्लैंड में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। ये प्रसारण हमारे मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर सुना जा सकेगा, जबकि इस दौरान मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। क्रिकेट कमेंट्री का प्रसारण हमारे केंद्र से शाम 6:30 से शाम 7:18 तक, शाम 7:31 से रात 8:45 तक और रात 9:30 से खेल की समाप्ति तक आप सुन सकेंगे। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत आज सुनेंगे शाम 5:45 पर, जिसमें चर्चा होगी जैविक खेती कितनी जरूरी विषय पर। कृषि संकेत में जानकारी का विषय होगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। क्षेत्र संकेत बातचीत होगी, मनोरंजन के लिए लोकगीत और मौसम का पूर्वानुमान भी बताया जाएगा। समय याद रखिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री विक्रांत चौधरी।

युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी का आज समय रहेगा हमारी आज की दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे। दिन में 2:30 पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यत से खास बातचीत करेंगे श्री विक्रांत चौधरी। समय याद रखिएगा विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत दिन में 2:30 पर। बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम कलियां आपसे कुछ ही देर में यानी दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी अवधेश कुमार गौतम की और कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगी प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से रिले की जाएंगी।

आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295

0: समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: वजीर आजम ने बैनुल अक्वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्यादा मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि कौमी तामीर में आवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफर को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो जरई जमीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन पर काश्त करें। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
1: वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वजीर आजम ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच दी रेन मुहिम को फरोग देने की अपील भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वजीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जलसे आम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वजीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीजन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वजीर आला जिले तरक्याती कामों और अमन अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वजीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वजीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इतिहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इतिहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। 25

0: नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी रामपुर पर आप सुन रहे हैं कलियां कार्यक्रम। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका और अगले कुछ मिनटों तक हम साथ मिलकर करेंगे मस्ती, सीखेंगे नई नई बातें और सुनेंगे बच्चों की शानदार प्रस्तुतियां।
1: और नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। बच्चों, मैं और प्रियंका आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलियां लेके। तो बच्चों तैयार हो जाइए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलियां।
0: जी हाँ प्रीति, वो प्रोग्राम जो समर्पित है दुनिया के सबसे खूबसूरत तोहफे को, यानी कि बच्चों को। तो चलिए प्रीति, बच्चों को ले चलते हैं ज्ञानवर्धक चर्चाओं की दुनिया में और उन्हें अवगत कराते हैं आने वाले दिनों से।
1: तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम आपको आज एक ऐसी महान महिला की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर फैसला बुलंद हो तो कोई भी कठिनाई इंसान की राह नहीं रोक सकती। उनका नाम था हेलेन केलर।
0: बच्चों, हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। जब वे केवल 19 महीने की थी, तब वह एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति दोनों चली गई। सोचिए बच्चों, ना वे देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी।
1: लेकिन बच्चों, उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी शिक्षिका ने उन्हें स्पर्श के माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान कराया। धीरे धीरे हेलेन ने पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख लिया।
0: बच्चों, आगे चलकर यही हेलेन केलर लेखिका, वक्ता और समाज सेविका बनी। उन्होंने दिव्यांग लोगों के अधिकारों और शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में काम किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया।
1: और बच्चों, हेलेन केलर हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
0: जी हाँ, तो आइए बच्चों, हम सभी हेलेन केलर के जीवन से प्रेरणा लें और ये संकल्प करें कि कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ आए पर हम हार नहीं मानेंगे। बच्चों याद रखिए, हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की सच्ची पहचान होती है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। और आइए बच्चों, अब बात करेंगे नंबरों के जादूगरी की।
0: नंबरों की जादूगरी, ये क्या है?
1: बच्चों, नंबरों की जादूगरी मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो हम कल 29 जून को मनाने वाले हैं। बच्चों, आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये आखिर सांख्यिकी है क्या?
0: तो बच्चों आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, सांख्यिकी का मतलब है जानकारी या आंकड़ों को इकट्ठा करना, उन्हें समझना और उनके आधार पर सही निर्णय लेना। जैसे कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को खेल पसंद है, कितनों को चित्रकला अच्छी लगती है, ये सभी आंकड़े सांख्यिकी का ही हिस्सा है।
1: बच्चों, सरकार भी सांख्यिकी की मदद से ही ये जानती है कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और तो और कितनी फसल उगती है और कहाँ नई सुविधाओं की ज़रूरत है। इसलिए सही आंकड़े देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों।
0: और बच्चों, अगर आप भी रोज अपनी पढ़ाई के घंटे, खेल का समय या फिर अपनी पसंदीदा किताब की सूची बनाते हैं ना, तो आप भी छोटी छोटी सी सांख्यिकी का उपयोग कर रहे होते हैं।
1: प्रियंका, आप बच्चे ज़रूर समझ गए होंगे कि गिनती और नंबर सिर्फ मैथ्स की किताब में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी में काम आते हैं।
0: जी हाँ, इसलिए बच्चों राष्ट्रीय स्टैटिक्स डे भारत के स्टैटिक्स के पिताजी कहे जाने वाले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
1: बच्चों, प्रोफेसर महालनोबिस गणित के महान ज्ञाता थे। इन्होंने ही सैंपल सर्वे का तरीका निकाला था।
0: जी हाँ बच्चों, सैंपल सर्वे, जिसका मतलब बच्चों अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो सबके घर जाकर पूछना तो मुश्किल है। तो प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा कि अगर राज्य से कुछ कुछ लोगों से पूछ लो, उससे पूरे देश का ही अंदाजा लग जाएगा।
1: बच्चों, इसी से सरकार तय करती है कि कितने स्कूल चाहिए, कितना अनाज चाहिए। और बच्चों, इन्हें ही भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्टर भी कहते हैं।
0: बच्चों, राष्ट्रीय स्टैटिक्स डे पर हम सभी वादा करते हैं कि मैथ से नहीं डरेंगे, गिनती सीख कर देश के काम आएंगे, क्योंकि नंबर ही फ्यूचर है।
1: बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं सफेद कोट वाले सुपर हीरो की, एक ऐसे पेशे की जो निस्वार्थ सेवा, समर्पण और मानवता का प्रतीक है। जी हाँ, आज का विषय है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस।
0: बच्चों, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। इस दिन हम सब डॉक्टर अंकल और आंटी को थैंक यू बोलते हैं, जो कि बीमार होने पर हमें ठीक करते हैं।
1: बच्चों, डॉक्टर डे 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, आप यही सोच रहे होंगे ना। बच्चों 1 जुलाई इसलिए क्योंकि इस दिन भारत के बहुत बड़े डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि दोनों है।
0: बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र राय डॉक्टर भी थे और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी, इसलिए यह दिन डॉक्टर दिवस बन गया। बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र राय कहते थे, मरीज का इलाज सिर्फ दवा से नहीं बल्कि प्यार से होता है। बच्चों डॉक्टर विधान चंद्र गरीबों का फ्री में इलाज करते थे, इसीलिए सरकार ने इनके लिए डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया, जो कि सबसे अच्छे डॉक्टर को मिलता है।
1: बच्चों डॉक्टर हमारे लिए क्या क्या करते हैं इसको ऐसे समझे जैसे कि दर्द वाले जादूगर, पेट दुखे, बुखार आए, हाथ कट जाए, डॉक्टर अंकल दवा देकर पट्टी बांधकर ठीक कर देते हैं, और हमारी दूसरी सुई वाली आंटी, इंजेक्शन से हमें डर तो लगता है बच्चों मगर 2 सेकंड में दर्द हमें हफ्तों का बुखार जो होता है उससे बचा लेता है।
0: और इतना ही नहीं प्रीति, आपको कोरोना वाले हीरो तो याद है ना, जब कोविड आया था तब डॉक्टर ही थे जो कि दिन रात पीपी किट पहनकर लोगों की जान बचाते रहे।
1: बिल्कुल प्रियंका, कोविड के उन हीरो को कौन भूल सकता है।
0: तो बच्चों इस दिन हमें भी सभी डॉक्टर्स को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, और ये भी याद रखें कि हमें भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहिए जिससे कि हम लोगों का इलाज कर पाएं।
1: इसी के साथ ही साथ बच्चों हम 1 जुलाई को एक और दिन बनाएंगे जो डिवोटेड है ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने हमारे मैसेजेस को, हमारे प्यार को हम तक पहुंचाया, पार्सल्स के रूप में, पत्रों के रूप में, और ना जाने कितनी उम्मीदों को, कितने इंतजारों को आशाएं दी हैं कि हम आपके साथ हैं आपके दुख में और आपके सुख में।
0: भाई आपके शब्दों से तो मुझे भी याद आ रहा है कि आप बात कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की, जो कि हम हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। जी हाँ, ये दिन हमें याद दिलाता है बच्चों कि भारतीय डाक से जुड़े लोगों का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। ये लोग हमारे पास हमारे लेटर्स, हमारे गिफ्ट को पहुंचाते हैं और कई वर्षों से पहुंचा रहे हैं। हालांकि आजकल इलेक्ट्रिक पार्सल फैसिलिटीज ने इनका काम आसान कर दिया है और हमारा भी इंतजार कम कर दिया है।
1: जी हाँ बच्चों, जब तक टेक्नोलॉजी ने हमारे डाक को सुविधाएं नहीं दी थी ना, तब तक ये डाक कर्मचारी ही हमारे तक हमारा प्यार और उम्मीदें लेकर आते थे। मौसम कैसा भी हो, ये समय पर हमारे पार्सल या हमारे ज़रूरी लेटर्स हम तक पहुंचा ही देते थे, और शायद इनकी दस्तक हमारे घरों के लिए एक और एक्साइटमेंट और एक सरप्राइज ही रही है हमेशा के लिए। अभी तो हम अपने फ़ोन पर, अपने मैसेजेस पर, अपने फ़ोटोज़ या फिर अपने गिफ्ट्स को देख लेते हैं एक ही स्वाइप पर, मगर आप सोचिए वो ज़माना क्या होगा जब फ़ोन, ईमेल, लेटर्स से सब हमारी ज़िंदगी में ये सब बहुत दूर रहे होंगे और हम इन्हीं डाक अंकल का इंतज़ार करते रहते थे।
0: जी हाँ बच्चों, पूछिए अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो इंतज़ार करते थे उन संदेशवाहकों का कि कब ये आएंगे और हमें खबर देंगे हमारे अपनों की। शायद तभी तो मूवीज़ में भी हमेशा से इनके लिए सॉन्ग्स भी लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रीति गाना है ना, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, और साथ ही साथ चिट्ठी आई है आई है, तो ये सारे गाने भी मुझे लगता है उन दिनों की याद दिलाते हैं।
1: इनके इसी योगदान के लिए हमारे देश ने 1977 में भारतीय डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत की। तभी से हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है।
0: बच्चों भारत में 1 अक्टूबर 1854 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में कोलकाता में 1774 में पहले पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी। भारत में डाक सेवाएं हमेशा से बहुत ही अहम रोल प्रदान करती हैं।
1: बच्चों हमारे देश में 20 अगस्त 1991 को सबसे बड़ा डाक टिकट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पर जारी किया गया। भारतीय डाक देश में सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। समय का साथ देते हुए इसने ढेर सारी सुविधाएं शुरू की जिसमें से मनी ऑर्डर और बचत बैंक महत्वपूर्ण है।
0: बच्चों 1 जुलाई को हम सभी एक और खास दिवस मनाते हैं जिसका नाम है जीएसटी डे। बच्चों हमें जीएसटी के लागू होने की यह दिन याद दिलाता है।
1: भाई जीएसटी ये बच्चों के लिए काफ़ी सुना वर्ड है। बच्चों आपने जब भी शॉपिंग की होगी या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे तो आपने बिल में जीएसटी ज़रूर देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जीएसटी है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, और आज तो बच्चों इसकी क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे कि जीएसटी क्या है।
1: जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो आपको सामान खरीदते समय या फिर कई सेवा लेते समय देना पड़ता है।
0: बच्चों आपको याद है पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे, इनमें से सब उलझ जाते थे, समझ ही नहीं आता था कि कहाँ और कितना टैक्स देना है। अब सरकार ने उन सबको मिलाकर एक सिंगल टैक्स बना दिया जिसे हम कहते हैं GST।
1: बच्चों GST के रेवेन्यू से ही हमारे देश के विकास, जन कल्याण और पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि हमारे देश में, हमारे शहर में हमारी सड़कें, पीने का पानी की व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सभी तो हमारे GST के पैसे से ही चलते हैं। यानी कि GST हमारे लिए ही लिया जाता है ताकि हम सभी सारी फैसिलिटीज और सारी अमेनिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकें।
0: और बच्चों अब चलते हैं हमारी अंतिम चिंता की ओर, जो कि सबसे गंभीर विषय भी बताया जाता है, और अगर हम जल्दी ही जल्दी इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण, हमारी धरती, सभी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की, जो हम 3 जुलाई को मनाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक वाले बैग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि हम अवेयर हो सकें कि इस सिंगल यूज प्लास्टिक ने हमारे नदियों, तालाबों और समुद्रों को कितना दूषित कर दिया है। अगर जल्दी ही इसकी रोकथाम नहीं हुई तो
0: बच्चों हमारे जानवर, हमारे पशु पक्षी, हमारे समुद्री जीवों की निरंतर मौतों से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि सही नहीं है।
1: तो बच्चों ये तो थी हमारी चर्चा, और हमें लगता है प्रियंका हमने बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं, और अब बात करते हैं बच्चों के मनोरंजन की।
0: जी हाँ, तो चलिए बच्चों का करवाते हैं मनोरंजन और प्यारे प्यारे से बाल गीत के द्वारा।

0: बच्चों अभी हमने प्यारा प्यारा सा बाल गीत सुना लुक्का छुपी। और देखिए प्रीति, फोन एडिक्शन बच्चों में एक ऐसी समस्या बनता जा रहा है कि मानो बीमारी का तो एहसास हो रहा है मगर ये समझ नहीं आ रहा कि इसको खत्म कैसे करें। इसलिए आज बच्चों के लिए कार्यक्रम में जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कोमल बख्शी जी कुछ ऐसी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगी जो बीमारी को खत्म कर सकती है। तो आइए बच्चों इस समस्या का हल समझते हैं जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कोमल बख्शी जी से।
1: नमस्कार साइकोलॉजिस्ट कोमल बख्शी जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दिया।
2: थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़कर। बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ।
1: सबसे पहले मैं नन्हे श्रोताओं को बताना चाहूंगी, कोमल बख्शी जी एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट है और इसी के साथ ही साथ वो थेरेपिस्ट हैं जो कई वर्षों से समाज के लोगों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव बनाए रखने में मदद करती आ रही हैं, चाहे जीवन कितना भी चुनौतियों से भरा हो। और अगर बच्चों की बात करें तो आजकल इस डिजिटल एरा में ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है कि कैसे बच्चों को फोन एडिक्शन से बचाएं, जबकि जीवन के हर मोड़ पर फोन ने अपनी अहमियत को इंसानों से काफी आगे साबित कर दिया है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आखिर बच्चे क्यों फोन की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं।
2: मैम यहाँ पर छोटा सा करेक्शन मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो फोन की तरफ इतने आकर्षित हो रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, बच्चे और बड़े दोनों ही जब इसे यूनिवर्सल एडिक्शन की तरह एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा इल्जाम जब हम बच्चों पर डाल देते हैं ना, तो ये सही नहीं रहता। ये शुरुआत हम बड़ों ने की है। तो बच्चे फोन की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, इसका जवाब शायद बड़े बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ये ढेर सारा जो डिजिटल आकर्षण, जैसे आपने बहुत सही तरीके से बताया, तो ये एक आकर्षण है जो हमारे आसपास 24 घंटे रहता है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। तो इसे बड़े और बच्चे दोनों ही इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि जब तक हम इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम सबकी है, तब तक इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही। और अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रीन टाइम को सीमित करने के लिए माता पिताओं को बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब तक माता पिता अपने आप को उस चीज में फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को समझाना उतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी बच्चों के माध्यम से कि माता पिता क्या वो छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं और वो कौन कौन से वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं जिनको अपनाया जा सकता
2: है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं प्रीति जी। तो ये सोल्यूशन की तरफ अगर हम नजर करें ना, तो हमें समझ में आएगा कि इसे एक फैमिली एक्टिविटी की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। करना बस इतना है कि घर में सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का भी स्क्रीन टाइम सीमित करना है। और इसके लिए पूरी फैमिली की एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम चैलेंज ले लो। हर हफ्ते अपना स्क्रीन टाइम कितना हुआ, जिसका भी स्क्रीन टाइम जिसके फोन में सबसे ज्यादा है वो हार जाएगा, जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम है वो जीत जाएगा। शबाशी के साथ साथ छोटी सी पार्टी भी मिलनी चाहिए उसको। ये स्क्रीन टाइम कैसे चेक करना है, ये एंड्रॉयड फोन में एक पैरेंटल कंट्रोल नाम के सेटिंग में मिल जाता है, तो आपको पता चलेगा आप हफ्ते भर में एक्चुअल में कितने घंटे स्क्रीन पे बर्बाद कर देते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि बड़ों का, एडल्ट का स्क्रीन टाइम कई बार 10-12 घंटे से भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर बड़े अपने स्क्रीन टाइम पर काम करें तो बच्चों को बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर सलाह देना चाहूंगी कि बच्चों की एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, उनके खेल कूद पर ध्यान दीजिए और उन्हें फिजिकली एक्टिव रखिए। क्योंकि जब फिजिकली एक्टिव रखते हैं बच्चों को, तो डोपामिन ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, जो कि फिलहाल डोपामिन रिलीज का सारा काम सोशल मीडिया के और मोबाइल के पल्ले है। तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा शिफ्ट करें, अगर थोड़ा सा पसीना बहाएं, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, तो बच्चे अपने आप अपना डोपामिन कुदरती रूप से कमा लेंगे और उन्हें स्क्रीन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो पूरा दिन हम पढ़ाई के पीछे पड़ते हैं ना, उसे थोड़ी सी कटौती करके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ पुश कीजिए और पूरे फैमिली का स्क्रीन टाइम एक साथ घटाने की कोशिश कीजिए। आई होप दिस हेल्प।
1: बहुत ही सुंदर बात कही मैम आपने, क्योंकि अगर हमको लगता है कि हम अगर अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद अपनी तरफ ही देखना होगा कि कहीं हम भी तो उस दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये तो थी आपकी वैकल्पिक तरीके अपनाने की बात, मगर हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे फोन की लत बच्चों के सामाजिक और भावात्मक विकास पर किस तरह से असर डाल सकती है।
2: अगर बच्चे मुझसे सुन रहे हैं तो मैं सीधा उन्हीं से बात करना चाहूंगी कि जब बेटा हम किसी चीज को कांस्टेंट देखते हैं सुनते हैं ना, तो उसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर होता है। सोशल मीडिया से दिक्कत बस ये है कि लाखों चीजों को हम एक साथ देख रहे हैं सुन रहे हैं, और इससे होता क्या है, हजारों चीजों का दिमाग प्रभाव पर एक साथ पड़ रहा है। पर यहाँ पर टेक्निकल दिक्कत ये है कि हम किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर पाते। तो बहुत कुछ जानने के बावजूद जब हम खुद बेहतर नहीं बन पाते, जब खुद पर कोई चीज अप्लाई नहीं कर पाते, तो हमारे कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है, और हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। तो 90% लोग जो सोशल मीडिया पर है ना बेटा, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो रील के समय जिस तरह से दिखते हैं, जो करते हैं, जो बात करते हैं, जो बता रहे हैं, वो सच में सही नहीं होता। यानी कि आपके इमोशनल डेवलपमेंट की जो बात है ना यहाँ पर, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जितनी समझदारी बाहर दिख रही है, जितना प्रोग्रेस बाहर दिख रहा है, वो रियल में नहीं है। और फिर भी आपके कॉन्फिडेंस पर जब इसका असर पड़ता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो करना बस इतना है कि ये बात समझ लेनी है कि सोशल मीडिया है वो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, ये पूरी जिंदगी नहीं है। इसे हमें पूरे दिन के समय में से कटौती पे लाना ही होगा। हमें समझना होगा कि हम हमारी रियल जिंदगी में इम्प्रूवमेंट पर काम करें, और सोशल मीडिया में जितना इम्प्रूवमेंट है उसे सच नहीं माने। यहाँ से कटौती करो और रियल जिंदगी में ढेर सारा इम्प्रूवमेंट लाओ। बस यही सलाह है मेरी बच्चों को।
1: देखिए, मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि आजकल का एक दौर आ गया है कि जैसे हमें किसी का बर्थडे विश करना है तो फटाफट से हम व्हाट्सएप उठाते हैं या फिर सोशल साइट खोलते हैं और फटाफट से उनको विश कर देते हैं। और इसी की जगह अगर हमें उनको वास्तव में फेस टू फेस विश करना हो तो हम शायद घर से बाहर निकलेंगे, उस व्यक्ति से ना मिलके ना जाने कितने लोगों से रूबरू होंगे, बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज काफी कम होती जा रही है, नहीं लगता आपको?
2: एग्जैक्टली, ये जो है ना, ये आपने इतनी बढ़िया बात कही है मैम। एक्चुअल में इमोशनल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ का जो बेस है ना, वो सही लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना, ये है। और क्योंकि हम आज के जमाने में किसी से नहीं मिल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप नहीं ले रहे हैं, सामाजिक जीवन हमारा बिल्कुल कट सा हो गया है, तो ये बहुत बेसिक वजह है जहाँ पर हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो ये जो हैप्पी बर्थडे वाली बात है ना, वो फोन पे या व्हाट्सएप पे, अरे व्हाट्सएप छोड़ो मैम, अगर फोन पे भी अगर किसी से बात करनी हो ना, तो ये इतना आसान नहीं रहा है आजकल। आजकल हम हेजिटेट हो जाते हैं जब किसी से फेस टू फेस या कॉल पे बात करनी हो, तो ये रियल बातचीत करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत प्यारा मुद्दा उठाया मैम।
1: बिल्कुल, देखिए मैम, जैसे कि मैं अपने आसपास में बच्चों को भी देख रही हूँ, बड़ों को भी देख रही हूँ कि उनकी सोशल लाइफ एक तरीके से ना रून हो रही है, कि उनको लग रहा है कि किसी से बात करना मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करना। इतने सिलेक्टिव हो गए हैं वो लोगों से अपनी बातचीत करने में, और कहीं ना कहीं इस वजह से हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली ये बात बैठती जा रही है कि हम अपने जो इमोशंस हैं वो ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है।
2: तो मेरे हिसाब से बातचीत ना हमें सबसे कर ही लेनी चाहिए, फिर चाहे किसी से कम करें किसी से ज्यादा करें। यहाँ पर समझ में बहुत बढ़िया से एक चीज आएगी कि क्या जिंदगी में करना है क्या नहीं करना है, कैसे बोलने से फायदा होता है कैसे बोलने से नुकसान होता है। तो जब हम हर किसी का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेते जाते हैं रियल लाइफ का नहीं, तब हमारी पर्सनालिटी शेप लेती है, तब हमें सही गलत का फर्क समझ आता है, और ये सही गलत का फर्क ही आगे चलकर हमें सही इंसान बनाता है। तो लोगों से मिलना और हर किसी को कट ऑफ ना कर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में।
1: मैम आप देखिए, आपने सुना होगा आजकल की जनरेशन में एक वर्ड निकल कर आ रहा है कि घोस्ट कर दिया। तो आप इस छोटे से वर्ड घोस्ट को आप डिस्क्राइब कीजिए कि ये एक मेंटल हेल्थ की तरफ किस तरीके से आप इसको लेती हैं।
2: ये घोस्टिंग है ना, ये इसका मतलब कुछ इस तरह से निकल के आता है कि हम किसी से बात कर रहे थे और फिर अब हमने अचानक से उससे बात करना बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे खुद के बारे में है। अगर हम किसी को घोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम इस बात को हेल्दीली आगे नहीं बढ़ा पाए। बड़े कई बार ये फेस करते हैं कि किसी ने अचानक से बातचीत बंद कर दी, तो इसमें इमोशनली अफेक्ट होने के बजाय ये समझना चाहिए कि इमोशनली हेल्दी लोग कभी किसी को घोस्ट नहीं करते। वो हमेशा वजह देते हैं कि हम क्यों बातचीत बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, और या तो फिर इतनी जल्दी जल्दी बहुत ही उत्साह में आकर ढेर सारी बातचीत पहले तो शुरू ही मत करो कि कहीं एक पॉइंट पे आकर आपको किसी को घोस्ट करना पड़ जाए। तो जो उतावले हो जाते हैं ना, हम या तो बातचीत करने में उतावले हो जाते हैं या तो बातचीत बंद करने में उतावले हो जाते हैं। ये दोनों ही तरीके इमोशनली हेल्दी नहीं है, तो धीरे धीरे आगे बढ़िए।
1: बहुत प्यारी बात कही आपने कि आजकल की जो जनरेशन है वो उतावली बहुत होती है, किसी से जुड़ने में भी बहुत उतावली है और किसी से अपना संबंध तोड़ने में भी वो बहुत उतावली है। मतलब बहुत जल्दी वो एक जजमेंट पे आके खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो मेन भूमिका है वो एक सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
2: हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, इंटरनेट पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम किसी की छोटी सी प्रॉब्लम भी क्यों सहें। हाँ बिल्कुल, क्यों सहें किसी की प्रॉब्लम। तो पहले खुद से पूछो कि क्या इतनी जल्दबाजी करना सही है, लगाव करने में भी या फिर लगाव को कट करने में भी। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये है जिंदगी को संभालने का, इमोशंस को संभालने का, कि अगर कुछ भी फील हो रहा है ना बेटा, कुछ भी फील हो रहा है कि प्यार आ रहा है, तो 7 दिन तक पहले शांति रखो। अगर 7 डेज के बाद भी अगर आपको उतना ही प्यार आ रहा है तब जाके किसी को बताओ। अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है तो पूरे 24 घंटे तो रुक जाओ, तभी के तभी उसको एक्सप्रेस मत करो, उसको ब्लॉक मत करो, उसको घोस्ट मत करो। हाँ किसी टॉक्सिक इंसान से जुड़ना और जुड़े रहना ये सलाह नहीं है मेरी यहाँ पर कि कोई बहुत ही बेकार इंसान है तो उसे तो बिल्कुल घोस्ट करना चाहिए, उसे तो मैं ही बोल रही हूँ कि ब्लॉक कर दो। बट किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करो, प्यार जताने में भी नहीं और नाता तोड़ने में भी नहीं, थोड़ा सा समय दो। ये जो आपने बताया ना प्रीति जी, हम जजमेंटल हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हम और एक ऑप्शन ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर आपकी भी तो इमोशनल एनर्जी खर्च हो रही है ना। यहाँ
1: बिल्कुल
2: पर आपको भी तो हर बार इमोशनली किसी और के साथ जुड़ने में इतना सारा समय और एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, तो ये मत करो। थोड़ा थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर 60-70% भी अगर सामने वाला बंदा सही है ना, तो उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती की जा सकती है, पर दोस्ती ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ज्यादा बेहतर रहती है।
1: बड़ी सुनी, वो सुने भी होंगे और कोशिश करेंगे उनको अमल करने की। जैसे कि आपने बताया कि टू डू लिस्ट बनाइए और वो छोटी छोटी चीजें एड ऑन करिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करिए। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब ये जब कंप्लीट कर लेते हैं ना हम, तो हमें ये इतना बेहतर और इतना अच्छा और हेल्दी डोपामीन मिलता है जो हमें हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमसे ये प्यारी सी जानकारी साझा की कि हम साइंस के इस वरदान कहे जाने वाले दूर संचार यानी फोन को अभिशाप बनने से कैसे रोक सकते हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सके। एक बार फिर से तहे दिल से कोमल बख्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बच्चों अभी हमने ये वार्ता सुनी और आइए अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपके विशेष चंका यानी कि हमारे नन्हे बोल सेगमेंट का। तो आइए बच्चों सुनते हैं बच्चों बच्चों की प्यारी सी बातचीत।

0: हेलो
1: गुड
0: हेलो
1: आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं आप?
0: जी, मैं हिमांशु। जी
1: हिमांशु। कैसे हिमांशु आप?
0: ठीक है।
1: अच्छा, हिमांशु ये बताइए, आपके घर पे कौन कौन है?
0: मेरे घर पे ज्वाइंट
1: जी
0: फैमिली है, सब लोग हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा। जी
1: क्या बात है, क्या बात है। तो काफी अच्छा लगता होगा ना आपको कि आपके घर में आपके दादा दादी भी हैं, है ना।
0: जी
1: अच्छा, तो दादा दादी को सुनाते हैं आपको, अच्छी बातें सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं?
0: वो सिखाते हैं कि सर से तमीज से बोलना चाहिए, एक आदाब से
1: जी
0: बोलना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी जी
0: किसी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए,
1: जी
0: सबकी बात माननी चाहिए।
1: जी हाँ, तो काफी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाते हैं। तो आप कहना मानते हैं अपने दादा दादाजी का?
0: जी मानते तो हैं।
1: चलिए, काफी अच्छी बात है हिमांशु। अच्छा हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप?
0: जी हम 8th क्लास में हैं।
1: अच्छा, आप 8th क्लास में आ गए हैं।
0: जी
1: तो हिमांशु, अब तो कुछ दिनों बाद आपके स्कूल भी खुलने वाले होंगे, है ना।
0: जी
1: कब से खुल रहे हैं आपके स्कूल?
0: मैम 1 से 1 जुलाई
1: अच्छा, 1 जुलाई से खुल रहे हैं,
0: से। जी मैम,
1: क्या बात है। तो बस अब आपके स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो क्या तैयारी है आपकी?
0: सारा हॉलीडे होमवर्क हो चुका है, हमारा डन
1: अच्छा, सारा,
0: हो गया। मैम
1: क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आपने अपना हॉलीडे होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है ना, टीचर्स को दिखाने के लिए।
0: वो तो शुरू के 10 डेज में ही हो चुका था।
1: अच्छा, शुरू के 10 डेज में आपने अपना हॉलीडे होमवर्क निपटा दिया, उसके बाद फिर क्या किया आपने?
0: फिर मैम बाकी कुछ वर्क करा अपना, जो मतलब जैसे शुरू होते ही स्कूल यूटी शुरू हो जाते हैं तो उसका
1: जी
0: हमने
1: जी जी
0: लर्न करना शुरू कर दिया।
1: अरे वाह, क्या बात है हिमांशु, काफी अच्छे हैं आप तो, मुझे लगता है। और पढ़ाई में भी फिर आप काफी अच्छे हैं, जो आपने अपना हर डे होमवर्क पहले ही फिनिश कर लिया है ना।
0: जी मैम रैंक आती है हर साल।
1: क्या बात है, क्या बात है। कौन सी रैंक आती है अच्छा आपकी क्लास में?
0: मैम कभी फर्स्ट आ जाती है, सेकंड या थर्ड, कुछ
1: अच्छा,
0: भी आ
1: चलिए
0: जाती है।
1: तो बहुत अच्छी बात है हिमांशु। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए, मुझे लगता है 8th क्लास के लिए फिर आपकी प्लानिंग है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह
0: जी
1: से अपना सारे काम अच्छे से करने हैं, जिससे कि इस बार भी आपकी फर्स्ट रैंक आए।
0: जी जी मैम
1: अच्छा चलिए। अच्छा हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे, आप इस बार हॉलीडे में कहीं घूमने गए थे, वेकेशंस
0: नानी क्या कर रहे थे अपनी?
1: में नानी के यहाँ गए थे? कहाँ
0: जी
1: रहती हैं आपकी नानी?
0: मैम किचन में।
1: अच्छा, किच्छा घूम के आए फिर आप नानी के यहाँ, तो काफी
0: जी
1: मजे आए होंगे ना, क्योंकि नानी के यहाँ खूब मस्ती होती है, प्यार मिलता है ना।
0: जी
1: चलिए हिमांशु, बहुत अच्छी बात है। और ये भी जानना चाहेंगे हिमांशु, आज अब हमारी आपसे बात हो रही है, तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमें?
0: मैम क्या सुना है आप बताइए।
1: जो आप सुनाना चाहें बच्चों को, बच्चे आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो आपको सुनाना चाहिए आप सुना सकते हैं, कविताएं, कहानी, जो आप सुनाना चाहें।
0: वो आता है एक सॉन्ग,
1: सॉन्ग आता है,
0: जी वो
1: चलिए सॉन्ग सुनाइए, हम आपकी आवाज सुनना चाहेंगे, सुनाइए।
0: ए दीन और दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, देवर और पर्दार के मालिक, ये सारे संसार के मालिक, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, तेरे जुलाए आम है घर घर, खाक से तूने बीज उगाए, पेड़ पौधे परवान चढ़ाए, नीरा बख्शा तौन को तूने, मुश्क दिया अगान को तूने, जुगनू को बिजली की चमक दी, जर्रे को कुंदन की दमक दी, नीरा बख्शा तौन को तूने, मुश्क दिया अगान को तूने।
1: वाह हिमांशु, काफी अच्छी आपने सुनाई, और आपने कहीं ना कहीं इसमें अपने जो हमारे भगवान है उनका शुक्र अदा किया है ना,
0: जी
1: कि उसने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उनका शुक्र अदा भी जरूर करना चाहिए, है ना।
0: जी
1: बहुत अच्छे आपके विचार है हिमांशु, बहुत अच्छी आपकी पंक्तियां भी लगी, अच्छा लगा सुन करके। अच्छा हिमांशु, 27 तारीख को हमने सांख्यिकी दिवस मनाया, इसके बारे में कुछ पता है आपको?
0: जी 27 तारीख में
1: जी, सांख्यिकी दिवस मनाया था। आप मैथ्स में कैसे, मैथ्स कैसा लगता है आपको?
0: मैथ
1: जी
0: जी वो तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगता है।
1: क्या बात है, यानी कि आप डरते नहीं है मैथ से? कई बच्चे होते हैं बहुत डरते हैं कि उनको टेबल्स लर्न करने पड़ते हैं।
0: नहीं मैम, बहुत से बच्चे तो हमसे ही टेबल्स पूछते हैं, मैं तो सारे टेबल्स याद है,
1: अरे
0: छह से
1: वाह,
0: आठ,
1: अरे
0: 15
1: वाह, कहाँ
0: तक,
1: तक आते हैं हिमांशु आपको टेबल्स?
0: 15 15 यस
1: 15 तक आते हैं? अच्छा, पूरे
0: मैम
1: अच्छे से लर्न है आपको 15 तक? क्या
0: जी
1: बात है, यानी कि आपको फिर मैथ्स में रुचि है, क्योंकि अगर हमें टेबल्स आते हैं ना, तो मुझे लगता है आधी मैथ्स तो हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है ना।
0: जी
1: चलिए हिमांशु, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इसी तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए अच्छे से, जैसे कि जो आप 8th क्लास में आए हैं ना, तो वहां भी आप अच्छे से स्कोर अर्न कर पाए और आपके रैंक आए, है
0: यस
1: ना।
0: मैम यस मैम थैंक
1: चलिए हिमांशु, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू,
0: यू मैम बाय।
1: बाय,
0: गुड
1: गुड आफ्टरनून।
0: मॉर्निंग
1: क्या नाम है आपका, कौन बात कर रहे हैं?
0: मैम, आयान बोल
1: अयान बात कर रहे हैं? अरे वाह,
0: रही हूँ।
1: अरे वाह अयान, आपकी आवाज तो बहुत ही प्यारी सी है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं अयान आप?
0: मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: 4th क्लास में आ गए आप? अच्छा अयान, ये बताओ आपको पढ़ाई करना कैसा लगता है?
0: हम बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, डर नहीं लगता आपको पढ़ाई से? बोर नहीं होते हो पढ़ाई से? बिल्कुल
0: नो मैम, नो मैम,
1: भी नहीं?
0: नो
1: ऐसा तो नहीं होता आप किताब खोल के सो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा?
0: नो मैम
1: अच्छा, और इसके साथ साथ आपको और क्या अच्छा लगता है यार? पढ़ाई के
0: जी
1: साथ साथ और क्या अच्छा लगता है आपको?
0: मैम, बैट बॉल खेलना
1: बैट बॉल खेलना? यानी कि क्रिकेट के शौकीन है आप?
0: जी,
1: अच्छा, फिर आपको क्रिकेट में कौन पसंद है ये बताइए।
0: राइट बॉलिंग
1: विराट कोहली? तो विराट कोहली जैसा बनना चाहेंगे आप यान? चलिए अच्छी बात है, यानी कि आप गेम्स भी खूब खेलते हैं, क्रिकेट, और पढ़ाई भी खूब करते हैं ना। अच्छी बात है यान। और ये बताइए आपको पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है?
0: मैथ्स
1: मैथ अच्छा लगता है?
0: जी।
1: अरे वाह, अभी हमारी बात हुई थी हिमांशु से और संख्या के दिवस पे हमने बात करी थी, उनको भी मैथ्स काफी पसंद है। आपको पता है हमने
0: जी
1: 27 तारीख को
0: जी
1: स्टैटिक्स डे मनाया था।
0: जी
1: तो आपको कहाँ तक लर्न है टेबल्स आयान?
0: जी मैम
1: आपको आयान टेबल्स कहाँ तक लर्न है? कितने टेबल्स लर्न है आपको?
0: हमने 12th तक कर लिया
1: 12th तक लर्न है आपको?
0: जी।
1: अरे वाह, काफी अच्छी बात है। तो फिर आप फटाक से अपने सारे जो क्वेश्चन देती होंगी मैम सॉल्व कर देते होंगे, है ना?
0: जी
1: चलिए आयान, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयान ये बताइए, अभी तो आप छोटे से हैं, बट आपने कुछ सोचा है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं?
0: मैम सोचा था है
1: क्या सोचा है बताइए?
0: डॉक्टर बनेंगे
1: डॉक्टर? सुई लगाएंगे आप लोगों के? आपको डर नहीं लगता सुई
0: नो मैम,
1: लगाने से?
0: नो मैम
1: नहीं लगता? अच्छा चलिए अच्छी बात है ना, आप लोगों को ठीक कर देंगे, लोगों की तबीयत सुधार देंगे, है ना? और कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है वो ऊपर वाले की तरह ही होता है, क्योंकि हमारी जान बचाता है ना। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमारी पट्टी कर देता है हमें। बहुत अच्छी बात है, अच्छा विचार है। और ऐसी आप पढ़ाई करते रहेंगे ना यान, तो आप खूब मेहनत करेंगे ना, तो आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, है ना? अच्छा यान, अब ये बताइए, आज हमारी आपसे बात हो रही है, तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
0: मैम आपको हम नाच सुनाएंगे। जब
1: नाच सुनाएंगे? सुनाइए।
0: अल्लाह मदद मैदान मोहम्मद ने जो
1: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है यान, आपने नाच सुनाई, काफी अच्छे सुनाई। आपको पूरी नाच याद थी? क्या बात है, यानी कि आप अच्छे से याद कर लेते हैं चीजों को, है ना? अच्छा अयान ये बताइए, आपके कोई दोस्त हैं? कितने दोस्त हैं आपके? थोड़े
0: थोड़े से हैं
1: से हैं। अच्छा, उनमें से कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी है?
0: जी।
1: कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड?
0: हमारे घर के पास रहते हैं।
1: अच्छा, क्या नाम है उनका?
0: कुबेर।
1: अच्छा, वो आपके क्यों है बेस्ट फ्रेंड, क्या आपको उनके अंदर अच्छा लगता है?
0: वो खेल लेते हमारे साथ।
1: अच्छा, यानी कि आपका जो दोस्त है वो आपको कहना मानता है ना?
0: जी।
1: आपकी मदद भी करते हैं आपके दोस्त?
0: जी।
1: चलिए अच्छी बात है। और अच्छा अयान, अब तो आप स्कूल भी खुलने वाले हैं ना?
0: जी।
1: तो कुछ एक्साइटेड हैं आप?
0: जी।
1: क्या सोचा है, क्या करेंगे आप स्कूल खुलते ही?
0: जैसे हमारे स्कूल खुलेंगे हम वैसे जल्दी से अपने दोस्त के पास जाकर बैठ के बातें करेंगे।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, यानी कि जो आपका बीच में इतना गैप।
0: उनके साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे, बातें करेंगे, सब चीजें करेंगे।
1: क्या बात है, यानी कि हमें लग रहा है आपने इन छुट्टियों में अपने अपने दोस्त को काफी मिस किया है ना, छुट्टियों में, है ना?
0: लंच भी शेयर करेंगे।
1: तो यानी कि सबसे पहले जब स्कूल खुलेगा अपने दोस्त से पूछेंगे कि उसकी छुट्टियां कैसी गई, है ना। चलिए अच्छी बात है। और साथ ही साथ पढ़ाई भी, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया अपना?
0: थोड़ा सा रहेगा।
1: अच्छा, थोड़ा सा रह गया है, तो मुझे लगता है आपको जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना, जिससे स्कूल खुलते ही आयान का सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो, है ना, और मैम जो है आपको गुड दें, है ना। चलिए आयान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी नात भी काफी अच्छी थी, आपसे प्यारी प्यारी हमारी बातें हुई, मजा आया आपसे बात करके। आयान, आपको कैसा लगा आयान हमसे बात करके?
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करेंगे।
1: चलिए शुक्रिया आयान, शुक्रिया, थैंक यू, बाय, फिर आपसे बात करेंगे, बाय।
2: बच्चों अभी हम सुन रहे थे नन्हे बोल कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी प्रस्तुतियाँ हमने प्रीति सुनी, मज़ा आया, और बच्चों ने बताया कि वो अब नए क्लास में जाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। इसी के साथ ही बच्चों अब देखिए कार्यक्रम का समय समापन की ओर हो चला है, तो अब हमें चलना होगा, पर जाने से पहले आपको हमारा आज का कलियाँ कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिख भेजिएगा, जिसके लिए आप हमें अपने पत्र भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कलियां कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
3: इसी के साथ ही बच्चों आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने पत्र भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं, हमारा पता है पत्र मिला airrampur@gmail.com।
2: तो बच्चों अगले रविवार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपने दीदी प्रियंका,
3: दीदी प्रीति
2: को दीजिए अनुमति, और चलते हुए प्रेम से बोलिए
4: जय हिंद।

बच्चे अभी सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थी प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया कुछ पलों का इंतज़ार कीजिए।

0: asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply, with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June, with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ.

0: विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण

0: विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, रविवार की इस प्यारी दोपहर में चाहे आप घर पर आराम कर रहे हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों या फिर चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो में मुझे सुन रहे हों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहद खुशनुमा गुजर रहा होगा। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के एक ही कलाकार प्रोग्राम में।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत केंद्र सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास। इस विषय पर माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त से खास बातचीत। भेंट करता है श्री विक्रांत चौधरी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी रामपुर के पॉडकास्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रांत। श्रोताओं, हम देख रहे हैं केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 12 वर्षों को सफलतापूर्वक पूरा कर गई है। अगर हम राज्य की बात करें तो माननीय योगी जी की सरकार भी 9 वर्षों से अधिक का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। ऐसे मौके इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि हम बैठकर मंत्रणा करें, विवेचना करें और कोशिश करें कि किस प्रकार से क्या कुछ हमने पाया, किस प्रकार से क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल की, उन पर बातचीत करें और इस विषय में आज गहराई से और अपने मनोभावों को आज स्टूडियोज में हमारे बीच व्यक्त करने के लिए आए हैं आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी। आप माननीय सदस्य हैं विधान परिषद उत्तर प्रदेश से, लंबा अनुभव आपका राजनीति का रहा है। मुरादाबाद बरेली परिक्षेत्र से आप स्नातक वर्ग में MLC हैं और शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर आप अपनी बात मुखरता से ना रखते हों, हर विषय के आप ज्ञाता हैं। खासकर लोगों के बीच में जिस प्रकार का आपका जुड़ाव है वो देखते ही बनता है। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद विक्रांत जी।
1: सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि सेवा, सुशासन और कल्याण की बात अगर हम करते हैं तो पिछले 12 वर्षों में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है, बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आम जनता को शायद जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में भी हम उनको बताएं और बताएं किस प्रकार से बहुत ही जमीनी स्तर से कार्य शुरू होकर योजनाओं को लागू करना और फिर उनका अनुपालन भी करवाना, उस पर किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। जी,
2: सन 2014 से
1: जी
2: केंद्र सरकार का बदलाव हुआ और उस बदलाव की बयार के जो मुख्य आधार थे, नेशन फर्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन अंत्योदय
1: जी,
2: उस अंत्योदय में ही गरीब कल्याण और उसी के आधार पर राष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को बनाया जाना, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें प्रयास करना
1: जी,
2: उन्हीं सब बिंदुओं को केंद्र में रखकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पूर्व इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वह भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे और नेहरू जी के जो कार्य दिवस थे वो 4398 दिवस थे, किंतु 9 जून 2026 को
1: जी
2: उस 4398 दिवसों को पार किया माननीय मोदी जी ने और 2029 तक जितने भी कार्य दिवस होंगे वह तीसरे कार्यकाल में जोड़े जाएंगे
1: जी।
2: जब प्रधानमंत्री के रूप में बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कार्य संस्कृति में परिवर्तन
1: जी।
2: देश का जो भी कार्य करने का सिस्टम है वह सिस्टम पूरी तरह से ठीक होगा तो सब काम ठीक हो जाएंगे
1: जी।
2: तो कार्य संस्कृति पर उन्होंने बल दिया और कार्य संस्कृति के आधार पर काम करने वाली जो मशीनरी है पूरी, उस मशीनरी को एक्टिवेट किया। अधिकारी वही लेकिन उनके एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में परिवर्तन किया
1: जी।
2: उनको अंतर समझाया कि अब तक जो आप काम करते थे उसका आउटपुट क्या था, आउटकम क्या था, और क्या अपेक्षित था
1: जी।
2: दोनों के बीच जो अंतर है उस अंतर का आप आकलन करिए और अब विषयों को टालने का विषय नहीं है। जो योजनाएं लॉन्च की जाएंगी वह टाइम बाउंड होंगी, गुणवत्ता से परिपूर्ण होंगी। उसी के आधार पर पहला सूत्र उन्होंने दिया कि न मैं खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा
1: जी।
2: और दूसरी बात, जो भी श्रेय मिलेगा वो प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं मिलेगा
1: जी।
2: वो समस्त देशवासियों को उसका क्रेडिट मिलेगा
1: जी।
2: अतः उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सबसे पहले प्राथमिकता पर रखा, टॉप प्रायोरिटी पर रखा
1: जी।
2: 25 जून एक काले इतिहास के रूप में सारा देश जानता है
1: जी।
2: संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया गया। 25 जून को आपातकाल लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लगाया और प्रधानमंत्री जी ने जो आपातकाल लगाया उस आपातकाल के दंश को हजारों देशवासियों ने भुगता
1: जी।
2: मैं भी एक ऐसा भुक्तभोगी हूं कि मैंने भी पूरे 19 माह आपातकाल का दंश झेला है, उस कष्ट को झेला है। तो लोकतंत्र की हत्या न हो, संविधान की हत्या न हो, मीडिया की हत्या न हो, जो हमारे संविधान के तीन पाए हैं, पहला विधायिका है, दूसरा न्यायपालिका है और तीसरा कार्यपालिका है, और उसी के साथ संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन समाज के द्वारा जिसको प्रमाण पत्र मिला और स्वीकृति मिली वो है पत्रकारिता। इन चारों स्तंभों का किसी भी प्रकार से गला न दबाया जाए, उनका गला न घोटा जाए, तो लोकतंत्र की रक्षा हर विषय पर होनी चाहिए। ये उन्होंने विचार किया और उसी के आधार पर जो अपना काम किया, अनुभव था उनका गुजरात का बहुत, एक 12 वर्ष तक, लंबी अवधि तक, इससे भी अधिक अवधि तक वो गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। उस अनुभव को इम्प्लीमेंट किया प्रधानमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जब इम्प्लीमेंट किया तो देश का सब प्रकार से चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए उन्होंने सबसे पहले गरीबों का चिंतन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत था, अंत्योदय का जो सूत्र था, एकात्म मानववाद का जो दर्शन था, उसी का सूत्र था अंत्योदय। और अंत्योदय के आधार पर हम जो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं उनको हम ऊपर कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रगति, उन्नयन, उत्थान कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित तो उन्होंने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के आधार पर ही इस देश में सबसे पहला सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सिस्टम को डिजिटल मोड में उन्होंने प्रारंभ किया। उस समय पर अनेक विरोधी दलों ने उस विषय को हास्यास्पद भी बताया और यह नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, क्रियान्वित नहीं हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े अनुभवी महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन जब अप्लाई हुआ तो उसका लाभ ये मिला कि समाज का वह जो वर्ग था जो पहले 100 रुपए केंद्र की योजना के लिए लाभार्थी को भेजे जाते थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला, और वह लाभार्थी की जेब में केवल 15 रुपए रह पाते हैं, 85 रुपए कहाँ चले जाते हैं। तो उस सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यह डिजिटल सिस्टम लागू किया। एक बटन दबेगा और लगभग 30-32 सेकंड में लाखों लाभार्थी, देश के करोड़ों विविध योजनाओं के लाभार्थियों को एक बटन दबाने से 32 सेकंड के अंतराल में वह पैसा ट्रांसफर हो गया। दूसरा, जनधन खाते, अर्थात जो गरीब लोग थे, गरीब परिवारों के लोग थे, वो बैंक में घुस नहीं सकते थे। बैंक का स्टाफ उनके साथ सदव्यवहार नहीं करता था। आवश्यकता भी है बैंक खाते खुलवाने की तो वह खोलता नहीं था
1: जी।
2: उसका अपमान करके बाहर निकाल देता था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अभूतपूर्व पहल करके और देशवासियों को और सारे बैंक्स को जिनकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की
1: जी।
2: और देश भर के करोड़ों ऐसे लोगों का जिनके खाते नहीं थे उनके खाते खुलवाए और लाभार्थी के रूप में जो धनराशि, चाहे किसान सम्मान धनराशि है, अनेक प्रकार की योजना है, योजनाएं गिना सकता हूं, सबके पैसे अब उसमें चले जाते हैं। एक पैसे की उसमें कोई घटोत्री नहीं होती, अर्थात बिचौलियों को इस व्यवस्था से बिल्कुल अलग कर दिया गया। और उसी के आधार पर चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, युवा हों, युवा शक्ति हों, महिलाएं हों, दिव्यांग हों, कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं है समाज की जो उस योजना से वंचित रह सके। समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी दृष्टि से सभी योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित किया
1: जी।
2: और मैं समझता हूं कि एक आयुष्मान योजना
1: जी।
2: तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सराही गई है
1: जी।
2: ऐसी दुनिया के किसी देश में योजना नहीं है जो स्वास्थ्य के दृष्टि से 5 लाख का कवरेज जिस योजना में दिया जाता है और उसकी आयु तो अब और बढ़ा दी गई है, 70 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोग भी उस विषय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना है और पूरे देश में कनेक्टिविटी अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से गति बढ़ेगी
1: जी।
2: रफ्तार बढ़ेगी और रफ्तार काहे की बढ़ेगी, वो विकास की,
1: विकास की बढ़ेगी बिल्कुल,
2: हर प्रकार से प्रगति की रफ्तार बढ़ेगी
1: जी।
2: तो उस प्रकार से आप चाहें हवाई कनेक्टिविटी को देखिए, चाहे रेल्स की कनेक्टिविटी को देखिए, चाहे मार्गों की कनेक्टिविटी को देखिए
1: जी जी बिल्कुल।
2: हवाई जहाज के आधार पर कितने एयरपोर्ट 2014 तक थे और 14 के बाद स्थापित हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कितने थे अब कितने हो गए
1: जी।
2: उसी के आधार पर ट्रेन्स के नए नए रूप, वंदे भारत, उससे भी आगे बुलेट ट्रेन तक का विषय हमारे सामने आ गया है
1: जी, जी।
2: और जो मार्ग हैं, पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग थे लेकिन एक्सप्रेस वेज का जो क्रम बढ़ा है और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है, मैं तो कहूंगा कि ऐसा जाल पूरे देश भर में बिछ गया है कि आप दिल्ली से और मुंबई तक की यात्रा केवल 12 घंटे में एक तरफ से पूरी कर सकते हैं
1: निश्चित रूप से,
2: जो 24 घंटे में भी संभव नहीं थी
1: जी। समस्त योजनाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी प्रकार से आम आदमी को लाभ पहुंचा रही हैं। भारत एक युवाओं का देश है, कहा जाता है आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% आबादी 40 वर्ष की आयु से कम की है, और जब इतनी बड़ी आबादी देश में निवास कर रही हो तो एक चुनौती बनकर उभरता है उनको सही शिक्षा और बाद में सही रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस विषय को लेकर सरकार ने क्या कुछ कार्य किए, किस तरह से चीज़ों को अंजाम दिया गया, उस पर भी आप ज़रूर प्रकाश डालिए।
2: युवा शक्ति तो लगभग 65% है इस देश में
1: जी।
2: आपने तो एक आयु सीमा तक सीमित किया है
1: जी,
2: तो ये करीब 65% के लगभग है
1: जी।
2: और 65% में युवक भी हैं, युवतियां भी हैं
1: जी।
2: उन्हीं को टारगेट करके उनके लिए बहुत, मतलब जो ये कौशल विकास की योजनाएं हैं
1: जी,
2: रोजगार से जुड़ी योजना है
1: जी जी जी,
2: MSME जो
1: जी,
2: विभाग है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का
1: जी,
2: इस विभाग के माध्यम से युवाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए अनेक योजनाएं, अनेक प्रकार के ऋण उनको ब्याज मुक्त प्रदान किए गए हैं
1: जी।
2: और रोजगार प्रदान करना युवा शक्ति को ये प्रमुख प्रधानता रहती है, वरीयता रहती है
1: जी।
2: क्योंकि मुद्दा जो उठता है वो बेरोजगारी का उठता है
1: जी।
2: लेकिन जितने भी डेवलपमेंट के काम मैंने जो गिनाए हैं
1: जी, जी, जी।
2: उन सब में चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब उद्योग लगेंगे, एक हवाई अड्डा बनेगा तो एक नई टाउनशिप वहां पर स्थापित होगी
1: जी।
2: मार्ग बनेंगे, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, तो उसमें भी सभी युवा शक्ति को ही रोजगार मिलता है और वेल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए ट्रेनिंग के भी केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी उनकी बहुत सारी योजनाओं को प्रारंभ किया, संचालित हो रही है और वो बहुत बड़े टारगेट्स अचीव कर रहे हैं
1: जी। इस दौरान हमने देखा कि कोविड का दंश भी पूरी दुनिया ने झेला, भारत ने भी झेला, और कहीं ना कहीं कुछ जो गति थी वो धीमी हुई, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से रिकवरी की गई वो काबिले तारीफ है। लगातार विकास का क्रम बढ़ता रहा, विकास की दर बढ़ती रही, चाहे हमारे देशी एजेंसियां हों या विदेशों से जुड़े हों, सभी ने आंकड़े इस प्रकार से बताए कि भारत अन्य देशों के मुकाबले अधिक रफ्तार पर है, अधिक जीडीपी की ओर है। क्या कोई ऐसे और कौन कौन से कारक हैं जिनको आप समझते हैं, युवाओं की हमने बात की, जिनको लेकर विशेष रूप से सरकार ने कार्य किए कि इस प्रकार से गति कभी धीमी पड़ी ही नहीं, लगातार विकास की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं?
2: कोविड की आपने चर्चा की
1: जी।
2: WHO ने उत्तर प्रदेश को, दो चरण थे कोविड के
1: जी,
2: दोनों चरणों में पूरे विश्व में प्रथम स्थान दिया है
1: जी।
2: कोविड की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है
1: जी।
2: और विश्व के जो विकसित राष्ट्र थे और हेल्थ सेक्टर में भी
1: जी,
2: जो अव्वल और दोयम नंबर थे, वो भी धराशायी हो चुके थे
1: जी।
2: लेकिन भारतवर्ष घबराया नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को भय मुक्त बनाया और निर्भय होकर यहाँ उसकी वैक्सीन भी तैयार कराई
1: जी।
2: और वैक्सीन माने दो प्रकार की
1: जी,
2: वैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन से पूरे देशवासियों को लगवा कर उनको भी निश्चिंत कर दिया
1: जी, जी।
2: और केवल इतना ही नहीं किया, माने विश्व के लगभग 200 देशों को वैक्सीन यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहां उन देश के अंदर जो कोविड की परेशानी थी उसको दूर करने में ये सहायता मिली। अब इन सब में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, राज्यों में भी और केंद्र में भी, हर प्रकार के विषय में तो युवा है
1: जी।
2: कहीं पर भी अब हवाई जहाज में महिला युवा हैं, अब तो जो युद्ध के विमान हैं उनमें भी पायलट के रूप में महिलाएं हैं, युवा हैं, तो युवा शक्ति तो जल पर भी है, थल पर भी है और नभ पर भी है। तीनों क्षेत्रों में युवाओं की अभूतपूर्व सक्रिय भूमिका है और उनका योगदान है
1: जी। हम देखते हैं कि जितनी बड़ी देश की आबादी है उस अनुपात में खेलों में भारत का प्रदर्शन इतिहास से ही उस प्रकार का नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को मिला है, अनेकों खेल विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है और जिस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए, जिस तरह का प्लेटफॉर्म उनको प्रदान करना चाहिए, उस पर लगातार कार्य हुए हैं, आपके क्या विचार हैं इस क्षेत्र में?
2: मैं समझता हूँ कि खेल के क्षेत्र में भी
1: जी
2: केंद्र सरकार की ओर से इसको बहुत प्रमोट किया गया है
1: जी।
2: खेलो इंडिया खेलो ये नारा देकर, और ये खेल को अब केवल देश की या राज्यों की राजधानी तक सीमित नहीं छोड़ा है
1: जी,
2: जनपद तक भी सीमित नहीं छोड़ा है, अब स्पोर्ट्स का स्टेडियम हर ब्लॉक तक बन रहे हैं
1: जी,
2: कुछ बन भी गए हैं, निर्माणाधीन हैं, तो ये ब्लॉक लेवल तक माने शहर की प्रतिभा भी और ग्रामीण प्रतिभा भी जो खेल में रुचि रखती है वो सब निकल करके आए, और इसके ट्रेनिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बढ़े हैं, कोचिंग का सिस्टम वह बहुत डेवलप हुआ है और उनके जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से जो खिलाड़ियों के कोचेज के लिए जो भी डाइट्स की आवश्यकता रिक्वायर्ड डाइट्स की आवश्यकता है उन सब की पूर्ति करने के लिए उनको हर प्रकार के इंसेंटिव्स देने का केंद्र की सरकार ने प्रयास किया है और उसका परिणाम आप ओलंपिक में भी देख रहे हैं, एशियाड में भी देख रहे हैं, अनेक प्रकार की चाहे क्रिकेट के मैदान में आप देख लीजिए 15 वर्ष का वैभव सूर्यवंशी हैं क्या कमाल दिखा रहा है। अब तक जितने भी क्रिकेटर हैं वह भी बाहर के भी बड़े जो क्रिकेट के देश हैं जो बहुत सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं वह भी उसके विषय में बहुत अच्छी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो 2020 के में हो वनडे के में हो या टेस्ट मैच के रूप में
1: जी, जी,
2: तीनों फॉर्मेट में फिर महिलाओं का फुटबॉल का तो अभी आपने पूरा रंग चली रहा है
1: जी, बिल्कुल,
2: उसका
1: बिल्कुल।
2: रंग उतरा नहीं है यहाँ तो रात को 1:30 बजे देखने का मौका शुरू होता है
1: जी,
2: लेकिन रात्रि भर जगते हैं सुबह तक उस खेल के लिए देखते हैं। दीवानगी पूरी दुनिया में है और फुटबॉल तो ऐसा इवेंट है कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर पसंद करते हैं सबसे ज्यादा दर्शक हैं तो वो फुटबॉल की है।
1: जी आपने महिलाओं की बात की और निश्चित रूप से महिलाएं यानी आधी आबादी किसी भी देश को अगर विकासशील से विकसित की ओर ले जाना है तो उनको नकारा नहीं जा सकता, उनका बराबर का रोल है, बराबर की उनकी जिम्मेदारियां भी हैं और कर्तव्य भी है। आप इस पर किस प्रकार से सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसे हम महिलाओं को भी साथ लेकर चलें, चल भी रहे हैं कि हमारी जो ये विकास की दौड़ है वो अधिक तेज हो।
2: केंद्र सरकार का और राज्य में माननीय योगी जी का मानना है
1: जी
2: कि 50% नारी शक्ति की जो भागीदारी है उसके सहयोग के बिना काम पूरा नहीं हो सकता है।
1: जी
2: उसके लिए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास भी हो गया है
1: जी जी जी
2: उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संशोधन का बिल आया था वह पास नहीं हुआ दुर्भाग्य से
1: जी
2: वह अगली बात है लेकिन पास तो होगा
1: बिल्कुल।
2: उसके पहले भी जो जितने भी पंचायत की और निकाय के चुनाव हैं उनमें 33% आरक्षण का विषय पहले से लागू है
1: जी
2: चाहे BDC मेंबर्स हों चाहे ब्लॉक प्रमुख हों चाहे जिला पंचायत सदस्य हों चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों चाहे सभासद हों चाहे पार्षद हों चाहे महापौर हों सब जगह पर यह 33% आरक्षण लागू है
1: जी।
2: तो मैं समझता हूँ नारियों के लिए तो सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर पूरे राज्यों में जहाँ भी सरकारें हैं अपनी सब जगह पर उनकी नारियों के लिए तो मैं समझता हूं कि अगर मैं लिस्ट लेकर के बैठता तो 50 योजनाएं ऐसी हैं नारियों के स्वावलंबन के लिए और उसमें एक बहुत बड़ी योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह उसको अपने पैरों पर खड़ा करना जी एक टीम बना करके बैंक में खाता और वो ऐसे से अद्वितीय अनूठे काम करके दिखा रहे हैं जो उत्पादन के काम हैं जो पूरे समाज के लिए राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं।
1: जी श्रोताओं सेवा सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष इस विषय पर माननीय सदस्य विधान परिषद श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी ने बहुत खुले मन से खुले विचार रखे, मुखरता से अपनी बात रखी और विस्तार से बताया किस प्रकार से जन कल्याण की योजनाएं हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही हैं और पहुंचाती रहेंगी। सर आप समय निकालकर हमारे बीच आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका और आकाशवाणी रामपुर का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत केंद्र सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास, इस विषय पर माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त से खास बातचीत कर रहे थे श्री विक्रांत चौधरी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है। पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनते हैं ये उपकार फिल्म से प्यार सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीत उपकार फिल्म से। स्वर था महेंद्र कपूर का, संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। इन्हीं मीटर्स पर संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन अब से लेकर संध्या 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। मीडियम वे पर हमें ये सभा यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।

0: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा, शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी, चंद्रैया मल्लवा, लावण्या रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपाकली में गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दर्ज

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत। मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा
3: जी। डॉक्टर साहब, क्या बात है?

0: अल्लाह बख्श नहीं आया तक, आते ही होंगे। देखो शकुंतला
1: जी,
0: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
0: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
0: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
0: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है, तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
2: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
0: देखो तो, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
2: हेलो।
0: डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
1: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
0: सुनाओ।
1: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
1: अम्मा जी,
0: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
1: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला? तुम जानती हो उसे उमा?
1: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
0: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
1: उसके दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
0: तब
1: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या ऐसी शादी के लिए थे?
1: जी हाँ।
0: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
1: कैसी चिट्ठी है?
0: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार सामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारे की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
1: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही है भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती है।
1: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
1: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेतीबाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई, सब्र करो सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्ठी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ, तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा, मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
0: कंपाउंडर
4: जी अभी आया।
0: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
0: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
0: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।
5: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
6: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
5: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
6: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
5: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
6: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
5: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
6: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा आदि दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
5: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
6: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
5: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
6: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
7: डॉक्टर साहब,
0: क्या हुआ भाई? ये खाओ ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
7: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
0: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
7: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
8: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
7: ओ, दवाएं क्या हुई?
8: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
7: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
0: ऐसा करो, हाँ? पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
7: अच्छा,
0: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
7: ठीक है,
8: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
0: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
3: डॉक्टर साहब, एक बात है।
0: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
3: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा।
0: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
3: वो उमा जी के घर
7: में, नायकम जी के घर में क्या बात है?
3: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
0: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
7: डॉक्टर साहब,
0: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
9: डॉक्टर साहब,
0: कौन है?
9: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
0: आप कौन है? अरे जहनम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
3: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
0: क्या?
3: कुमार स्वामी के घर?
9: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
0: शहर ले जा सकती हैं? आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकते हैं।
9: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
3: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
0: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
3: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
0: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है। चलिए आइए, जल्दी चलिए।
7: डॉक्टर साहब।
0: हाँ हाँ, बताइए बच्चा कहाँ है?
9: उस कमरे।
0: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
7: आइए डॉक्टर साहब, इधर से।
0: चलिए।
9: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
0: कंपाउंडर
10: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
0: लो।
10: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
0: कोई भी दवा बेकार है।
7: डॉक्टर साहब,
10: डॉक्टर साहब,
7: नहीं नहीं।
0: कंपाउंडर
10: जी,
0: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
10: जी,
0: जान निकले काफी देर हो चुकी है। ऐसा करो, इसकी माँ को तुम
7: डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
7: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
10: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
0: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
10: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया। आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
10: चलो चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने

0: तकलीफ क्यों उठाई?
1: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
0: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
1: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं भटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
0: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है। डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा?
1: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
0: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
1: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
0: अच्छा,
1: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
0: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ?
1: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आ? अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई हंस नहीं उमा।
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए।
4: हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
4: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
4: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए चलिए। भारती, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
3: सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
3: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किबाड़ तोड़ डाली और भीतर
1: गजब हो गया।
0: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर, मारो।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
1: आइए आइए आइए।

0: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए, आइए आइए आइए।
0: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
1: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
2: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
1: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
0: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
1: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
0: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
2: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
1: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
2: जरूर जरूर।
1: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
2: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
1: गुड बाय डॉक्टर।

0: सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: उमा,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम। क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ,
1: वो आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
2: मिला। व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब बापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है
0: बहुत,
1: जिसका जिक्र है।
0: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
1: बिल्कुल
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी वो।
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले
0: हाँ,
1: को दौड़ जाती है,
0: हाँ,
1: मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं और
0: साढ़े
1: वो
0: तीन
1: पूरे
0: सीन्स
1: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे।
0: हाँ, तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। बिकॉज मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते,
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। इस तरह से नहीं।

0: बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर। तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
0: हाँ
1: रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और
0: राइट
1: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट।
1: वाह,
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहां पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6 6 7 7 महीना 1 1 साल फोन आने में लग जाता था।
1: जी
0: पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8 10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं, और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा, हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त। लेकिन वो आखिर तक उनका था, कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट्स चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत हैं। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है
1: अर्धसत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट। सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: 2003-04 की बात कह
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले।
1: वाह।
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: वो बड़ी थी, समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे
0: अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी। हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूं खुद को कि

0: जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली, तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था, कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा,
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहां भर भी वो जाते थे. राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं.
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स, तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था. और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे. और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: बाबा।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना. तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले इस तरह के सारे लोग थे, तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं गए.
1: वाह वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब तो उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे. जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे, तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा. तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे। और मुझे जब से याद है बचपन से तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे। तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना सात समुंदर पार से। ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरों,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
1: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
1: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो,
0: के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
0: गजब।
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे, तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय, तक लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज लोगों को अभी उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
0: क्या बात है।
1: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसा मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए, इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
0: वाह वाह।
1: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी, जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए, इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
0: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: वो बताएं।
1: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सब के लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी कहा अभी नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
0: लो
1: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही पास ही में उसका घर है तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी। तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक बार दो घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में बिकॉज हम बम्बई है तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ
0: था। और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है।
1: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
0: वो उनको पता था,
1: बहुत करीब से देखी हुई थी।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
0: बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का।
1: हाँ।
0: ए मालिक तेरे बंदे हम।
1: ऑफ कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी असरार मियां।
1: और मैं हूँ शीरीन खान।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है,
1: सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 19 के अलावा कौन सा अनुच्छेद राइट टू वॉक से संबंधित है?
0: सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 19 के अलावा कौन सा अनुच्छेद राइट टू वॉक से संबंधित है?
1: और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पर, और उसके अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होगा अपना सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों का नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: श्रीन, एक बात बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी चिंताओं की लिस्ट भी बढ़ जाती है?
1: बिल्कुल, पहले टेंशन होती थी कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, अब सोचते हैं बिजली का बिल, बैंक का काम, घर की जिम्मेदारियां और ना जाने क्या क्या।
0: और सबसे मजेदार बात यह है कि हम हर काम की प्लानिंग करते हैं, अगले महीने क्या करना है, अगले साल कहाँ जाना है, सब सोच लेते हैं।
1: लेकिन एक चीज की प्लानिंग अक्सर टाल देते हैं।
0: कौन सी शरीन?
1: अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो उससे कैसे निपटेंगे?
0: हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती है।
1: बिल्कुल, शायद इसी सोच को मजबूत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
0: सही कहा, इस दिन का उद्देश्य सिर्फ बीमा की बात करना नहीं, बल्कि लोगों को ये समझाना है कि भविष्य की परेशानियों के लिए पहले से तैयार कैसे हों।
1: कई लोग बीमा को सिर्फ एक औपचारिकता या अतिरिक्त खर्च मानते हैं, जबकि सच तो ये है कि जरूरत के समय यही आर्थिक सहारा बन सकता है।
0: फिर चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा, वाहन बीमा या फसल बीमा, हर बीमा किसी न किसी जोखिम से सुरक्षा देने का काम करता है।
1: और बीमा लेते समय सिर्फ प्रीमियम नहीं, बल्कि उसकी शर्तें, कवरेज और लाभों को समझना भी बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आइए राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर हम यही संकल्प लें कि सही जानकारी हासिल करेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की भी योजना बनाएंगे।
1: तो दोस्तों, हमारी ये बातचीत तो यूं ही चलती रहेगी, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। अब वक्त हो चुका है हमारे आज के पहले सेगमेंट कुछ खास है आज के।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: तो दोस्तों, कुछ खास है आज में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान नेता की जिन्होंने अपने शांत स्वभाव, गहरी सोच और दूरदर्शी नेतृत्व से देश को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की, जिनकी जयंती हर वर्ष 28 जून को मनाई जाती है।
3: पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने कई भाषाएं सीखी और आगे चलकर वे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, उर्दू सहित कई भाषाओं के अच्छे जानकार बने। यही कारण था कि उन्हें एक विद्वान और बहुभाषाविद के रूप में भी सम्मान मिला।
0: दोस्तों, उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे पहले राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, विदेश, रक्षा और गृह जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली।
3: साल 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब पीवी नरसिम्हा राव जी देश के नवे प्रधानमंत्री बने। उस समय देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने धैर्य, समझदारी और दूरदृष्टि से फैसले लिए।
0: उनके नेतृत्व में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए जिनसे व्यापार बढ़ा, विदेशी निवेश आया, उद्योग को कई ताकत मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगी। आज भारत की आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव उन्हीं ऐतिहासिक फैसलों को माना जाता है।
3: पीवी नरसिम्हा राव जी केवल एक सफल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक लेखक, विचारक और विद्वान भी थे। वे मानते थे कि शिक्षा, ज्ञान और सही निर्णय किसी भी देश को मजबूत बना सकते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले इतिहास बदल सकते हैं।
0: दोस्तों, उनकी सादगी, ईमानदारी, मेहनत और देश के प्रति समर्पण आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। वे हमें ये संदेश देते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो कठिन समय में भी देश हित को सबसे ऊपर रखे।
3: तो आइए पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम शिक्षा को महत्व देंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे।
0: तो दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और जागरूकता से भरे दिन की। आज है अंतर्राष्ट्रीय आकाशीय बिजली सुरक्षा दिवस। ये दिन हर साल 28 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत लाइटिंग रेजिलियंस प्रोग्राम ने की थी और पहली बार इसे 2022 में मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक हो सकती है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
3: जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है और गरज चमक के साथ बिजली कड़कती है, तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। आकाशीय बिजली देखने में सुंदर लग सकती है, लेकिन ये बड़ा खतरा भी बन सकती है। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, इसीलिए इस दिन का उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित रहना सिखाना।
0: आकाशीय बिजली तब बनती है जब बादलों के अंदर बहुत अधिक बिजली का दबाव बन जाता है, फिर अचानक तेज चमक के साथ बिजली गिरती है। ये पेड़ों, खुले मैदानों, ऊंची इमारतों, पानी और धातु की चीजों के पास ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए बारिश और तूफान के समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है शरीन कि हमें क्या करना चाहिए।
3: सबसे पहले अगर तेज गरज और चमक शुरू हो जाए तो तुरंत खुले मैदान से हट जाए। पेड़ के नीचे खड़े होना सुरक्षित नहीं है, बिजली पेड़ पर गिर सकती है और खतरा बढ़ सकता है। दूसरी बात, पानी से दूर रहे। बारिश और बिजली के समय तालाब, नदी, नहर, स्विमिंग पूल या खुले पानी में नहीं जाना चाहिए। पानी बिजली को जल्दी फैलाता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
0: अब एक बहुत जरूरी बात, आकाशीय बिजली के बारे में कई गलत बातें भी फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन से बिजली गिरती है, ये पूरी तरह सही नहीं है। असली खतरा खुले स्थान, ऊंची इमारतें, पानी और धातु से होता है, इसलिए डरने के बजाय सही जानकारी रखना जरूरी है।
3: और अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाएं। पीड़ित व्यक्ति को छूना सुरक्षित होता है क्योंकि उसके शरीर में बिजली नहीं रहती। उसे तुरंत मदद की जरूरत होती है। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार दे और जल्दी से अस्पताल पहुँचाए।
0: तो दोस्तों आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि तूफान और बिजली के समय हम सतर्क रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और सुरक्षित रहने की आदत अपनाएंगे।
3: दोस्तों कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी दिन की। आज है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक दिवस। ये दिन हर साल 28 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत लॉजिस्टिक प्लस INC. नाम की कंपनी ने की थी और पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे घर तक सामान कैसे पहुंचता है और इसके पीछे कितनी मेहनत होती है।
0: दोस्तों जब हम दुकान से सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या बाजार से घर का सामान लाते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी व्यवस्था काम करती है। इसी व्यवस्था को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आसान भाषा में लॉजिस्टिक्स का मतलब सामान को सही जगह, सही समय और सही हालत में पहुँचाना है।
3: जरा सोचिए आपके घर में जो किताब, कपड़ा, दवा, खाना, मोबाइल या कोई भी चीज आती है वे अपने आप नहीं पहुंचती। उसके पीछे ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, गोदाम, ड्राइवर और कई मेहनती कर्मचारी होते हैं। ये सभी मिलकर लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं।
0: लॉजिस्टिक्स हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये व्यवस्था ना हो तो दुकानें खाली हो जाएं, दवाइयां समय पर ना पहुंचें और रोजमर्रा की चीजें मिलना मुश्किल हो जाए। इसलिए लॉजिस्टिक को देश की रीढ़ भी कहा जाता है। ये व्यापार को आगे बढ़ाता है और लोगों की जिंदगी आसान बनाता है।
3: ये दिन हमें सिखाता है कि देश की तरक्की सिर्फ बड़े भवनों या फैक्ट्रियों से नहीं होती बल्कि उन लोगों से भी होती है जो चुपचाप, लगातार और मेहनत से काम करते हैं। लॉजिस्टिक्स के बिना व्यापार अधूरा है और जीवन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
0: तो दोस्तों आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करेंगे, उनके काम को समझेंगे और उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों कुछ खास है आज में बस इतना ही। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आपको याद दिला दें कि आज दिन है रविवार और रविवार को रहता है हमारा स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस, जिसका आज है एपिसोड नंबर 33। एपिसोड 33 में बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं एपिसोड 32 में पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब। हमारा पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। गीत के बोल थे सोना कितना सोना है और सही जवाब है हीरो नंबर 1।
1: और दोस्तों हमारा दूसरा सवाल था, इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और हमारा गीत था कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जिसका सही जवाब है उदित नारायण और अलका याग्निक।
0: दोस्तों हमारा तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। गीत के बोल हैं लव यू जिंदगी और इसका सही जवाब है शाहरुख खान और आलिया भट्ट।
1: और दोस्तों हमारा आखिरी सवाल था, ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो कब रिलीज हुई थी, और हमारा गीत था पिता से है नाम तेरा, जिसका सही जवाब है 16 अक्टूबर 2013।
0: और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं एलेक्स गोयल, तनुजा जी, अमित चंगेल, भास्कर ठाकुर और अक्ष सक्सेना। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट सिने एक्सप्रेस के सब सेगमेंट सितारों की बात की ओर।
1: दोस्तों सितारों की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की, जिसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और अभिनय ने उसे अपनी पीढ़ी के सबसे चर्चित सितारों में शामिल कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह की।
2: हर सफल कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और मन से लगाव था,
1: लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया में कोई सीधा रास्ता नहीं था। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और अपने सपनों को जीवित रखा।
2: साल 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात ने रणवीर सिंह को रातों रात स्टार बना दिया।
1: उनके किरदार, बिट्टू शर्मा की ऊर्जा, हास्य और देसी अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पहले ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिला।
2: रणवीर उन कलाकारों में से हैं जो हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं।
1: चाहे रामलीला का रोमांटिक राम हो, बाजीराव मस्तानी का वीर पेशवा बाजीराव, पद्मावत का खतरनाक अलाउद्दीन खिलजी या गली बॉय का संघर्षशील मुराद, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी।
2: और फिर आई पद्मावत, जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई। ये किरदार उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और चर्चित किरदारों में से एक माना जाता है। 2019 में आई गली बॉय ने रणवीर सिंह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: एक साधारण लड़के के बड़े सपनों की कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। फिल्म का संदेश साफ था, अगर जुनून है तो मंजिल दूर नहीं।
2: रणवीर सिंह की सबसे बड़ी खासियत है उनका आत्मविश्वास। उनके अनोखे कपड़े, बेबाक अंदाज और खुलकर जीने की शैली उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती है।
1: वे हमेशा कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और अपनी पहचान बनाने से कभी मत डरो।
2: रणवीर सिंह ने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं और आज वे बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं।
1: लेकिन उनकी असली उपलब्धि है दर्शकों का प्यार, जो उन्हें हर नई फिल्म के साथ मिलता रहता है।
2: रणवीर सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, मेहनत सच्ची होनी चाहिए और आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए,
1: क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं।
2: तो दोस्तों रणवीर सिंह केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है,
1: और यही कारण है कि वे आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं।
0: दोस्तों सितारों की बात में बस इतना ही। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत, जिसमें आपको बताना होगा ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।

0: तो दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना है, आपको इसमें बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिने स्पेस के अगले सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा की ओर।
1: पिटारा में आज हम लेकर आए हैं भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और चर्चित फिल्मों में से एक, बाजीराव मस्तानी।
2: प्रेम कहानी नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, समाज और भावनाओं का ऐसा संगम है जिसने दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। इस फिल्म का निर्देशन किया था संजय लीला भंसाली जी ने, जो अपनी भव्य फिल्मों और शानदार प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं।
1: 18वीं शताब्दी का भारत, मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। उसके सबसे वीर सेनापति थे पेशवा बाजीराव प्रथम। इतिहास बताता है कि बाजीराव ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा।
2: इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है बुंदेलखंड की राजकुमारी और योद्धा मस्तानी से। मस्तानी अपने पिता के राज्य को बचाने के लिए बाजीराव से सहायता मांगती हैं। युद्ध में विजय के बाद दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और फिर प्रेम जन्म लेता है।
1: लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। बाजीराव पहले से ही विवाहित थे। उनकी पत्नी थी काशीबाई, एक समर्पित, स्नेहमयी और स्वाभिमानी स्त्री। यहीं से शुरू होता है प्रेम, कर्तव्य और समाज के बीच संघर्ष।
2: फिल्म में रणवीर सिंह ने बाजीराव का किरदार निभाया, एक ऐसा योद्धा जो रणभूमि में अजय था लेकिन अपने हृदय के सामने असहाय हो गया।
1: बाजीराव केवल प्रेमी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता, रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के विस्तार के प्रमुख स्तंभ। इतिहास में उनका स्थान एक महान सेना नायक के रूप में भी दर्ज है।
2: इस फिल्म में दीपिका पादुकोण द्वारा निभाया गया मस्तानी का चरित्र साहस, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।
1: दोस्तों, मस्तानी केवल एक प्रेमिका नहीं थी, वह एक कुशल घुड़सवार, योद्धा और राजकुमारी थी। उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद अपने प्रेम का साथ नहीं छोड़ा।
2: उनके दर्द और संघर्ष को दर्शाता ये प्रसिद्ध संवाद,
3: जिसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे।
1: और अब बात उस किरदार की जिसने दर्शकों को सबसे अधिक भावुक किया, काशीबाई। ये भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा जोनस ने।
2: काशीबाई त्याग, गरिमा और आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने अपने पति से प्रेम किया लेकिन परिस्थितियों का सामना भी अद्भुत धैर्य के साथ किया।
1: उनका ये संवाद आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है।
4: अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया।
2: एक ही पंक्ति में काशीबाई का पूरा दर्द और उनकी महानता दिखाई देती है।
1: बाजीराव और मस्तानी का प्रेम उस समय के सामाजिक और धार्मिक बंधनों को चुनौती देता है। यही कारण था कि उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
2: फिल्म में एक शक्तिशाली क्षण तब आता है जब समाज मस्तानी को पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर देता है।
5: बुंदेल की सौगात चलेगी बेटी नहीं, मस्तानी रखेल बन कर रहे चलेगी पत्नी नहीं। याद रहे माँ से, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है आयाशी।
1: ये संवाद उस दौर की सामाजिक मानसिकता और मस्तानी के संघर्ष को दर्शाता है।
2: ये फिल्म ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरित है। बाजीराव प्रथम, मस्तानी और काशीबाई वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। हालांकि फिल्म में कुछ घटनाओं और भावनात्मक प्रसंगों को सिनेमाई रूप देने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता भी ली गई है।
1: यानी ये फिल्म इतिहास का दस्तावेज नहीं बल्कि इतिहास से प्रेरित एक भव्य सिनेमाई प्रस्तुति है।
2: फिल्म का संगीत, सेट, परिधान और सिनेमेटोग्राफी इसे यादगार बनाते हैं।
1: दीवानी मस्तानी, मल्हारी और आयत जैसे गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
2: अगर बाजीराव वीरता का प्रतीक है तो मस्तानी प्रेम का और काशीबाई त्याग का।
1: तीनों किरदार मिलकर हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं बल्कि रिश्तों, भावनाओं और निर्णयों का भी नाम है।
2: यही कारण है कि बाजीराव मस्तानी आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है।
1: दोस्तों, फिल्मी पिटारा में बस इतना ही। चलिए सुनते हैं ये गीत जिसमें आपको बताना है ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो कब रिलीज हुई थी।

0: तो दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, आपको इसमें बताना है ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वो कब रिलीज हुई थी।
1: और अब वक्त है हमारे बॉक्स ऑफिस बस का, जहां हम बात करते हैं आने वाली नई फिल्मों की जो जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं।
0: तो शुरुआत करते हैं 3 जुलाई 2026 से, जब एक साथ रिलीज हो रही हैं 3 नई फिल्में। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। ये फिल्म 3 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन किया है शिव रावेल ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल। तो देर किस बात की, जल्द ही अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म का आनंद लीजिए।
1: इसी दिन रिलीज होगी बेबी डू डाई डू। ये फिल्म भी 3 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में आएगी। मुख्य भूमिकाओं में है हुमा कुरैशी, चंकी पांडे और सिकंदर खेर। तो तैयार हो जाइए और अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म का आनंद लीजिए।
0: अब बढ़ते हैं 10 जुलाई 2026 की ओर, जब रिलीज होगी धमाल 4। इस फिल्म का निर्देशन किया है इंद्र कुमार ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी। तो हंसी और मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म का मजा लेने के लिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों का रुख जरूर कीजिए।
1: तो ये थी आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली कुछ बहुप्रतीक्षित फिल्में। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बॉक्स ऑफिस बज में कुछ और नई फिल्मों और नई जानकारियों के साथ। चलिए सुनवाते हैं दोस्तों आपको ये गीत, जिसमें आपको बताना होगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

0: दोस्तों, ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आपको बताना होगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं। तो साथियों, अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। और हमारा आज का सवाल था, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 19 के अलावा कौन सा अनुच्छेद राइट टू वॉक से संबंधित है? और इसका सही जवाब है आर्टिकल 21। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: विजय सिंह महोबिया, जॉन डी कैस्ट्रो, पुंजाजी नावकर, सुदर्शन शाह, दिनेश वर्मा, आली रजा रिजवान, सिद्धार्थ गोंडाने, रवि कुमार राहुल, दिगर्शन गोण, भगवत चौबे, किशन सपकाल, नजमुल हुदा, सुरेश खुराना, विनोद मुनत, अजीत कसाना, धर्मेंद्र छिपा, हाजी गफ्फार खान, गजानन येले, सत्येंद्र चंसोलिया पंजोलिया, संजय ढींगिया, वित्तल सुरोशे, विजय सुलाकर, राधेश्याम पांडे, महाराज कीर्तन पुरी, नवी हसन अब्बासी, शाहजी भोटके, रामकुमार रेवर, नरेश मल्होत्रा, सुरेश जायसवाल, मिसबा शमसी, खिलाश फुलमाली, जगदीश धाकड़, सुरेश गगनेजा, धीरज भाई राबड़ी, मोहम्मद सईद अब्बासी, शकील अहमद इदरीशी, विमल सक्सेना भारती, लालगिरी गोस्वामी, सोहन जोशी, रवि रस्तोगी, निसार सलमानी, हीरामणि वर्मा, बलवंत कुमार वर्मा, लाल मोहम्मद अंसारी, आकाश रस्तोगी, उत्तम कुमार भगत, सुरेश राठौड़, बी एल धाकड़, इरशाद अहमद, फगुराम यादव, प्रवीण चौहान, आमिर हुसैन, राजू मिगलानी, नरेन नेतम, राजवीर सिंह यादव, आफताब अंसारी, शाहरुन नूर अंसारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंजान, मोहम्मद जाहिद अली, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप, उमेश कुमार गौर, भाई रफत साहब, दुर्गाराम साहू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथी जिन लोगों ने आज के सवाल का सही जवाब दिया।
0: तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत, जिसमें आपको बताना होगा ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।

0: दोस्तों, ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आपको बताना होगा ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। और श्रोता साथियों, ये थे हमारे आज के सेगमेंट्स और अब वक्त है आपसे विदा लेने का।
1: तो दोस्तों, आपको आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा हमें बताना न भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर और हमारी पिन संख्या है 244901।
0: दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। आप हमें इस पर मेल भी कर सकते हैं।
1: इसी के साथ मैं आपका रेडियो साथी एसआर मियां
0: और मैं शीरीन खान को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी भैया बहनों को हेमपाल भैया
1: और अब्दुल हफीज भैया की
0: राम राम।
1: और हेमपाल भैया कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं भैया, और अपने सुनाओ।
1: हाँ भैया, हम तो ठीक हैं। और खेतीबाड़ी कैसी चल रही है?
0: खेतीबाड़ी का भैया देख रहे हो, इस समय जो बारिश ना आ रही है, जहाँ से बड़ी परेशानी है। जो हमने पहले पौध डाल दी थोड़ी लगाई, बाकी तो रोपाई मजबूरी में करने पड़ गई, क्योंकि बारिश ना आए भाई तो इंजन से ही करिए रोपाई। लेकिन अब जो कुछ 10-12 दिन बाद लेट डाली थोड़ी सी पौध, बाको अब जो इंतजार है कि जैसे जैसे मेवा बरस जाए। अभी इंटरनेट बता रहे हो कि 2-3 दिन में ही जाए बारिश, तो इंतजार है, पहला वाला डाल कर फिट कर देंगे जो तूत के, जैसे ही बारिश ही जाए और हम धान की रोपाई कर देंगे। और भैया गन्ना में उस समय काम धाम चल रहा हुआ है।
1: हाँ भैया, इस समय आपने देखा होगा कि जो तापमान है वो 42 से ऊपर जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और हमारी फसलों के लिए, पशुओं के लिए बड़ा नुकसानदायक है।
0: सभी के लिए नुकसान है भैया।
1: अब अगर बारिश ना होगी तो हमारे जो फसल धान वाली है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भैया हेमपाल भैया, जो ये DSR विधि है, जैसे डायरेक्ट सोइंग जिसे कहते हैं, यानी कि छिटकवा विधि भी कह सकते हैं उसे, और जो अब तो मशीनें आ गई हैं, तो उसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा, लगभग बिलासपुर क्षेत्र हुआ या शवार क्षेत्र हुआ, इसमें लगभग 40% बुआई डायरेक्ट विधि से हो गई है, उसमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
0: हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी बुवाई हुई है, और हम देख रहे हैं कि जैसे बारिश ना भई है, उस हिसाब से वो धान अच्छा जमू है।
1: हाँ भैया, उसमें नमी रहनी चाहिए बस, अगर नमी है तो पौधा सही चलेगा भैया। अगर जैसे बारिश ना हो रही है और हमारे किसान भाई पौध लगाने तैयार बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो बारिश का इंतज़ार करते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, और जो पौध की उम्र होती है वो बढ़ जाती है, और पौध में एक तरह से गांठ बनना शुरू हो जाती है, तो जिससे उसकी पौध की बढ़वार रुक जाती है और जो कल्लों की संख्या होती है वो भी रुक जाती है।
0: भैया आपने जो गांठ की बात बताई ना, जहाँ हम समझ रहे हैं आप उसे कह रहे होगे जो डबल जड़ी जाती है
1: ना। भैया डबल जड़ से तो होती है, जैसे हमारे किसान भाई धान लगवाते हैं, जो लेबर होती है वो जड़ तोड़ के लगाती है, यानी कि जो उनकी उंगली होती है वो जड़ से ऊपर रखते हैं और जड़ टूट जाती है, यानी कि धड़ टूट जाता है उसका, और या वो ज़्यादा गहरा लगा देते हैं। जब वो गहरा लगा देते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, जिसे डबल जड़ हमारे किसान भाई कहते हैं, और फिर वो दुकानदार के पास भागे भागे जाते हैं कि साहब डबल जड़ हो गई, तो उसमें वो फंजीसाइड और फंगस की बहुत तरह की ऐसी दवाइयाँ देते हैं, जबकि उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हेमपाल भैया, 2 दिन सिर्फ पानी रोक दें हमारे किसान भाई, 2 दिन रोक दें, उसे सूखा लगा दें, उसके बाद जो है जो खाद पानी डालने का वो 2 दिन के बाद डालें, बिल्कुल सुखाने के बाद, तो किसी तरह की डबल जड़ नहीं होगी और वो पौधा सही चलेगा।
0: बिल्कुल। और भैया देख रहे हो, इस समय जैसे जैसे बारिश हुई और धान की बुवाई चल रही है, और जो देखी जा रही है कि इस समय जो यूरिया की यूरिया खाद है या फिर NPK खाद है, जो हम हर साल अनाप शनाप डालते ना, एक एक कट्टा की जगह 2-3 कट्टा डालते, वो हमारी सरकार अब इस समय ऐसे ना दे रही है, बस कायदे से दे रही जितनी हम आपके लिए ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारे बहुत से किसान साथी ने क्या करूँ कि ढेंचा की बुवाई कर दी है।
1: हाँ भैया, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, जो उसकी जड़ों में नाइट्रोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और खाद मिलने का जो तरीका है हेमपाल भैया, पहले क्या था कि दुकानदार के पास हमारे किसान भाई जाते थे, 2 कट्टे 4 कट्टे 6 कट्टे जितने की जरूरत पड़ती थी लेते थे, और वो अधिक डालते थे।
0: हाँ,
1: तो इससे हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो घट रही है धीरे धीरे। तो जो लेने का तरीका है इसका, एक FFS, ये एक ऐप है जो अपने मोबाइल में किसान को, हमारे किसान भाई को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद में वो सारी उसकी ज़मीन, क्योंकि उसमें पहले फार्म रजिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा
1: हेमपाल भैया, हमारा जो ज़िला है वो लगभग 90% यानी 90% फार्म रजिस्ट्री इसमें हो चुकी हैं, और 90 से भी ऊपर हो गई हैं। इस वजह से इसको ऐप के माध्यम से खाद का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो उससे हो रहा है। तो डबल FFS अगर हमारे किसान भाई ऐप डालने के बाद में और वो बुक करते हैं, तो पहले क्या था कि एक दुकानदार के पास गए और वो लेके चले आए, अब ऐसा नहीं है। अब जब उनका वो खुलेगा तो उसमें फार्म रजिस्ट्री में जितनी ज़मीन उन्होंने अंकित की है या उनकी है, वास्तव में वो ज़मीन आ जाएगी, तो उनको 1 कट्टे की ज़रूरत है, 2 की है, अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है यानी 2.5 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 7 बैग जो है यूरिया, 3 बैग NPK और 3 बैग DAP मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई ऐप अपना डाउनलोड करके, और वो दुकान का जब नाम खुलेगा तो अपने जो नज़दीकी दुकानदार हैं उनसे लें, या जो जो सोसाइटियाँ होती हैं उसके माध्यम से लें, तो एक तरह से ये आसान हो गया है।
0: बिल्कुल भैया, और सही है, हम कई सालन से अपने किसान साथियों से कह रहे हैं कि देखो खेतन में अनाप शनाप आप खाद मत डालो, जो उर्वरक मत डालो, या अगर आप ये रासायनिक डालोगे खेतन में तो हमारी जो भूमि है वो खराब ही जाए, आगे जाके पैदावार बहुत कम ही जाए। इसीलिए हमारी सरकार ने अब कुछ थोड़ी सी अनाप शनाप खाद उर्वरक देने के लिए थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है कि सीमित मात्रा में आप अपने खेतन उर्वरकों को लगाओ और देसी खाद उनको ज़्यादा प्रयोग करो।
1: हाँ भैया, इस समय जैविक खाद की उपलब्धता तो है ही, लेकिन जो पशुपालन है, जब हमारे किसान भाई जैविक खेती करेंगे तो पशुपालन तो करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: पशुपालन से ही जैविक खेती है
0: भैया। देखो जैविक खेती इसीलिए जरूरी है कि एक तो हमारी बाकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रही, और जो हमें जो अनाज वगैरह है या सब्जी वगैरह हम आपको जो नुकसान दे रही है वो भी हमें नुकसान ना दे। जाके अलावा जाओ से ज़्यादा जरूरी है कि अगर हमने जैविक खेती आज ना अपनाई और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए वो ना सिखाई जैविक खेती करनो, तो आगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उत्पादन खेतन से मिलने बहुत ही मुश्किल ही जाए, आखिर बहुत ही कठिनाई को समा आ जाए। इसीलिए जरूरी है जैविक खेती।
1: हाँ भैया, जीवाश्म कार्बन जो मिट्टी की जान होती है, धीरे धीरे हमारे खेतों से जीवाश्म कार्बन नग्न अवस्था की तरफ जा रहा है, मतलब जो 0.80 से ऊपर होना चाहिए वो 0.20 यानी लो बहुत ज़्यादा लो है, वेरी लो भी है, यानी VLL वेरी लो है, फिर आता है मीडियम साइज, तो मीडियम भी हमारे यहाँ बहुत कम है, तो लो की कंडीशन में ज़्यादा है जो 0.20 0.30 तक है यहाँ, जबकि हमारा 0.80 से ऊपर होना चाहिए। तो ये संभव होगा हमारी जैविक खेती से और हरी खाद बोने से। हरी खाद में ढेंचे की खाद है या दलहनी फसल करके उसमें लोड दें किसान भाई हमारे, और जो सड़ी गली गोबर की खाद होती है जो हमें पशुओं के द्वारा मिलती है वो अगर डालेंगे तभी जैविक खेती हमारे किसान भाई कर पाएंगे। देखा होगा आपने कि आम हमारा वापस आ रहा है, हमारा जो धान जा रहा है वो वापस आ रहा है, उसमें जो अंश हैं दवाइयों के, चाहे वो ट्राइसाइक्लाजोल हो, क्लोरोपाइरीफास हो, जो इंसेक्टीसाइड दवाइयाँ और साथ साथ उसके जो फंजीसाइड दवाइयाँ हैं उनके भी अंश आ रहे हैं, तो धीरे धीरे एक तरह से स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो हमारे किसान भाई जैविक खेती अपनाएं, ढेंचा बोने जो है शुरू कर दें और दलहनी तिलहनी ये फसलें अपनाएं, और साथ साथ फसल चक्र का अपनाना भी बहुत ज़रूरी है।
0: तो किसान साथियों, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जैविक खेती आज की आवश्यकता और कल की ज़रूरत है। तो साथियों, अब कुछ बातें उर्वरकन की और कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सरकार कह रही, हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपको रसायनों को प्रयोग करने ही है तो आप कम मात्रा में तो करो, लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरी आपको लग रही है, देसी खाद ना मिल रहा हो आपको, हरी खाद ना लगा पा रहे हो, तो आप तरल जो उर्वरक आ रहे हैं उनको प्रयोग करो, उससे कम से कम हमारी जो मिट्टी है वो तो बरकरार बनी रही। हाँ। बाकी तो उर्वरा शक्ति खत्म ना हुई, तो तरल उर्वरकों को प्रयोग कितना ज़रूरी है, कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान रखें, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जिसको विषय है तरल उर्वरकों का प्रयोग। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री अजीजुर रहमान, और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। साथियों, हम आपको बता दें जो भेंट वार्ता को पुनः प्रसारण आज करो जा रहा है, तो साथियों आप सुनो और हम सुने जो जानकारी।
2: किसान साथियों, फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कई प्रयास करते हैं और शुरू से ध्यान रखते हैं, चाहे बीज की बात करें, सिंचाई की बात करें, उर्वरक की बात करें। आज हम बात करेंगे उर्वरकों के बारे में, और विशेष रूप से जो तरल उर्वरक हैं इनका जो प्रचलन हुआ है, इनका प्रयोग बढ़ रहा है उसके बारे में, क्योंकि हम जो भी सॉलिड उर्वरक डालते हैं अपने खेतों पे, बुआई से पहले भी, बुआई के बाद भी, इनके अलावा जब फसल खड़ी हो जाती है तब हमें उर्वरकों की जरूरत पड़ती है।

0: उर्वरक क्या है और इनका प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमारे स्टूडियो में जानकारी देने के लिए साथ हैं श्री अजीजुर रहमान जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और पूर्व में इफको में उप महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। अजीजुर रहमान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जहां तक हमने चर्चा की कि जलीय उर्वरक यानी तरल उर्वरक का जो प्रयोग बढ़ रहा है, इसकी
1: जी
0: आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितना सफल है?
1: किसान भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले भी हम लोग कई बार वार्ता कर चुके हैं और समय समय पर बहुत सारे विषयों पर हमारी आपसे वार्ता हुई है।
0: जी
1: मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फसल को या किसी भी पौधे को पूरा करने के लिए जीवन 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से हम बहुत सारे तत्व हवा पानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमें ऊपर से देने पड़ते हैं।
0: जी
1: खास तौर से जो अभी तक हम उर्वरक का देते थे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। हुआ ये कि जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैसे हम यूरिया डालते हैं खेत में, तो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है ना
0: हाँ
1: वो लीच कर जाता है या ऊपर एवोपरेट हो जाता है। उसका 30% 25% ही भाग उसको मिलता है।
0: ठीक
1: ऐसे ही
0: है
1: फास्फोरस में है, जब हम DAP या NPK खेत में डालते हैं
0: हाँ
1: तो उसका 30% से ज़्यादा फसल को नहीं मिलता है, बाकी वो ज़मीन में पड़ा रह जाता है।
0: जी
1: तो पूरा भरपूर फसल हमें उसमें भरपूर लाभ उसका नहीं मिल रहा था। दूसरी बात यह थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम बुआई के समय में बहुत से उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उस टाइम हमें हो सकता है हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है या हमें वो मिल नहीं पाते, हम डाल नहीं पाते हैं किसी कंडीशन में।
0: जी
1: तो इस पर बहुत बड़ी एक रिसर्च हुई और उसमें यह हुआ कि हम लोग ऐसा क्या है कि जो हम फसल में बोने के बाद
0: हाँ
1: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, नाइट्रोजन तो हम दे सकते थे यूरिया से,
0: जी
1: लेकिन पोटाश और फास्फोरस हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि
0: हाँ
1: ये जमीन में अचल होते हैं, जहाँ पड़ जाते हैं वहीं पड़े रहते हैं।
0: जी
1: तो उसमें एक जल विलय उर्वरकों का इजाद हुआ
0: हाँ
1: और जल विलय उर्वरक आए तो उसमें जल विलय उर्वरक में हमारे कई तरह के उर्वरक हैं, जो फास्फोरस वाले भी हैं, पोटाश वाले भी हैं,
0: जी
1: नाइट्रोजन वाले भी हैं, इस तरह से। तो मैं आपने कुछ खास खास इन उर्वरकों के बारे में बताना चाहूंगा
0: जी
1: कि सबसे पहले हमने एक उर्वरक लाए हम 19-19-19
0: ठीक है
1: NNT,
0: हाँ हाँ
1: जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटाश।
0: जी
1: उसके बाद एक आया यूरिया फास्फेट,
0: अच्छा
1: जैसे कहते हैं 17-44-0,
0: हाँ हाँ
1: 17% नाइट्रोजन, 44% जैसे
0: फास्फोरस
1: DAP का कह सकते हैं, जितने डीएपी का
0: हाँ
1: फार्मूला है इस तरह से
0: बिल्कुल
1: 17-44
0: बिल्कुल
1: का है।
0: जी जी
1: 19-19 ऐसा है जैसे NPK का
0: हाँ
1: फार्मूला।
0: हाँ
1: ऐसी अगर हमें खाली पोटाश देनी है
0: जी
1: तो हम 0-0-50 लाए।
0: अच्छा
1: तो इन उर्वरकों का हमने प्रयोग किया और इसका भरपूर लाभ किसानों को मिल
0: ठीक
1: रहा
0: है,
1: है।
0: बात यही आ रही है कि उर्वरकों का प्रयोग तो हम करते ही आ रहे हैं। फसल को जब हम बीज बोते हैं उससे पहले कुछ उर्वरकों को डालते हैं और कुछ को हम खड़ी फसल में बार बार डालते रहते हैं और इनका हम छिड़काव करते हैं, मतलब बुरकाव करते हैं। लेकिन यूरिया का छिड़काव भी हमारे किसान करने लगे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं, उन्हें फायदा भी नजर आता है। फॉस्फोरस और पोटाश के बारे में जानकारी हमारे किसान भाइयों को कम है, क्या ये भी उर्वरक उपलब्ध है और क्या इनका उपयोग उसी तरीके से हो पाता है सही तरीके से? क्योंकि स्प्रे में क्या होता है, पत्तियों पर ये उर्वरक गिरते हैं। कुछ उर्वरक ऐसे हैं, पोषक तत्व ऐसे हैं जिनको पौधे की जड़ में देना होता है, खेत में देना होता है, तो क्या वहां तक तो पूरा लाभ मिल पाता है?
1: ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब हमने DAP या हमारे फास्फोरस या पोटाश की जरूरत होती है और जब हम जमीन के बाद खेत में देना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ
0: जी
1: कि जब फसल इतनी बड़ी हो जाए कि उसमें जमीन दिखना बंद हो जाए,
0: हाँ
1: यानी फसल 1 महीने 1.5 महीने की हो जाए, चाहे वो गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो,
0: जी
1: जब वो फसल में हमारी इतनी पत्तियां हो जाएं कि जमीन दिखना बंद हो जाए, तो इसका तरीका है वो ये है कि हम उस पर 1% की स्प्रे करते हैं,
0: ठीक है
1: यानी 100 लीटर पानी में हम 1 किलो उसे घोल लेंगे
0: जी
1: और उसका हम स्प्रे करेंगे, तो जो हमारी खड़ी फसल है उसमें जो पत्ती में स्टोमेटा होते हैं
0: जी
1: उसके द्वारा ही इसको अवशोषित किया जाता है। यानी जितना भी हम खाद इसे देते हैं वो सारा का सारा पत्तियों के द्वारा अवशोषित होकर उसे फास्फोरस के रूप में, पोटाश के रूप में या नाइट्रोजन के रूप में
0: लिया जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: हाँ
1: इसमें किसी तरह का नुकसान खाद का नहीं होता है,
0: जी
1: इसीलिए ये 1 किलो के पैकेट में बनाए गए, 1 किलो के पैकेट में अवेलेबल है।
0: हाँ
1: इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है हमको कि इसकी सांद्रता जो है, इसको जो हम मिलाएंगे पानी में, वो बहुत ज़्यादा ना हो,
0: जी
1: फसल के अनुसार हो।
0: हाँ
1: जैसे मेरी कोई फसल गेहूं की फसल है तो बहुत मुलायम पत्ती होती है,
0: हाँ
1: या सब्जी की फसल है उसकी मुलायम पत्ती होती है, तो उसमें हम 100 लीटर में 1 किलो से ज़्यादा ना मिलाएं,
0: अच्छा
1: यानी 1% करें।
0: जी
1: लेकिन अगर हम इसी को हम गन्ने में कर रहे हैं
0: हाँ हाँ
1: तो हम इसको बढ़ा के 2%, 2.5%, इवन 3% भी कर
0: कर
1: सकते हैं,
0: सकते
1: क्योंकि
0: हैं,
1: गन्ने की जो
0: पत्तियां
1: फसल
0: मजबूत होती है
1: मजबूत होती है।
0: जी। क्योंकि यूरिया को जब हम स्प्रे करते हैं तो जो यूरिया उपलब्ध होता है उसी का घोल बना लेते हैं। अगर फास्फोरस और पोटाश का हम स्प्रे करना चाहें कि तो जो फास्फोरस और पोटाश के उर्वरक उपलब्ध है
1: जी
0: इनको हम घोल सकते हैं या नहीं?
1: हाँ, ये बिल्कुल घुलनशील है,
0: अच्छा
1: इनका नाम ही जल विलय उर्वरक है,
0: हाँ हाँ
1: इनका नाम जल विलय उर्वरक है।
0: अच्छा
1: और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे अच्छे में जैसे 18-18-18 या 19-19 अगर हम लेते हैं
0: जी
1: तो इसमें हमें तीनों चीजें मिलती हैं,
0: अच्छा
1: नाइट्रोजन,

0: फास्फोरस और पोटाश,
1: हाँ
0: इसको हम घोलेंगे तो ये 100% घुल जाएगा,
1: अच्छा
0: ये पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है, घुलनशील उर्वरक ही कहलाता है ये।
1: हाँ
0: और फिर हम उसको अपनी सुविधा अनुसार, जब खेत में धूप है अच्छी सी
1: जी
0: और मौसम खुला हुआ है, तो हम इसका स्प्रे करें। और इसका स्प्रे हम अगर 3 बार कर लें,
1: हाँ
0: 15-15 दिन के अंतर पे,
1: जी जी
0: यानी मैंने पहले बताया कि जब खेत में फसल इतनी अच्छी हो जाए, बड़ी हो जाए कि जमीन दिखना बंद हो जाए, एक स्प्रे हम उस वक्त करें,
1: हाँ
0: एक उसके 15 दिन बाद करें और एक उसके फिर 15 दिन बाद करें,
1: हाँ
0: तो फिर हमारी फसलों में आशातीत वृद्धि होती है और आशातीत उसकी उपज बढ़ती है।
1: जी, तो आपने बताया कि इस प्रकार का प्रचलन बढ़ा है और किसान इसको पसंद कर रहे हैं। यदि हम फायदे की बात करें,
0: जी
1: क्योंकि जब हम इसका बुरकाव करते हैं उर्वरक का, तो अधिक अमाउंट में करना पड़ता है, अधिक मात्रा में करना पड़ता है, और जब हम स्प्रे करेंगे तो उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है और कम मात्रा में इसका प्रयोग करना पड़ता है।
0: बहुत सही बात है। आज के समय में हमें सबसे बात यही है कि हमें कम लागत में अधिक उपज लेनी है या अधिक
1: हाँ
0: लाभ लेना है।
1: जी
0: अभी हम सपोज करो एक एनपीके का बैग डालते हैं या डीएपी का डालते हैं, तो वो 1,000 रुपये से उपचा ही होता है,
1: जी
0: हजार का, 1,200 का, 1,100 का,
1: बिल्कुल
0: जैसे रेट होते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: हाँ
0: उसके। यूरिया का 1 कट्टा 250-300 रुपये का होता है।
1: हाँ
0: इसका ये बहुत सस्ता है, या 1 किलो का पैकेट इसका 60-65 रुपये का है।
1: अच्छा
0: अगर हम 1 एकड़ में अगर 2 पैकेट भी हमारे लगे,
1: हाँ हाँ
0: मुश्किल से 130 रुपये के,
1: बहुत सस्ता है
0: बहुत सस्ता है।
1: हाँ हाँ
0: और दूसरी, इसका लाभ इसलिए ज्यादा मिलता है कि ये पूरा का पूरा जलविलय है, जल में घुलनशील है,
1: जी
0: और पत्तियां पूरी की पूरी तरीके से अवशोषित करके इसका लाभ हमें देती हैं।
1: जी
0: और इसमें एक तो यह है कि उपज में तो वृद्धि होती है, उपज की जो क्वालिटी है,
1: हाँ
0: उसका जो दाना है ना, उसमें भी बहुत अच्छा सुधार होता है।
1: जी
0: तो इसलिए हमारे बाजार भाव भी इससे अच्छे मिलते हैं
1: जी
0: और इसमें काफी अच्छी संभावनाएं हैं इसकी।
1: बिल्कुल, संभावनाएं अच्छी हैं और कम पैसे में अधिक लाभ मिल जाता है, ये इसका लाभप्रद जो एंगल है। और दूसरी बात यह है कि और उर्वरकों पर भी शोध कार्य चल रहे हैं, उनका भी प्रचलन शुरू होने की उसमें है, और इसके बारे में चर्चा भी की जा चुकी है कई बार कि नैनो फर्टिलाइजर का जिक्र होता है, यानी वो फर्टिलाइजर जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। ये क्या चीज है और इसका भविष्य किस प्रकार से देखते हैं?
0: जैसे हमारे यूरिया, एनपीके, डीएपी के बाद फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये आया जलविलय उर्वरक का।
1: जी
0: जलविलय उर्वरक आया, बायो फर्टिलाइजर आया। इसी
1: हाँ
0: तरह से इसमें वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज के बाद एक नैनो फर्टिलाइजर का नाम दिया है,
1: जी जी
0: जो अभी मार्केट में नहीं आया है, जो ट्रायल में चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: और इसके ट्रायल हम लोगों ने भी लगवाए। तो इसमें नाइट्रोजन भी है,
1: हाँ
0: फॉस्फोरस भी है, जिंक भी है, कई चीजों के ये नैनो है।
1: अच्छा
0: बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है
1: हाँ
0: और इसका
1: हाँ
0: जो सरफेस एरिया है ना, वो बढ़ जाता है, बढ़ा देता
1: अच्छा
0: है। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है कई हजार गुना,
1: हाँ हाँ
0: तो उसका लाभ जो है ना, पूरा का पूरा उसे मिलता है। तो इस पे बहुत सारे अभी प्रयोग चल रहे हैं,
1: हाँ
0: इफको में भी इसमें बहुत बड़े प्रयोग चल रहे हैं,
1: अच्छा
0: और इसकी लैब एक बनाई गई है वहाँ कांडला कलोल में
1: हाँ हाँ
0: और हर जगह। और हमने किसानों के फार्म पे हर जगह पूरे इंडिया में इसको पिछले साल हमने अपने जो स्थापना दिवस था इफको का,
1: जी जी
0: 3 नवंबर, उसमें इसको लॉन्च किया था।
1: अच्छा
0: और ये किसानों के खेतों पे इसके ट्रायल चल रहे हैं, लैब में ट्रायल चल रहे हैं। अगर ये सक्सेस हो जाता है,
1: हाँ
0: जैसा जहां तक पूरी संभावना है,
1: जी जी
0: तो फर्टिलाइजर के उसमें बहुत बड़ी क्रांति आएगी। हो सकता
1: अच्छा
0: है ये यूरिया और एनपीके डीएपी बंद हो जाए
1: अच्छा
0: आगे चल के,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ये क्रांतिकारी कदम है जिस पे चल रहा है कार्यक्रम। लेकिन अभी उस पे चूंकि हम पूरी तरीके से इसलिए नहीं कह सकते कि वो बाजार में जब आएगा, जब ट्रायल पूरे हो जाएंगे
1: पूरे हो
0: उसके
1: जाएंगे
0: ऊपर,
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए अभी हमें जलविलय उर्वरक में, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे
1: बिल्कुल
0: में।
1: हाँ
0: देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खेत में पोटाश की कमी है, तो आप 0050 का प्रयोग करें,
1: ठीक है
0: 1 किलो ले लें
1: हाँ
0: और 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दें।
1: और ये बाजार
0: ये
1: में उपलब्ध है आसानी से?
0: खूब उपलब्ध है, हर जगह
1: अच्छा
0: उपलब्ध है और हर हर ब्रांड में उपलब्ध है,
1: अच्छा
0: इफको में भी है, इफको के बाहर भी है।
1: हाँ हाँ
0: अगर आपको लग रहा है कि मैंने डीएपी कम डाला था, मेरे खेत में डीएपी की कुछ कमी लग रही
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: तो आप 1744-0 ले लें।
1: और फसल की किसी भी अवस्था में
0: किसी भी अवस्था में क्या मतलब, जब हमारी फसल, मैंने
1: कोई
0: पहले
1: जरूरत
0: बताया
1: होती
0: कि
1: है
0: जब हमारी पत्ती पूरी हो जाती है,
1: हाँ
0: उस पर आ
1: हाँ
0: जाती है, खेत ढक जाता है उसे,
1: जी
0: उसमें करें, फिर 15-15 दिन के बाद करें।
1: जी जी
0: अच्छा
1: नहीं, जैसे फास्फोरस और पोटाश की जरूरत अभी तक हम पूरी करते थे फसल की बुआई से पहले,
0: जी,
1: इसको बाद में नहीं डालते थे, तो
0: नहीं
1: अब
0: डालते
1: हम
0: थे,
1: इसको बाद में भी कई स्टेजेस में डाल सकते हैं।
0: हाँ, बाद में इसलिए नहीं डालते थे कि जब हमने डीएपी या एनपीके हम डालते हैं, तो उसमें जो फास्फोरस और पोटाश होती है ना, उसमें चलायमान शक्ति नहीं होती है,
1: बिल्कुल
0: वो जहां पड़ा रहता है, अगर रूट वहां तक पहुंचती है जड़, तो वो खींच लेती है, नहीं
1: हाँ
0: पहुंचती तो नहीं खींचती।
1: जी
0: लेकिन ये स्टोमेटा के थ्रू जलविलय उर्वरक जो है, पूरी तरीके से
1: पहुंचता
0: फसल
1: है
0: ले लेती है, उसका
1: हाँ
0: लाभ मिलता है उसको।
1: जी
0: तो अगर हमको ये लग रहा है कि हमें तीनों चीजों की जरूरत है और अच्छा फायदा लेना है, तो
1: जी
0: हम 18-18 ले सकते हैं, 19-19 ले सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: या हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो हम 1744-0 में 0050 का एक पैकेट मिला के स्प्रे कर सकते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन इसके बहुत अच्छे फायदे हैं।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और हम समझते हैं कि किसान भाई समझ चुके होंगे कि जो हम बुरकाव करते हैं किसी भी उर्वरक का, और बुआई से पहले डालते हैं, अब हम बाद में भी डाल सकते हैं जलीय उर्वरकों का प्रयोग करके। तरल उर्वरक जो भी उपलब्ध है इनका कम प्रयोग है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। पैसा कम लगेगा, फायदा ज्यादा होगा, और हमारे किसान भाई विस्तार से इस बात को समझ चुके होंगे। आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, तरल उर्वरकों का प्रयोग, इस विषय पर अभी आपने विस्तार से जानो श्री अजीजुर रहमान से, और आपसे बातचीत करके जानकारी दिलवा रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनो होए और आप इनकी बातों को अमल में लाकर और अपनी फसल को अच्छा करेंगे और जो लागत अनाप शनाप आ रही है उसको भी कम करेंगे। साथियों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको कराते हैं मनोरंजन श्वेता सक्सेना के गाए इस लोकगीत से। लेकिन साथियों, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: साथियों, अभी आप लोकगीत सुन रहे थे, सुनकर आनंद आ गया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम वार्ता सुनवाते हैं प्रगतिशील कृषक जो कि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल। आपसे बातचीत की हमारे भैया हेमपाल ने, जो गांव गए और ब्लॉक है ये नवाबगंज बरेली में। सुने इनके ये अनुभव।
1: राम राम भैया।
2: राम राम भैया।
1: सबसे पहले तो अपनो नाम और पतो बता दे हमारे किसान साथियों के लिए।
2: जी, मेरो नाम सर्वेश्वर दयाल बबलू बरखन, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
1: अच्छा, कौन कौन सी फसलें करते हैं आप?
2: भैया हम मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, सरसों यही करते हैं।
1: अच्छा, धान लग गो?
2: हाँ, धान लगा दिया भैया।
1: अच्छा, कौन सी वेरायटी लगाई है?
2: PR 113।
1: कौन सी विधि से?
2: जी हमने DSR विधि से लगाई है।
1: अच्छा, कितने दिन हो गए?
2: आज उसको हो गए 18 दिन भैया।
1: कैसा जमा है?
2: बढ़िया जमा है।
1: अच्छा, खरपतवार वगैरह तो नहीं हो गए?
2: खरपतवार थोड़ा सा होगा, वो तो पिछले साल भी हमने ये DSR से ही लगाया था, तो अच्छा। उसका स्प्रे कर देंगे और वो खरपतवार खत्म हो जाता है।
1: पेंडामेथिलीन नहीं लगाई थी पहले?
2: पेंडामेथिलीन नहीं लगाया था इस बार मैंने,
1: पिछली बार लगाया था
2: जी।
1: अच्छा, इस बार देखा जा रहा है क्षेत्र में कि अधिकतर लोगों ने जो सीधी बुवाई की है, आपने तो पिछली बार भी की थी, तो कैसा रिजल्ट रहा है?
2: पैदावार तो सेम ही रहती है दोनों की, बस अच्छा। उसमें खर्चे कम हो जाते हैं, परेशानियां कम हो जाती
1: है। अच्छा, क्या क्या खर्चे कम हो जाते हैं? देखो, एक तो चौड़ाई भी कम हो जाती है और कदड़ वगैरह भी कम हो जाता है, इसके अलावा और क्या खर्चे कम होते हैं?
2: सबसे बड़ी तो यही, पानी कम लगता है इसमें। जब हम कंधार करते हैं तो भैया उसमें पानी भी हमें बहुत लगाना पड़ता है, पानी इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके कंधार होता है। इसमें उतने ही पानी में 3 पानी लग जाते हैं, इसमें हल्की सिंचाई की जरूरत रहती है। दूसरे, इसमें रोपाई करवाते हैं, बहुत लेबर कास्ट आती है, और यहाँ पे ये जीरो है, 200 रूपए बीघे का खर्चा आता है और सब धान की बुवाई हो जाती है।
1: अच्छा, इसकी कटाई सभी धानों के साथ में होती है या फिर आगे पीछे भी हो जाती है?
2: सभी धानों के साथ में होती है, पैदावार में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, खेत देखने में सुंदर लगता है।
1: धान पे अभी एक बात और जानना चाह रहे थे हम कि आपने जो बताया उससे स्पष्ट हो गया, क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने लगाया तो उनके दिमाग में शंका है कि पता नहीं कैसी पैदावार मिलेगी। तो आपका तो अनुभव है पैदावार सही मिलेगी, लेकिन जैसे धानों में ये डबल जड़ वाली दिक्कत आ जाती है, तो इसमें तो नहीं आती है
2: ना? इसमें तो पिछले बार तो हमारे आई नहीं थी बिल्कुल, इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं।
1: अच्छा, तो ये कहो कि अगर आदमी पुरानी विधि को छोड़कर इस पर आ जाए तो बहुत ही अच्छी विधि है। ये
2: बहुत ही अच्छी कारगर विधि है। अपने IBRI के डॉक्टर राकेश पांडे जी हैं
1: जी, हाँ।
2: उन्होंने 4 साल पहले मुझे बताया था कि आप DSR से धान लगाइए, बट मैंने उस समय उनकी बात नहीं मानी थी। उस समय उन्होंने मुझे एक और धान की विधि बताई थी, श्री विधि। श्री विधि से मैंने धान लगाया था।
1: अच्छा, श्री विधि कैसी विधि होती है?
2: श्री विधि यह होती है कि हम अपनी पौध को, जब हम पौध डालते हैं तो उस पौध को हमें बेड पे डालना होता है, और उसको हमें 11 से 12 दिन के बीच में हमें उस पौध को अपने खेत में ट्रांसफर करना पड़ता है।
1: तो रोपाई करी जाती है उसकी भी?
2: जी, उसकी रोपाई करी जाती है।
1: तो फिर रोपाई इतने छोटे पौधे कैसे हो जाती है?
2: उसमें हम पानी पूरी क्यारी में नहीं चलाते हैं, बल्कि नालियों में पानी चलाते हैं, और जो उसके बेड बने रहते हैं उस पे पानी की नमी रहती है, ना कि उसको पानी में भीगता नहीं है, तो वो अच्छा। बहुत आराम से निकल जाती है।
1: जिस तरह से सब्जी वाली फसलें जैसे मिर्च वगैरह लगती है, इस तरह से किनार पे लगाई जाती है?
2: जी जी जी।
1: तो उसमें भी पानी की बचत हो जाती होगी?
2: जी, मगर वो उसमें लेबर कास्ट ही इतनी रहती है।
1: हाँ,
2: क्योंकि उसमें वही सब लेबर चाहिए होती है। आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या है लेबर
1: लेबर की।
2: फिर मैंने पांडे जी से संपर्क करा और पांडे जी ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप ये लगाइए, बहुत अच्छी रहेगी।
1: मेरे ख्याल से श्री विधि में उसकी जो कल्लों की संख्या वो ज्यादा रहती होगी?
2: जी, वो ज्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत छोटी पौध ट्रांसफर की जाती है।
1: हाँ, लेबर का खर्चा भी ज्यादा आ जाएगा, इस वजह से थोड़ी सी कारगर।
2: जी जी, इसीलिए हमने छोड़ दिया उसे।
1: चलिए, बढ़िया है। अच्छा, गन्ना कौन कौन सी वेरायटी आपने बोली?
2: गन्ना इसमें मेरे पास में ये 14201 है, ये बढ़िया पड़ता देता है, इसको चीनी मिल और ये कोलू वाले और ये सभी इसको बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने 14201 लगाया है गन्ना, इसकी रिकवरी बहुत बढ़िया है।
1: अरे, 14201 गन्ना बताते हैं लोग कि थोड़ी मोटाई उसकी कम होती है?
2: नहीं, 14201 में जो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है वो है कि इसको अगर हम अप्रैल में जाके लगाते हैं तो इसकी हाइट कम रह जाती है, तो ये बढ़ता कम है, इसीलिए किसान इसको नहीं लगाता है।
1: सोरी तो नहीं होती इसमें बीच में?
2: ना ना, दरअसल इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसकी ये जो इसकी हाइट है वो कम रह जाती है, इसलिए किसान इसको नहीं लगाता है। हम इसको लगाते हैं अक्टूबर में, फरवरी अक्टूबर में लगाते हैं, बढ़िया हाइट रहती है, बढ़िया चलता है ये, सह फसली भी हो जाती है अक्टूबर वाले में सरसों की।
1: रोग वगैरह
2: भी अक्टूबर वाले में कम लगते हैं।
1: अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ गन्ना भी काफी है, जैसा कि 0238 में बीमारी आ गई, और जाहिर सी बात है कि अभी भी अधिकतर किसान साथियों ने कोई एक निश्चित वैरायटी सुनिश्चित नहीं करी है कि जिससे कि वही वैरायटी सभी किसान बोए कि उससे अच्छी पैदावार मिले, लेकिन अधिकतर सभी लोग ट्रायल पे हैं। आपके अनुसार कौन सी वैरायटी सबसे कारगर लग रही है, क्योंकि ये आपके गांव में और भी लोगों के गन्ना होंगे, आपने भी तो 14201 बोया है, तो कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी?
2: मुझे तो सबसे अच्छी यही लगी है 14201। हालांकि अभी कोई आदमी किसान इस बात पे नहीं पहुंचा।

0: इसके लिए हम किसान साथियों के लिए कौन सी बात का ध्यान रखना जरूरी है?
1: सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हम कोई गन्ने की जब हम बुवाई करें तो सबसे पहला है कि बीज शोधित करके ही बुवाई करें। जैसे हम धान की बुवाई करते हैं तो हम अच्छा सा धान लेते हैं, एक ही वैरायटी के धान लेते हैं, मगर यहाँ गन्ने का जब हम बुवाई करते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं, बिल्कुल बीज का बुवाई करनी है, ना कि गन्ना की बुवाई करनी है, गन्ने की बीज की बुवाई करनी है।
0: जैसे हमारी सरकार कह रही है कि प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ बढ़ो, जिससे हमारी भूमि भी बचे और जो पैदावार हमारी कम हो रही है और लागत बढ़ रही है, जो भी हमें उत्पादन मिल रहा है वो भी सही नहीं मिल रहा है, हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसके लिए आपका प्रयास क्या रहा है? क्योंकि आप एक जागरूक किसान हैं, IBRI से भी जुड़े हुए हैं।
1: जो जैविक खेती है और जो हम प्राकृतिक खेती है उसको सबसे पहले तो पशुपालन बहुत जरूरी है, और आज के समय में जो आम किसान है वो पशुपालन से दूर होता जा रहा है,
0: बिल्कुल,
1: और जब तक हम पशुपालन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी प्राकृतिक खेती से नहीं जुड़ सकते हैं। इसके लिए जो मेन समस्या है, अभी जो हमारे यहाँ किसान काफी लोग जैविक खेती कर रहे हैं तो उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आदमी का झुकाव इस तरफ नहीं हो पा रहा है। जब हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पे हम ध्यान देते हैं तो उसका उत्पादन कम रहता है, मगर उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होती है, और मार्केट में अभी बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर किसान को बढ़िया दाम मिलने लगे तो बहुत जल्द ही जैविक खेती और प्राकृतिक खेती मार्केट में आ जाएगी, और इससे किसान और आम आदमी दोनों लोग सुरक्षित हो जाएंगे।
0: आपके कहने का मकसद ये है कि हमारी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान, जब कोई भी किसान जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से जो भी फसल उगाए उसका एक अलग मंडी हो, अलग बिकने की व्यवस्था।
1: जी, और वो भी बड़े स्तर पर नहीं, कम से कम तहसील स्तर पे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे लखनऊ में मंडी बना रखी है, हर किसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है, अगर किसी छोटे किसान ने 2-4 बीघा कर लिया और पता चला उसका कोई भी उत्पादन थोड़ा सा हुआ तो वो कैसे ले जाएगा, वहाँ
1: कैसे लेके जाएगा भैया?
0: इसके अलावा आप हमारे किसान साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो भी फसल करें वो उन्हें अच्छा उत्पादन?
1: मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे जो व्यापारी है वो अपने व्यापार के लिए प्रतिदिन दुकान पे जाता है, एक जो सरकारी कर्मचारी है उसको प्रतिदिन सरकारी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, उसी तरह से किसान को प्रतिदिन अपनी फसल के साथ में जाके उसकी बातें करना चाहिए, खेत देखना चाहिए प्रतिदिन। सबसे ज्यादा जरूरी है किसान अपने खेतों की देखभाल करें, सारी खादों से ज्यादा जो हमारे पैर की मिट्टी होती है इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता किसान के खेतों में है। पैर की मिट्टी से तात्पर्य कि आपको प्रतिदिन खेत पे जाना चाहिए, खेत का निरीक्षण करना चाहिए, गहन निरीक्षण करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, देखो पुराने बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि खेत पे जाए तो 2 कदम जो है अपने खेत में जरूर रखे।
1: हाँ बिल्कुल, इसलिए हमसे कुछ कहना चाहती हैं, हम पहुंच ही नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जिस तरह से हम नौकरी करते हैं अगर इसी तरह से हम अपने खेतों पे भी डेली जाएं, यानी रोज जाएं और उससे बातें करें, वहां हमारी फसल की बात को हम सुने और हमारी बात को फसल सुने, अगर हम इस तरह से अपने खेतों की देखभाल करेंगे, अपनी फसलों की देखभाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और लागत कम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई और आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
2: साथियों, अभी आप प्रगतिशील कृषक जो कि श्री सर्वेश दयाल थे, इनसे आप वार्ता सुन रहे थे। साथियों, फसलों में खरपतवार बहुत ज़्यादा इस समय हो रहे हैं, जैसे गन्ना है या जो डायरेक्ट धान की बुवाई चल रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा खरपतवार होते हैं। सिर्फ एक खरपतवार ऐसे हैं जो उसमें खर्च ज़्यादा आता है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं और खुरपी की सहायता से, दरांत की सहायता से भी हमारे किसान साथी जो घास होता है, खरपतवार होते हैं, वो निकालते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो करके हमारे किसान भाई अपना जो, चाहे वो गन्ना हो या धान हो या अन्य फसलें हों, उसमें खरपतवारों का नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, तो आज क्षेत्र कृषि संकेत में सुनवा रहे हैं, खरपतवार किस तरीके से नियंत्रित किया जाए।
3: बिल्कुल भैया, देखो पहले का हो तो कि जो खरपतवार होते, चाहे धान में होए या फिर गन्ना में होए, सबको खुरपी की सहायता से निकाल लेते, क्योंकि हर परिवार में कई कई लोग होते, सब परिवार के मिलकर काम कर लेते। लेकिन आज जो लेबर की कमी है, हर परिवार में जो युवा साथी हमारे वे बाहर कमान के लिए चले जाते हैं, और घर के जो लोग रहते हैं वे और काम धाम में हैं, कुछ बीमार हैं, हर घर में बीमारी इतनी है। तो कुल मिलाकर यह है, आज लेबर की सहायता से यानी खुरपी वगैरह की सहायता से तो खरपतवार उनको नियंत्रण करना बिल्कुल असंभव से ही हो गए, तो ऐसी स्थिति में केवल रसायनों का प्रयोग ही बचता है। तो साथियों, अगर

0: बात करें हम गन्ना के खरपतवारों की, तो वैसे तो साथियों अब समय मिट्टी चढ़ान को चल ही रहो और हमारे किसान साथी ने गन्ना पर मिट्टी चढ़ा भी रही है, लेकिन बारिश ना भई उसकी वजह से कुछ किसान साथी अभी इंतजार कर रहे हैं कि बारिश ही जाए तो मिट्टी चढ़ा दें, और कुछ जो पिछाए गन्ना है उन पर मिट्टी चढ़ान को काम अभी चल रहा है और चलाए, और जो पिछाए गन्ना है उनमें जो घास बहुत ही गई है यानी खरपतवार बहुत ही गए, तो साथियों देखो उसमें आप मिट्टी भी ना चढ़ा रहे हैं यानी मिट्टी चढ़ाएंगे तो फिर वो घास दब जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप रसायनों को प्रयोग करके उनको नियंत्रण कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए आप टोपरा में जो एक रसायन आता है उसके साथ में एट्राइजिन को मिला के यदि आप स्प्रे कर देंगे तो जो खरपतवार हैं सभी प्रकार के नष्ट ही जाएंगे। यदि मोथा खरपतवार भी है उसके साथ में तो आप उसके लिए आप जैसे जो दवा आती है पायराजो सल्फुरान उसको इसी दवा दोनों दवाओं के साथ हम मिला के अगर स्प्रे कर देंगे तो मोथा घास भी ख़त्म ही जाएगी।
1: हाँ भैया, इसमें बहुत सारी ऐसी बेलें हैं जो जम जाती हैं, देखा होगा आपने, तो उसमें चौड़ी पत्ती की आती है वो, तो हमारे किसान भाई क्या करें कि जो आपने बताया कि एल्ट्राजिन, अगर हमारे किसान भाई 500 ग्राम एल्ट्राजिन लें और 100 ग्राम उसमें जो है मैटरी मिला दें और साथ साथ उसके जो 240 होती है, दो तरह की 240 होती है, एक होती है 38% की और एक होती है हम्पल भाई 58% की, तो हमारे किसान भाई 58% की यहाँ पर डालें क्योंकि ये 58% वाली सिर्फ गन्ने के लिए है। और दूसरा इसमें जो जिलिट होता है, जिलिट यानी कि एक तरह से जो अच्छा शैम्पू होता है उसे हम शैम्पू भी कह सकते हैं, और दूसरा जो
0: स्टिकर
1: कहते हैं, तो वो उसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो लगा देते हैं तो जो घास होता है जल्दी नियंत्रण में आ जाता है। दूसरा जो बेल होती है पहले तो ये एकदम साफ़ हो जाती है, अगर 240 की बात करें तो कम से कम 200 ml दवा 240 और 500 ग्राम एल्ट्राजिन और 100 ग्राम मेट्रीविजन दवाई, इन तीनों का संयोग करके मिला के और अलग अलग घोल बना के अगर हमारे किसान भाई 150 से लेकर और 200 लीटर पानी में अगर इसका स्प्रे करते हैं यानी छिड़काव करते हैं तो सभी तरह की घासों के लिए नियंत्रण हो जाता है और हमारे किसान भाई इससे बहुत लाभान्वित होते हैं।
0: बिल्कुल भैया, देखो अब हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथी समझ गए होंगे कि गन्ना के खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करें। इसके अलावा किसान साथी देखो अगर बात करें धान की फसल की, क्योंकि जिन साथी ने धान की जो सीधी बुवाई करी यानी पबेरा विधि से जो बुवाई करी उसमें घास ही गई है, और जो जिसने धान की रोपाई करी है तो उसमें तो अभी कुछ दिन बाद हुई, और अगर साथियों को धान की जो रोपाई हमारे किसान साथी कर रहे हैं उसमें घास खरपतवार के नियंत्रण की अगर बात करी जाए तो आप रोपाई करने के आप 24 घंटा के अंदर अंदर यदि
1: पेंडामेथिलीन दवाई का अगर छिड़काव करते हैं।
0: हाँ वो तो भैया बा में जो सीधी बुवाई करिए बा में।
1: हाँ भैया, और दूसरा जो सीधी बुवाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें दो तरह का बीज पड़ रहा है हम्पल भाई, एक तो जो साधारण बीज हमारा चाहे वो PR 126 हो या शरवती हो या 1509 हो या और ऐसे धान जो मोटे होते हैं जैसे 1054 है, 1013 है, 1031 है, बहुत सारे ऐसे धान हैं जो मोटे होते हैं उन्हें हमारे किसान भाई जो मशीन द्वारा लगा रहे हैं तो उसका जो सीड रेट है यानी जो बीज का मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और अगर हम बात करें हाइब्रिड धान की तो वो 7 किलो लगभग एकड़ में पड़ता है, और जो मोटा धान हमारे यहाँ का है ये लगभग 14 से 15 किलो धान पड़ता है, तो इसमें खरपतवारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी खरपतवार बहुत ज़्यादा जमते हैं। तो शुरुआत में प्री एमरजेंस में अगर हमारे किसान भाई पेंडामेथिलीन दवाई लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, सभी तरह के खरपतवारों को ये नियंत्रण करता है। दूसरा जो हमारे हाइब्रिड धान हमारे किसान भाई लगा रहे हैं जो 7 किलो एकड़ लगता है मशीन के द्वारा बोया जाता है, इसमें एमीचा थाइपर एक दवा आती है जो उड़द के अंदर डाली जाती है घास मारने के लिए, तो वही दवाई इस धान के अंदर डाली जाती है और किसी धान में वो नहीं डाली जाएगी।
0: अच्छा,
1: एमीचा थाइपर और सभी तरह के घासों को हम्पल भाई वो कंट्रोल करती है, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अगर वो धान में ये लगा के और जो है खरपतवार नाशी लगाते हैं तो सभी तरह का जो खरपतवार है वो उससे नष्ट हो जाता है।
0: तो भैया जा दवाई को एक फिर नाम और बता दो।
1: इमीजा थाइपर जो उड़द के अंदर लगाई जाती है, ये 400 ml दवा लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिला के लगाई जाएगी और इसका सीधा स्प्रे होगा, और स्प्रे जो है वो शाम के टाइम करें हमारे किसान भाई, और नमी का खेत में होना बहुत ज़रूरी है।
0: धान की बुवाई करने के 24 घंटा?
1: ना ना, ये जब हमारा धान लगभग 14 से 15 दिन का हो जाता है उस समय ये दवाई लगाई जाती है।
0: अच्छा अच्छा, इसके अलावा किसान साथियों जो साथी धान की रोपाई कर रहे हैं यानी कदहड़ बना के, तो उसमें आप जो पिरेटिला क्लोर 50% की दवा आती है उसको आप डाल दें या फिर बूटा क्लोर जो दवा 50 EC की दवा आती है उसको आप डाल देंगे तो जो खरपतवार होंगे भी ना उगेंगे।
1: हाँ भैया, और अगर खरपतवार उग आते हैं तो उसके लिए बेसपेरीबेट सोडियम जो दवा आती है 100 ml दवा लेने के बाद और उसका अगर छिड़काव करते हैं 150 से 200 लीटर पानी में तो सभी तरह के खरपतवारों को वो नियंत्रण कर देता है।
0: और साथियों आप बेसपेरीबेट सोडियम दवा को छिड़काव तभी करें जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के ही जाए।
1: हाँ भैया, और एक उस दवा में एक खासियत ये है कि जो हमारा धान बढ़ता है ऊपर को, वो हेम्पल भाई वो बढ़ता नहीं है, वो उससे चेक हो जाता है जब हमारे किसान भाई दवाई डालते हैं, तो थोड़ा सा ये सावधानी ज़रूर बरते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: सावधानी ये है कि एक तो जो पानी होता है भरा हुआ उसमें वो कम काम करता है, पानी को सुखा लें और कम पानी में उसका छिड़काव करें,
0: बस केवल नमी होना
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: दूसरा ये फसल को चेक करता है यानी कि उसकी बढ़वार को रोक देता है, जब बढ़वार इसकी रुकती है तो धान में जो है कल्लों की संख्या एम्पल भाई बढ़ जाती है, तो इससे पैदावार भी बढ़ता है। कुछ किसान भाई हमारे जब खरपतवार नहीं होता तब भी हमारे किसान भाई इसे लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं कि इससे जो कल्लों की संख्या वो बढ़ जाती है और खरपतवारों का नियंत्रण होता है, जिससे हमारे किसान भाई को पैदावार में लाभ मिलता है, पैदावार अधिक होता है और खरपतवारों में जो पैसा खर्च होता है वो कम होता है।
0: बिल्कुल भैया, इसके अलावा अगर मोथा घास बहुत ज़्यादा है और कई तरीके की घास हैं तो आप बेसपेरीबेट सोडियम दवा के साथ में मेट सल्फुरान मिथाइल 10% और क्लोरीमेरोन इथाइल नाम की जो दवा 10% की आसानी से बाज़ार में दोनों मिक्स होती है वो मिल जाती है, उसको भी आप इसी के साथ में मिला दें और उसी के साथ में आप पायराजो सल्फुरान मिला देंगे तो सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नष्ट ही जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आप अपने धान की फसल को, गन्ना की फसल को आप खरपतवारों से मुक्त रखें और अच्छी पैदावार लें।
1: भैया हेमपाल भैया, एक जो आपने बताया खरपतवारों के बारे में, तो इसमें एक हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कल्टार एक दवा आती है जो बागों में फ्लावरिंग के यानी फूल के लिए लगाई जाती है, हमारे किसान भाई जो है धान में भी वो लगा रहे हैं और इससे ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है, तो जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं वो जो कल्टार दवा है वो ना लगाएं, इससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और इतनी रुक जाती है कि पौधा बोना हो जाता है और कई बार उससे बालियाँ भी नहीं निकलती हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो कल्टार दवा का इस्तेमाल ना करें। वो
0: किस लगाते भैया जी हमारे किसान साथी?
1: हाँ, हमारे किसान भाई जो जैसे बागों वाली फसलें होती हैं, जैसे आम है तो आम के अंदर थाला बनाने के बाद वो लगाई जाती है और उससे फ्लावरिंग बहुत आती है यानी हर साल फल देता है,
0: ग्रोथ प्रमोटर होता है वो।
1: हाँ, फूल के लिए होता है। अच्छा, वो फूल ज़्यादा आता है लेकिन धीरे धीरे ज़मीन की उर्वरा शक्ति को वो घटा देता है और एक तरह से ज़मीन बंजर होती चली जाती है।
0: बिल्कुल किसान साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी दुकान पर दवा लेने जाएं कि हमें फूल बढ़ाने के लिए और हर साल हमें आम बाग से आम बाहर लेने के लिए दवा चाहिए या फिर धान के लिए इस तरह की दवा दे, तो आप कल्टार नाम की दवा को पूछ लें कि ये दवा हमारे किसान साथी दुकानदार ना दे, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब भैया देखो, समय कह रहे हो कि हमसे विदा लियो, उससे पहले अपने किसान साथियों के लिए बता देता कि कल को मौसम को हाल। तो साथियों, कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और आर्द्रता 58% और हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह सकती है।
1: भैया कल के जो प्रोग्राम है वो भी बता दें, उसमें चर्चा होगी फसलों में
0: संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और साथ ही साथ भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, अमृत वन एक संकल्प, इस विषय पर जानकारी देंगे श्री राजीव कुमार और आपसे बातचीत करेंगे हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा,
1: साथ साथ लोकगीत सुनाया जाएगा और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी सुनवाया जाएगा और साथ साथ मौसम की जानकारी भी दी जाएगी
0: और खाद्यान्न फसलों के साथ गुलाब की खेती, इस विषय पर भी आपसे बातचीत करी जाएगी। तो साथियों, जो तो है कल के कार्यक्रम और साथियों कल के कार्यक्रम को जो पेश करेंगे वो हेमपाल भैया यानी हम और हमारे साथ होंगे हमारे भैया प्रवीण। तो साथियों, अब समय कह रहा है इजाजत लेने को, तो अपने भैया हेमपाल
1: और अब्दुल हफीज भैया को दें अनुमति।
0: राम राम, राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिए, इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री, केवल मीडियम वेव और FM पर। ऐप पर विविध भारती प्रसारण के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम चार का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का

0: We've had a bit of a break before this game, so it's yeah. built up really nicely for us. And
1: yeah. Enjoy all the magic of the home of cricket.
0: Yeah.
1: All the best, Soph.
0: Thanks, Jonesy.
1: Well, India have won the toss today, and they'll be batting first in this crunch match.
2: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा. सौमित्र, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
3: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे. और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबिलिशफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉट एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट.

0: इट्स सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सीआर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है?
3: वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया,
2: 10 वर्ष की आयु से।
3: 10 वर्ष की आयु से, लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी।
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी।
3: उसी टाउन के जो वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी,
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
2: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया, मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने के
3: राजा राम बाबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा राम बाबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
2: अच्छा।
3: हर कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा,
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
2: अच्छा।
3: तो अभी आलाप में

0: ऐसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना
1: जी,
0: ये एक उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है, जैसा केदार में लेगा मम रेसा रेसा रे रेसा सा, मम रे सारे सारे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना, मम रे सारे सारे रे सा सा, मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, पापा मम रे सा, मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा, दादा पादा पापा मामा, पापा मम रे सारे सारे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी,
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोल अंकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। ख्याल
0: ख्याल हाँ, ख्याल तो याद करना पड़ा, ख्याल तो पहले अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेगा, बाद में अंतर है दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे, अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे, जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ,
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते विलायत हुसैन खा साहब के पास बहुत सालों सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे,
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी,
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली भूली जो बागोला बैगोंदेला ओरे वाले निया, जमेली भूली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है, वो सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना तो वो ये भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: सुर लगाने का तरीका और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। तो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाएं, प्रसिद्धि भी पा लें।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड हैं
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे अच्छा। सामने
1: आप और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारा देश का,
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए, उसने देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार
0: भी आपका। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित C.R. व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित C.R. व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंट वार्ता में सुने और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित C.R. व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग गायक पंडित C.R. व्यास।

पंडित सी आर व्यास का गाया हुआ राग बिहाग आपने सुना। श्रोताओ, आज हमने पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता सुनवाई है। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भारत।

फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे।

छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के 5 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की ही भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े, जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी LMG बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गईं। उनकी सांसें थमने लगी। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतेह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीन हिंद का ये बांका सिपाही मां भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर, जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार

जी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: हाँ, आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं,
1: देखो चौबे, औकात में रहो।
0: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
1: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
0: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
1: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
0: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
1: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
0: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
0: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज
2: वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
1: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाब जादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
2: हाँ ये बात तो है।
0: नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।
2: अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
1: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई।
2: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
1: हो जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
0: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
2: चक्कर, हसीना का चक्कर, तो ये बात है। अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
1: ओफो,
2: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
1: अरे अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है, यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
0: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
1: अरे खजूरी तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला।
2: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
1: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए।
2: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
0: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं। जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे, सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
1: हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का।
0: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
1: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या।
2: नहीं तो।
1: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
2: हाँ, और क्या।
1: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा, अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
2: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर।
1: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
2: जब आप गाना गा रहे थे।
1: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
2: हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ।
1: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूं कुछ नहीं हो रहा था।
2: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
1: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
2: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की।
1: ओफो,
2: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चूबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
2: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
1: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
2: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
1: आपने मुझे बुलाया साहब?
3: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
1: धन्यवाद साहब।
3: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
1: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
3: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
1: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
3: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
1: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
3: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
1: जी आपकी मेहरबानी से।
3: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
1: जी मैं कुछ समझा नहीं।
3: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर, माजरा क्या है जरा मुझे भी तो बताइए।
1: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूँ, आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
3: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
1: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
3: फिर क्या हुआ?
1: फिर मन में उमंगे
3: पतंगे,
1: नहीं साहब, उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
3: फिर
1: कुछ नहीं साहब।
3: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
1: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है, मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
3: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
1: हाँ ठीक है।
3: नहीं पैर कुर्सी के नीचे।
1: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
3: कैरी ऑन।
1: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
3: ओहो बताइए ना,
1: किसी परी के साथ उड़ रहा हूँ, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूँ।
3: क्या बातें कर रहे हो?
1: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
3: ओहो आप भी किस मौके पर कहाँ की बात ले बैठे, कहाँ गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
1: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा, प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
3: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
1: ओह सॉरी सर।
3: और वो गाना?
1: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
4: अरे उठो भी, क्या सोते हुए लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो, 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
1: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
4: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे, जरा मैं भी तो सुनूं किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
1: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
4: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
1: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
4: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
1: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में दिलवाले फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज।
2: वी बिलीव

0: that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है,

आइए अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं, जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नीलबटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई

पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आज समझ लीजिए कि होने वाली हैं सरगमी फुहारें। पूरे देश में या तो बारिश आ चुकी है या बारिश का है इंतजार, और आसमानी बारिश जब आएगी तब आएगी, पर विविध भारती से आज हो रही है पंचमी बारिश। आर डी बर्मन का जन्मदिन होता है 27 जून को, और आज हम पंचम को याद कर रहे हैं। विविध भारती के संग्रहालय में घुसे तो हमें मिला ये एक पुराना सा कार्यक्रम, जिसको संपादित करके आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सरगम के सितारे के नाम से बरसों पहले प्रसारित हुआ था और आज इसे हम आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं। तो सुनिए विविधा में सरगम के सितारे पंचम के नाम।
1: सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। सरगम के सितारे, लीजिए सुनिए संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों पर आधारित कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीतों के अलावा विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त उन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के अंश भी सुनवाएंगे जिनमें कुछ में राहुल देव बर्मन ने अकेले शिरकत की थी। इसके अलावा संगीत सरिता कार्यक्रम की उस विशेष श्रृंखला की रिकॉर्डिंग से लिए गए अंश भी आपको सुनवाएंगे जिस रिकॉर्डिंग में गायिका आशा भोसले, गीतकार निर्माता निर्देशक गुलजार के अलावा संगीतकार राहुल देव बर्मन ने भी भाग लिया था। तो आइए सुनते हैं आज के सरगम के सितारे संगीतकार राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत।

0: और अब उस रिकॉर्डिंग का अंश जिसमें भाग लिया था गीतकार निर्माता निर्देशक गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन और गायिका आशा भोसले ने।
1: आप सबको तो गवाते हैं
2: जी।
1: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ। आशा छोड़ दे, तू भी मत गा आज, कल करते हैं परसों करते हैं।
3: बिल्कुल इसी तरह की हरकत है आशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
1: जी।
3: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन का, जिस तरह से आपने गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है।
2: धन्नों की आंखों में इसका कमाल किस्सा है।
3: वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता
1: ज्यादा बेटर है।
3: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
1: उसमें एक गिटार का जो पीस है
3: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
2: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
3: अच्छा,
2: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही करता हूं, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से भी,
3: मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट और तो कुछ भी नहीं।
1: उसी के ऊपर
2: कैसा गा रहे थे हम,
1: क्या
2: चलिए गाना सुन के देखते।